सारी गोपियां कृष्ण के रथ के सामने लेट जाती हैं। हे कान्हा, आप और हम विचार करके देखें, अगर थोड़ी देर के लिए हमारी श्वास हमसे छीन ली जाए तो हमारी क्या दशा होगी, कैसे जी पाएंगे? यही दशा गोपियों की थी। कृष्ण से दूर मतलब प्राणों से दूर। सब सामने लेट गई। हे उद्धव, हे अक्रूर, तुझे रथ चलाना है तो हमारे ऊपर से निकाल के लेके जा। श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों को कि गोपी क्या बात करती हो तुम, दो दिन के लिए इतना ये सब क्या करने की आवश्यकता है, दो ही दिन की बात है, मैं वापस भी तो आने वाला हूं। पर जो प्रेमी दिल होता है, जो प्रेमी हृदय होता है, वो समझ जाता है कि हाँ, ये कह तो रहे हैं कि वापस आएंगे, पर मन कह रहा है कि ये अंतिम बार है। गोपियों को लग रहा है जितना देख सकती है कृष्ण को देख ले, उसके बाद पता नहीं ये अवसर, ये मौका आए ना आए। तभी कृष्ण ने गोपियों से पूछा, गोपी राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो मुझे विदा करने के लिए नहीं आएगी? गोपियों ने बताया कि कान्हा, आई तो है किंतु कहीं उसको देख करके तुम्हारे मन में कोई ग्लानि ना आ जाए, कहीं तुम अपनी लीला में उसको बाधा ना समझने लगो, इसलिए एक पेड़ के पीछे कोने में छुपी बैठी है। श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतरे और जहां राधा बैठी है, श्री कृष्ण उस वृक्ष की ओर बढ़े। श्री किशोरी राधा रानी ने देखा कृष्ण मेरी तरफ आ रहे हैं, हृदय कंपन करने लगा, कांपने लगा। श्री कृष्ण आए और राधा को कहा, राधा कोई जाने न जाने पर तू तो जानती है मेरे अवतार का उद्देश्य, क्या दूर हो जाने से प्रेम कम हो जाता है? क्या राधा कभी कृष्ण से अलग हो सकती है? क्या हमारा प्रेम कम हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन आज मैं कृष्ण एक वादा चाहता हूं तुमसे, मैं जा रहा हूं इस ब्रज को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ तेरे भरोसे। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद ये ब्रज टूट जाएगा, इस ब्रज के लोग अपना धैर्य नहीं रख पाएंगे, पर मैं ये भी जानता हूँ मेरे जाने के बाद इस ब्रज को एकमात्र कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। इसलिए मैं भले चला जाऊं, ये ब्रज भले कमजोर हो जाए, लेकिन राधा तू अपने हृदय को संभाल के रखना और आज मुझसे एक वादा कर दे, अगर मुझसे कभी प्रेम किया हो, अगर मुझे कभी अपना माना हो, तो कभी भी इस आंख से अश्रु मत गिरने देना। आंख से अश्रु गिरेगा तो ये पूरा ब्रज जो तेरी शक्ति से चलने वाला है वो जी नहीं पाएगा। और वो वादा लेकर के श्री कृष्ण मथुरा की ओर चल पड़ते हैं। यशोदा भी दुखी थी कि कृष्ण गया है
नंद बाबा भी दुखी थे, ग्वाल बाल गोपियां भी दुखी थी, लेकिन राधा की पीड़ा कौन जान सकता है। जिसका हृदय भरा है कृष्ण प्रेम से, किसी ने पूछा राधा कौन है, तो कहा कि जिसका हर रोम रोम कृष्ण के प्रेम से बना हो वही राधा है। वो दिखती एक कन्या जैसी है, लेकिन वो कृष्ण के साक्षात प्रेम का स्वरूप है। प्रेम ने एक आकार धारण कर लिया और उसी आकार का नाम राधा है। ये प्रेम की ही परिभाषा तो हो सकती है कि वहां राधा याद करती और वहां द्वारिका में बैठे बैठे कृष्ण की आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। ये प्रेम की गाथा है। प्रेम का मतलब संकीर्णता से मत लगाइएगा कि एक पुरुष और नारी का प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम है, बिल्कुल नहीं। एक समय ऐसा आता था कृष्ण के जीवन में, जब कान में राधा सुनता नाम सुनाई देता था तो कृष्ण खड़े खड़े कांपने लगते थे, शरीर कांपता था, हाथ कांपने लगते थे। प्रेम में आनंद है तो प्रेम में पीड़ा भी बहुत है, पर इस पीड़ा में भी आनंद है। श्री कृष्ण तो वादा करके चले गए कि वापस आऊंगा, प्रतियात व्रज में लौट करके आऊंगा। मुझे एक शब्द बहुत प्रिय है और वो शब्द है भरोसा, अर्थात जिनसे आप प्रेम करते हो उनकी हर बात पर आपको पूर्ण विश्वास होता है, भले वो आए या ना आए। लेकिन ब्रजवासियों को इसी बात पे भरोसा था कि वो कह करके गया है कि वो वापस आएगा, मतलब जरूर आएगा, उस बात पर विश्वास है हमें। और फिर एक दिन आया जब कृष्ण तो नहीं आए पर कृष्ण ने अपना एक मित्र भेजा, उद्धव। उद्धव ने आकर के इन ब्रज गोपियों को, इन पागलों को, प्रेमी कौन होता है, पागल ही तो होता है, समझाने का प्रयास किया, पर यहां कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं था, कोई तैयार नहीं था।

श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी तो जानू क्या होता है राधा का प्रेम, दिन रात सुनते हैं राधा का प्रेम राधा का प्रेम, कैसे जान पाओगे? उसके लिए तो राधा बनना पड़ेगा, राधा जैसा हृदय राधा जैसा स्वभाव लाना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण के पास भी राधा जैसा हृदय नहीं है। इतनी उदार

ऐसी शिलाधार। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी जानना है क्या होती है प्रेम की पीड़ा, कैसी दशा होती है प्रेम। तो ठीक है, बन जाओ राधा, लाओ राधा जैसा हृदय, और फिर वही कृष्ण रूप कृष्ण का और दिल राधा का लेकर के बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। महाप्रभु के चारों ओर लोगों को बिठाना पड़ता था कि कोई भी उनकी कुटिया में घुसे तो कह देना कोई कृष्ण नाम नहीं बोलेगा, क्योंकि कृष्ण सुनते ही महाप्रभु का शरीर रोमांचित हो जाता था। हा कृष्ण कहते कहते बेहोश होके धरा पर जमीन पर गिर पड़ते थे। उसी राधा प्रेम को जानने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए और समस्त जगत में महाप्रभु ने उस प्रेम का प्रचार प्रसार किया। गोपी भाव, मंजरी भाव क्या होता है, उसको अपने परिकरों में प्रसाद के रूप में बांटे। प्रेम ऐसा ही होता है, इसलिए कहा है

राम से श्री कृष्ण को, वही प्रेम हमें भी जिस दिन उस राधा नाम से हो गया कि उस राधा नाम के बिना कुछ अच्छा ना लगे।

सबसे धन्य दिन होगा। वो मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि हमारा हृदय, हमारा मन उन श्री किशोरी जी के चरणों में लग जाए, जिनका रोम रोम कृष्ण प्रेम से गढ़ा है, बना है। प्रेम शब्द की सार्थकता जहां जिनके चरणों में होती है वो है राधा और कृष्ण। प्रेम की परिभाषा कोई नहीं कर सकता, किसी में इतनी हैसियत ही नहीं है कि उस प्रेम की परिभाषा, उसकी

प्रेम की जो वेदना होती है, पीड़ा होती है, यद्यपि मीरा और राधा की कोई तुलना नहीं है, राधा राधा है वो, भक्त नहीं है वो, साक्षात कृष्ण की इष्ट है। मीरा भक्त है श्री ठाकुर के चरणों की, पर फिर भी मीरा की भक्ति भी प्रणम्य है। एक आई थी अकेली, लेकिन हजारों को दीवाना बना गई, प्रेमी बना गई, प्रेम करना सिखा गई। लोग कहते हैं, तर्क देते हैं कि मीरा द्वारिकाधीश के मंदिर में गई, कभी वापस नहीं आई। कुछ कहते हैं कि समाई नहीं थी, निकल गई थी वहां से, कहीं और चली गई, फिर मिली नहीं कभी, कैसे समा सकती। लेकिन ये जो भक्त आते हैं इस दुनिया में, ये भगवत स्वरूप ही होते हैं। भगवान भेजते हैं इनको कि दुनिया को दिखाओ मुझसे कैसे प्रेम करना चाहिए। और मीरा भी उन्हीं में से एक थी, और वो जहां से आई थी वही समा गई, कृष्ण से आई थी और कृष्ण में समा गई। मौत भी स्पर्श नहीं कर पाई है उसका। भक्ति को मौत कभी मार नहीं सकती है, काल कभी मार नहीं सकता है, इसलिए मीरा

राम मीरा है, राधा राधा है, और ब्रज की गोपियाँ उनकी भक्ति भी प्रणम्य है, प्रणाम के योग्य है। तो हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, ना हम राधा बन सकते हैं। राधा बनना तो कोई मूर्खता है सोचना भी। भक्त कहते हैं हमें राधा दास से प्राप्त हो जाए, यही जीवन की धन्यता है। ना हम मीरा बन सकते हैं, ना हम गोपी बन सकते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चल करके हमेशा प्रयास यही करना चाहिए कि जो भगवान की वास्तविक भक्ति है उसकी प्राप्ति बस हमें हो जाए।

रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है, इसीलिए श्री कृष्ण

0: सोचना जरूरी है, लेकिन जब सोच ही थकान बन जाए तो उसे ओवरथिंकिंग कहते हैं। आज हम बात करेंगे इसी हैबिट की जो चुपचाप हमारी पीस डिस्टर्ब कर देती है। हेलो हाई, शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट, और मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीके प्रिया और बीके ज्योति जी। वेलकम मैम।
1: थैंक यू।
2: ओके ज्योति जी, आज ओवरथिंकिंग इतनी कॉमन क्यों हो गई है? क्या ये सिर्फ ज्यादा सोचने की आदत है या फिर स्ट्रेस और फियर का रिजल्ट है?
1: आज अगर हम कहें तो ज्यादा सोच इसलिए चल रही है क्योंकि हम शांति की परिभाषा को भूल ही गए हैं कि हम कैसे शांत रहे। आज हमें लगता है कि हमें अपनी बात बोलने के लिए हमें बहुत कुछ सोचना भी है, और क्योंकि हम एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर आज हमारे चारों तरफ बहुत है तो उसके कारण भी हमारी सोच जो है वो ज़्यादा चल रही है, और ये ज़्यादा सोचना कहीं ना कहीं बाद में जा कर के वो स्ट्रेस का ही रूप बन जाता है। वही ओवर थिंकिंग ही जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ना मल्टीपल जो कहें ऑप्शंस हो गए हैं, ऐसा करें कई तरह के ऑप्शंस होने की वजह से हमारा जो पाथ है वो डिसाइड नहीं है, हमारा एम क्लियर नहीं है, जिसके कारण से हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और जितने लोगों के साथ हम मिलते हैं वो अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं और उस हिसाब से भी हमारी थिंकिंग बढ़ती चली जाती है। तो ये ओवर थिंकिंग पहले शुरुआत होती है हमारे स्ट्रेस की। हम पहले सोचने में ज़्यादा करते हैं, पहले तो हमें कई बार तो पता ही नहीं चलता। आप कई बार देखेंगे कई व्यक्ति शांत बैठे हैं और उनसे पूछो आप क्या सोच रहे हैं तो कहते हैं हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी सोचने की स्पीड इतनी बढ़ चुकी है थॉट की कि हमें ये भी पता नहीं होता है कि हम इस समय सोच क्या रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और बहुत तेज ट्रेन चल रही है, अगर बहुत ज्यादा फास्ट है तो बाहर क्या गया हमें ये पता नहीं चलता है। बाहर कौन सा स्टेशन पास हो गया, कौन सी चीजें पास हो गई, वो हमें नहीं पता चलती है। सेम ऐसे ही हमारे थॉट की भी स्पीड जो है वो इतनी हो गई है कि हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम सोच भी रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं इससे भी हम अनजान हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा वो फिर धीरे धीरे डिप्रेशन का रूप लेता है। हम टू मच में सोच सोच के हम लोगों से किनारा कर लेते हैं, अकेले हो जाते हैं, अकेले रह करके भी हम बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, और कई बार वो इतना ज़्यादा हावी हो जाता है हमारे ऊपर, इतना ज़्यादा एक्सेस हो जाता है कि आजकल की जो हम देखते हैं लोगों का कि सुसाइड कमिट कर लेते हैं क्योंकि वो टू मच में सोच वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। आज हर एक व्यक्ति के पास जो ये बार बार हम कहते हैं कि टाइम नहीं है, ये कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की वजह से ही हमारे पास ये वर्ड्स हमारे पास आते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड को रिलैक्स होने का टाइम नहीं है। हम रात में भी सो रहे हैं तो क्योंकि हमारा रूटीन ऐसा हो गया है कि लेट नाइट सोना, लेट नाइट में हम वर्क कर रहे हैं, और मॉर्निंग जो कि हमें रिलैक्स देता है, कब रिलैक्स देता है, जब हम मॉर्निंग में उठें, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उस समय सारा एटमॉस्फेयर हमारा शांत है, सब कुछ शांत है, लेकिन उस समय तो हम सो रहे हैं। हम कब उठ रहे हैं, जब चारों तरफ शोर शुरू हो गया है, तो हमारी रात्रि भी हमारी काम में गई, जिस समय मुझे रिलैक्स करना था उस समय

0: जो टाइम हमारे माइंड को रिलैक्स करता है उस टाइम तो हम सो रहे हैं, और जिस टाइम हमें एक्चुअल में सोना चाहिए उस समय हम अपने माइंड को और वेस्ट थॉट्स में बिजी कर देते हैं, जिसके कारण हमारी लाइफस्टाइल पर, हमारे हेल्थ पर भी उसका इश्यू बनता है।
1: बिल्कुल सही बात है।
2: यही लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, ओवरथिंकिंग पर डिस्कशन जारी रहेगी। रेडियो महारानी 89.6 FM सुन रहे हैं आप।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम और शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।
1: प्रिया जी, बहुत से लोग कहते हैं कि उनका माइंड रात को ज्यादा एक्टिव हो जाता है
2: जी।
1: ओवर थिंकिंग का स्लीप और मेंटल हेल्थ से क्या कनेक्शन है
2: जी? पहले तो जैसे कि बात हुई कि रात को ओवर एक्टिव हो गया है, ज्यादा एक्टिव हो गया है, और ज्यादा माना ही ओवर एक्टिव हो गया है। रात को माइंड को एक्टिव होना चाहिए या शांत होना चाहिए?
1: शांत
2: होना चाहिए। और इसका मतलब मैं उल्टी दिशा में हूँ, और उल्टी दिशा में हूँ तो फिर रिजल्ट्स भी उल्टे ही आएंगे। फिर आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि क्या ओवरथिंकिंग का स्लीप और मेंटल हेल्थ से कनेक्शन है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर मेरी नींद नहीं हो रही है, और नींद एक ऐसी प्रभुदेन गिफ्ट बोली जाती है, इट्स अ गॉड गिफ्ट, जो कि एक उम्र के बाद धीरे धीरे कम होती है, और उसी वजह से काफी हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं। और देखा भी गया है, कई साइंटिफिक जो टेस्ट किए गए हैं, कि अगर एक नेचुरल स्लीप नहीं आती है, जो यंगस्टर्स भी आज अल्कोहलिक हो चुके हैं तो उसके नशे में सो रहे हैं, या कई हैं जो प्रॉब्लम्स की वजह से स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, लेकिन उनके उठने के बाद वो खुद बोलते हैं कि बहुत थकावट है, सर में दर्द है, जी मचला रहा है, मन अच्छा नहीं है, भारी भारी फीलिंग है। यानी नेचुरल नींद जो हमें एक गॉड गिफ्ट है, जो बॉडी को पूरा रिलैक्स करती है, हमारा इम्यून पावर बूस्ट करती है, माइंड को फ्रेश करती है, हमारा मूड स्टेबल करती है, बहुत सारी चीजें हमारी नींद से जुड़ी हैं। और अगर उस दौरान मैं सोच रही हूँ, बहुत सोच रही हूँ, तो सही नहीं है। फिर कई कहते हैं हम दिन में सो लेते हैं, लेकिन जो ऊर्जा मुझे रात में मिलती है, वो रात को जो होना चाहिए ना, एक सर्कल जो ह्यूमन सर्कल बनाया गया है, रात इज फॉर स्लीपिंग, तो वो चीज जो है वो नेचर के साथ अगर पैटर्न में रहती है तो ज्यादा सही रहती है। आजकल के बच्चे हम देखते हैं वो दिन में सोते हैं और रात को पढ़ते हैं, उनका कहना ये है कि दिन में शोर है
1: जी।
2: और रात को बहुत शांति सी रहती है, लेकिन आप अगर डीप में देखें तो रात में भी वो कान में बहुत जो कहें कि ईयर प्लग्स है ना, या एयरफोन्स लगा करके गाने बहुत लेवल पे सुन करके फिर वो पढ़ रहे होते
1: जी।
2: तो शोर तो कहीं ना कहीं है ही, लोगों का नहीं है तो कान में गानों का शोर है, लेकिन वो कहते हैं उसमें हमारे को हो जाता है, सेटिंग किया है हमारा हो जाता है। तो हम सेटिंग ऐसा क्यों नहीं कर रहे, हमने वैसी सेटिंग क्यों की है? और अगर हमने वैसी सेटिंग की है तो कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट्स हैं ही। और साइंस भी ये मानती है, और हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि सुबह का साइन, यानी सुबह जो उठ करके किया जाता है, उसकी पावर, उसके रिजल्ट्स जितने हैं वो बहुत ट्रेमेंडस हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं मैम।
0: यही लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, ओवरथिंकिंग पे डिस्कशन जारी रहेगी। रेडियो महारानी 89.6 एफएम सुन रहे हैं आप।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन हम?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे सुनो।
0: बाय।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम और शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।
1: बहुत लोग कहते हैं कि ओवरथिंकिंग का मतलब ये होता है कि हम इमोशनली वीक हैं, या फिर ये एक नॉर्मल ह्यूमन पैटर्न है। आप दोनों का इस पर क्या कहना है?
2: ये तो आज की डेट में वैसे तो ये कोई ह्यूमन पैटर्न नहीं है, ये हमने अपना ऐसा बना दिया है आज की डेट में। आज की डेट में लोगों का ये कहना गलत नहीं है कि हाँ ये पैटर्न बन गया है, क्योंकि हर कोई इतना ज्यादा सोच रहा है। एक्चुअल में पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसके अलावा भी थॉट्स हैं जिसको हम कहते हैं वेस्ट थॉट्स।
1: ओके।
2: और आज की डेट में हम पॉजिटिव और नेगेटिव से ज्यादा वेस्ट थॉट्स चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मॉर्निंग में अगर जल्दी नहीं उठे तो अभी हमारा नेगेटिव चलना कैसे शुरू हो जाता है? वेस्ट पहले चलता है, आज हम लेट हो गए। अब उसके बाद फिर वो जब एक्सेस होता है तो फिर लगता है कि आज हमारा ये काम रुक जाएगा, ये हो जाएगा, फिर हम दूसरों पर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, इनकी वजह से लेट हुए, ये काम हुआ, रात को हम पार्टी में थे या रात को हम देरी से सोए थे। तो ये सारी चीज़ें हमारे, अब उस समय हमें ये करने की बजाय जितना टाइम हमारे पास बचा है उसको मुझे कैसे मैनेज करना है, इससे हम कहते हैं कि हमने थॉट को मैनेज किया। माना हमारी ओवरथिंकिंग नहीं चली, लेकिन हमने उसको एक सिस्टम में लेके आए। लेकिन आज की डेट में लोग इसको नेचुरल मान रहे हैं कि अच्छा ऐसा तो थॉट चलेंगे ना सबके, लेट हो गए हैं तो ये हो गया, तो यही ओवरथिंकिंग का हमने आज पैटर्न बना दिया है। और इस चीज़ को हम कम कर सकते हैं, उसके लिए कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है करने के लिए, सिर्फ हमें क्या करना है। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी अगर आप कहें तो मैं सुना सकती हूँ। तो एक बहुत अच्छी एक पंडित थे, एक गुरु जी थे, और उनके पास एक राजा ने जाके कहा कि मुझे जो है ध्यान सीखना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बैठिए और बैठ जाएं शिष्यों के साथ, और बैठें और आंख बंद कर लें और ध्यान की अवस्था में चले जाएं। थोड़ी ही देर में बहुत तेज आंधी और तूफान आने लगा। तो जैसे ही आंधी तूफान आना शुरू हुआ तो सारे शिष्य भागने लगे, वो भाग गए। राजा ने आँख खोली तो राजा ने भी देखा कोई भी शिष्य नहीं है, वो भी भाग लिए। थोड़ी देर के बाद वो तूफान थम गया और फिर सभी आकर के बैठ गए, लेकिन उन्होंने देखा गुरुजी कहीं नहीं गए। तो राजा ने उनसे पूछा गुरुजी से कि आप सारे आपके शिष्य चले गए थे, मैं भी भाग गया, आप क्यों नहीं भागे? उन्होंने कहा कि आप भी भागे, शिष्य भी भागे और मैं भी भागा। तो उन्होंने कहा आप तो नहीं भागे, आप तो यहीं बैठे थे। बोले आप बाहर भागे, मैं अंदर भागा, मैं भीतर की तरफ गया। तो सेम ऐसे ही जब हम अपने अंदर में हमारी सोच को कभी हम चेक करें, हम हमेशा ही बाहर के लोगों की सोच में रहते हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ऐसा कैसे होगा, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, हम इसको ही, यही ओवर थिंकिंग है
1: जी।
2: तो सबसे ज़रूरी है इसको अगर हमें कम करना है तो पहले हम खुद के अंदर जाएं, खुद के थॉट पर थोड़ा सा रिसर्च करें कि मेरे थॉट एटलीस्ट चल क्या रहे हैं, और अगर चल भी रहे हैं हम नहीं जजमेंट कर पा रहे तो अपने आप को कुछ अच्छी अफर्मेशन दें जिससे कि हमारा जो थॉट लेवल है उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी और हमारा जो है वो हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और रिलेशन भी अच्छा होगा।
1: बिल्कुल सही
3: जी, जैसा कि ज्योति जी ने कहा, बहुत सुंदर उन्होंने एग्जांपल दिया कि पैटर्न तो हम खुद बना रहे हैं। और मैं देखती हूँ इस समय जो विशेष अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इसमें हर चीज़ हम ही क्रिएट कर रहे हैं, चेंज एक लेकर आ रहे हैं हर चीज़ में, जो नेचर का है उसमें चेंजेस ला रहे हैं, ह्यूमन नेचर है उसमें चेंजेस ला रहे हैं, हर चीज़ में चेंज ला रहे हैं। लेकिन एक वर्ड जो आया कि ओवर थिंकिंग क्या इमोशनली वीक होना है, तो मेरा ये मानना है कि बिल्कुल भी नहीं। जो ओवर थिंकर्स हैं वो इमोशनली वीक हो ऐसा नहीं है
1: जी।
3: जो बहुत बड़ी कंपनीज रन करते हैं कई बार वो भी ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन इमोशनली बहुत स्टेबल वो हम देख पाते हैं। लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि फ्रंट साइड तो वो बहुत स्टेबल है लेकिन इंटरनल वर्ल्ड में वो काफी शेकिंग उनका रहता है।
1: हाँ जी,
3: वो एक अलग हम कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है जो ओवर थिंकर्स हैं वो ओवर जो कहें कि उनका इमोशनली वीक, ऐसा नहीं है। लेकिन ह्यूमन पैटर्न भी नहीं है, ओवर थिंकिंग इज नॉट अ ह्यूमन पैटर्न। हमारा ह्यूमन पैटर्न वही है जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमने अपने पूर्वजों का देखा, या जो हम अपने देवताओं या इष्टों का, या जो हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं उन्होंने जो पैटर्न दिया है, साइंस आज उसको बिल्कुल सही मानता है। जैसे नीचे बैठकर चौकड़ी मारकर भोजन करना, या फिर फॉरनर्स के द्वारा लाया हुआ डाइनिंग टेबल चेयर्स पे बैठ के चम्मच से खाना खाना
1: जी।
3: तो आज हम सभी जानते हैं कि कौन सा बेस्ट पैटर्न है, जबकि हम सबके घरों में डाइनिंग टेबल्स हैं और हम सभी चावल जो है वो चम्मच से खा रहे हैं, लेकिन द बेस्ट वे टू ईट द चावल इज बाय हैंड्स। कि हम अपनी उंगलियों का प्रयोग करें, क्योंकि उसमें जो रस निकलता है, जो भी केमिकल सिक्रीट होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बेस्ट है। तो लाइफ पैटर्न जो है वो हमारे एंसेस्टर्स बहुत अच्छे से क्रिएट करके वो हमें एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझा चुके हैं, लेकिन हम उसमें चेंजेस ला रहे हैं, इट्स गुड। बट लेकिन अगर हम उन चीज़ों को भी इन्वॉल्व रखते हैं तो हमारे को बेस्ट या हेल्थ वाइज, मेंटली वाइज, जो भी सोशली, हम ज्यादा बेनिफिट प्राप्त करते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: यही लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, ओवरथिंकिंग पे डिस्कशन जारी रहेगी। रेडियो महारानी 89.6 एफएम सुन रहे हैं आप। यही लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, ओवरथिंकिंग पे डिस्कशन जारी रहेगी। रेडियो महारानी 89.6 एफएम सुन रहे हैं आप। यही लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, ओवरथिंकिंग पे डिस्कशन जारी रहेगी। रेडियो महारानी 89.6 एफएम सुन रहे हैं आप।

0: That's all. Thank you so much for listening.
1: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम और शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट। प्रिया जी, एंगर, गिल्ट या रिग्रेट जैसे इमोशंस ओवरथिंकिंग को कैसे ट्रिगर करते हैं?
2: जैसे मुझे गुस्सा आया, सिंपल सी बात है, गुस्सा मैं यूं ही नहीं कर देती। मैंने मन में जरूर, जैसे ही आपने मुझे कोई ऐसे वर्ड्स बोले जो ट्रिगर कर गया, मैं पहले से ही उन चीजों को स्टोर कर चुकी थी जो आपने पहले कहे होंगे
1: जी।
2: और वो चीज स्टोर का लेवल इतना हाई हो गया कि बस अब ढक्कन खुलने ही वाला है, सीटी बजने ही वाली है, और आपने फिर से प्रेशर डाल दिया है। तो प्रेशर डालना मीन्स ओवरथिंकिंग
1: जी।
2: ठीक है, तो अगर मेरे अंदर वो गुस्सा पहले से जो मैंने स्टोर किया हुआ है और बार बार जब मैं सोचे जा रही हूँ, तो ये सोच एक ऐसी चीज है जो हम लोगों ने जो स्टडी किया, जो मैंने बेसिकली रिसर्च किया है कि सोच अगर जिस दिशा में आप लेने लगते, किसी भी दिशा में, आप एक से दो दिन, दो से हफ्ते भर, 15 दिन, आप कोई भी एक ऐसी चीज सोच लीजिए जो आपको बिल्कुल लगती है बेतुकी है, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए अगर आप सोचने लगते हैं, जो शास्त्रों में भी एक कहानी है जो मैं भी एक सुनाना चाहूंगी छोटी सी। एक भक्त को एक पंडित जी कथा सुना रहे थे और वो भक्त बहुत भोला, बुद्धू जो हम कहें वो था, और गुरु ने कह दिया कि तू तो भैंस है। तो उसने इसको मंत्र की तरह ले लिया, वो अपने घर चला गया और अपने घर में उसने रात भर यही गुंजन किया, उसे अफर्मेशन, सेल्फ एस्टीम की तरह ले लिया, मतलब अच्छे रूप में लिया कि मैं भैंस हूँ। और जब सुबह उसकी माता ने उसे पुकारा कि बाहर राजा बाबू, तो पिता ने पुकारा, तो उसने कहा मैं भैंस हूँ और ये चौखट बहुत छोटी है, मैं इसके बाहर नहीं आ सकता, आप चौखट बड़ी करो। तो माना एक सोच, जो ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है और हमको लगता है बड़ा बेतुका है, पर नहीं, एक सोच जिसको आप पूरी रात भर सोच रहे हैं वो बहुत बड़ा एक चेंज ले आती है हमारे माइंड वर्ल्ड में। और माइंड ही एक्चुअली जो कहते हैं कि जैसे एक आइसबर्ग होता है, बर्फ होता है, 90 नीचे है और 10% विजिबल होता है, यानी जितना छोटा वो दिख रहा है वो उतना होता नहीं है, उसका पूरा विशाल जो साम्राज्य है वो नीचे होता है जो दिख नहीं रहा। और यही माइंड गेम है कि जो हम ऊपर दिखा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अंदर दफन है सब कुछ, जो हमें विजिबल कई बार नहीं होता है
1: जी।
2: तो इसीलिए अगर मैंने रात भर जो सोचा है, जो कि मुझे दिख रहा है, मैंने रात भर ही सोचा है, लेकिन अंदर उसने पूरा वर्ल्ड क्रिएट कर दिया होता है और उस फ्लो में फिर मैं बहने लगता हूँ। जैसे हम देखते हैं जो सुसाइड करने वाले होते हैं, वो एक दिन में सुसाइड डिसाइड नहीं करते, लेकिन ऐसा ऐसा सोचने लगते हैं कि उनको सुसाइड इजी लगने लगता है
1: जी।
2: और जब मैंने कुछ दिन ये चीज देखी, किसी की ऐसे फील की कि कैसे वो लोग इस दिशा में पहुंच जाते हैं, तो सिर्फ 2 दिन ही आप इस ट्रैक में अगर सोचने लगते तो 3रा दिन आपके लिए इजी होता है उन सबको सोचने में। एंड इट्स रियली डेंजरस, रियली वेरी वेरी डेंजरस। तो इसीलिए जैसे क्वेश्चन है कि हमारे को गुस्सा, जो एंगर है, गिल्ट है, रिग्रेट है, ये कैसे जो है ओवरथिंकिंग करता है
1: जी।
2: तो क्योंकि ये सारी चीजें नेगेटिव है और नेगेटिव की स्पीड स्लो होती है या फास्ट?
1: फास्ट।
2: तो अगर आपने नेगेटिव सोचा है तो नेगेटिव, जैसे पॉइजन है और अमृत है, आप अमृत चखते हैं तो उसका पूरे लाइफ में क्या इफेक्ट है, और आप एक जहर पी लेते हैं या कोई एक गंदी आदत आप अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर लेते हैं, उसका इफेक्ट आप देखिए कि नेगेटिव का बहुत सुपर फास्ट है। तो जब मैं नेगेटिव में हूँ, यानी गुस्सा कर रहा हूँ या मेरे को कोई गिल्ट फील आ गई है या रिग्रेट हो रहा है, तो ये नेगेटिविटी होने की वजह से बहुत स्पीड मेरे अंदर क्रिएट कर देता है, और वो स्पीड मेरी पहले कहाँ आ रही है, थॉट लेवल पर। तो ये ओवर थिंकिंग को वो ट्रिगर करता है, बिल्कुल बढ़ा देता है, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए इसके लिए भी बहुत सारे रास्ते जो हमें करने चाहिए, लेकिन विशेष ये है कि सबसे पहले तो मैं अपने आप को स्टॉप करना जानूं कि मेरे को नहीं इतना सोचना है, जो हो गया वो हो गया,
1: बिल्कुल,
2: और मैं सोच कर उसको अभी भी हो रहा है ऐसा प्रेजेंट में ला रहा हूँ। पास्ट इज पास्ट, वो डन हो चुका है, मैं उसे अब चेंज नहीं कर सकता, इट इज रिटन समवेयर, मेरी डेस्टिनी में लिख गया। लेकिन अभी भी अगर मैं उसी फ्लो में फ्लो कर रहा हूँ, यानी सोच रहा हूँ, तो आई एम स्टिल राइटिंग इट, और यानी मैं अपनी जो मेरे को जो भी मिलने वाला उसका रिजल्ट, उसको मैं एक्सेस में इनलार्ज कर रहा हूँ। तो जो पाप किया या गलत किया या नेगेटिव किया, उसका एक अगर सजा है, तो अगर मैं उसको अभी भी सोच रहा हूँ तो मैं 10 गुना उसको इंक्रीज कर रहा हूँ। तो इट्स बेटर टू स्टॉप इट, क्योंकि वो जो गलत हुआ वो गलत हुआ, अब मुझे उसे कैसे ठीक करना है मैं उसके बारे में सोचता हूँ, तो आई कैन चेंज माई डेस्टिनी इन फ्यूचर।
3: जी बिल्कुल सही बात है।
1: यही लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, ओवर थिंकिंग पे डिस्कशन जारी रहेगी। रेडियो महारानी 89.6 FM सुन रहे हैं आप।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM और शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।
1: ज्योति जी, कौन सी डेली हैबिट ऐसी है जो ओवरथिंकिंग को बढ़ा सकती है और कम भी कर सकती है?
2: ओवरथिंकिंग की हैबिट को थिंकिंग ही कम भी कर सकती है और बढ़ा भी सकती है।
1: बिल्कुल।
2: अगर हम सुबह सुबह अपने आप को थॉट दे देते हैं पॉजिटिव, सुबह उठते के साथ ही हमें अपने आप को थॉट देना है कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। एक्चुअल में देखें तो हम सब पीसफुल हैं। आप पूरा दिन किसी भी व्यक्ति को गुस्से में नहीं देखेंगे।
1: बिल्कुल।
2: है ना, लेकिन पूरा दिन चुप रहने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे।
1: बिल्कुल।
2: इट मीन्स कि हमारे अंदर वो पीस तो है
1: जी,
2: लेकिन बस हमने उसको पहचाना नहीं है
1: जी।
2: हमने लोगों की इतनी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर ले ली है और टू मच इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठी भी कर रहे हैं
1: जी।
2: जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हम ये नहीं कहते कि इन्फॉर्मेशन नहीं आपको लेनी है, लेकिन एटलीस्ट सुबह सुबह अपनी मेमोरी के अंदर कुछ ऐसे थॉट डाल दें, कुछ ऐसी चीज़ें डाल दें। जैसे कि अभी प्रिया जी ने अमृत और विष की बात कही, अगर आप सुबह सुबह अमृत डाल लेते हैं, पांच कोई अच्छे थॉट कुछ भी अपने लिए, जो भी आपको लगता है कि आज पूरे दिन के लिए मुझे अपने लिए चाहिए, जैसे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, कुछ भी ऐसे थॉट दे सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए
1: जी।
2: हाँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक और चीज़ की है जो हमारी थॉट बढ़ रहे हैं, उसका कारण ये है कि हमें अपने लिए अच्छे थॉट करने ही नहीं आते। अभी हम किसी को अगर बोलते हैं कि आप खुद को ब्लेसिंग दें, तो हम क्या दे सकेंगे?
1: बिल्कुल।
2: तो वो उसी चीज़ को हमें बस ब्रेक करना है, अपने लिए कुछ अच्छा, सिर्फ मेरे लिए, कि मेरा पाथ जहाँ भी मैं जाऊँ वहाँ खुशियाँ हो।
1: बिल्कुल।
2: ये अपने लिए है, जिसको भी मैं मिलूँ उसको खुशी मिले
1: जी,
2: ये अपने लिए है, है ना। मैं सदा स्वस्थ रहूँ, ये अपने लिए है।
1: बिल्कुल।
2: है ना, ये चीज़ें छोड़ के हमने कहाँ गए, है ना। बहुत सारे पैसा हो, राइट, पैसा होना चाहिए आज सबकी, आपका ही नहीं, शायद आज की किसी भी जनरेशन से हम पूछेंगे तो यही एक पहला प्रेफरेंस रहता है उनका,
1: मनी
2: मनी। लेकिन वो पैसा कमा भी हम क्यों रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? हमने अपना मकान बना लिया, ओके, हमारी नीड्स है, ठीक है, हमने अपना मकान बना लिया, हमें एक वेल सेटल्ड, हमें जॉब मिल गई है, हमें एक अच्छा परिवार।

0: बिना कुछ किए भी हमें सब कुछ मिल रहा है फिर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं हमें उन पैसों से हमारे सबके चेहरों पर वो खुशी चाहिए
1: जी।
0: वो खुशी हमारी डिज़ायर होनी चाहिए, ना कि डिज़ायर जिस चीज़ों से आ रही है। और यही हमारी ओवर थिंकिंग क्यों चल रही है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे रिलेशंस बहुत सारे चाहिए, लेकिन फेथफुल रिलेशन है ना वो नहीं है। उसका रीज़न आज अगर पूछते हैं, हमने एक बार एक जगह पर किया कि हमने पूछा कि आप अपने आप से बताएं कि आपकी लाइफ में 25 मेंबर्स थे और उनसे कहा गया आपकी लाइफ में कितने ऐसे लोगों की क्या आप लिस्ट निकाल सकते हैं जो आपके लिए फेथफुल हो, जिनको आप अपनी हर बात शेयर कर सके, क्या ऐसे लोग आपके पास है, तो 99% लोगों का नो में आंसर था कि नहीं है हमारे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति कि जिसको हम अपनी हर बात शेयर कर सके या हर एक चीज कह सके। तो क्यों नहीं है, क्योंकि रीजन, अब हम यहाँ पे लोगों को दोष देना शुरू कर देते हैं वो ऐसे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हमने अपने आप से पूछा मैं विश्वास पात्र हूँ, क्या मैंने किसी का फेथ जीता है, या हम भी सुनते हैं और कहीं और पास ऑन कर देते हैं। तो सबसे जरूरी है हमारी लाइफ के अंदर चाहिए क्या, ओवर थिंकिंग कम करने के लिए हमें पहले चाहिए पीसफुल, और वो हम हैं
1: बिल्कुल,
0: लेकिन सिर्फ मुझे रियलाइज करना है, उसे याद करना है। मुझे चाहिए हैप्पीनेस, वो मैं हूँ, लेकिन सिर्फ मुझे वो याद करना है, और उसके लिए वो सुबह सुबह अपनी मेमोरी में डालना है, तो अपने आप हमारी ओवर थिंकिंग कम हो जाए।
1: बिल्कुल सही।
2: यही लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, ओवर थिंकिंग पे डिस्कशन जारी रहेगी। रेडियो महारानी 89.6 FM सुन रहे हैं आप।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम और शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।
1: मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है अगर ओवरथिंकिंग किसी को हो रही है वो ये चीज करे तो
2: जी।
1: बट हमें पता कैसे चलेगा कि हम इससे धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं? आप दोनों का इस पे क्या कहना है?
2: जी, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी इसमें कि जैसे हम ब्रीथ करते हैं
1: जी,
2: तो हमारी सांसें ज्यादा हो तो रिलैक्स माना जाता है या कम हो तो रिलैक्स माना जाता है। यस, स्लो हो लंबी हो तो उसे रिलैक्स माना जाता है। तो आपको कभी भी चेक करना है तो आप ये कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट है जो हम करते हैं सबके साथ ही, कि आप अपनी नॉर्मल सांसें 60 सेकंड्स में काउंट कर लीजिए कि आपने कितनी ली है, और उसके बाद आप आधा घंटा अपने आप को अफर्मेशंस दीजिए कि मैं पीसफुल सोल हूँ। आप बहुत सूदिंग गाने, फास्ट ट्रैक के गाने नहीं, सूदिंग गाने जो मेडिटेशन के लिए स्पेशली रिकमेंड किए जाते हैं, फ्लूट का जो अब धुन है वो सुन सकते हैं, बर्ड्स चिपरिंग है या सी शोर वेव्स का जो साउंड है वो ट्रैक चला करके आप थोड़ी देर अपने आप को मेडिटेशन में रखें। मिनिमम हाफ एन आवर रखें तो बहुत अच्छा है, एटलीस्ट आप 10 to 5 मिनट्स भी रखते हैं तो उसके रिजल्ट्स हैं। उसके बाद फिर से 60 सेकंड्स आप अपने ब्रेथ काउंट कीजिएगा, इसमें बहुत फ़र्क आएगा। ये हम करते हैं और इसमें बहुत आपको इंस्टेंट पता चलता है कि आपके ब्रेथ जो होते हैं, सांसें जो होती हैं वो बहुत कम आ जाती है। कईयों की तो 16 से 9 आ जाती है, कईयों की 25 से 9 10 आ जाती है, तो ये इंस्टेंट होता है। और इसीलिए अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो आपके बॉडी में भी आपको चेंजेस फील होते हैं, आप बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये भी एक साइन है कि यू आर नॉट इन ओवरथिंकिंग, क्योंकि रिएक्ट करना भी ओवरथिंकिंग है। आपने बहुत सोचा और बहुत सोचा, मैंने इंस्टेंट सोचा और इतना सोचा और फटाफट उसका रिएक्शन दिया
1: जी।
2: तो एक मेडिटेशन जो रेगुलर बेसिस पे करता है वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता, उसका जल्दी से टेम्परेचर हाई नहीं होता, वो जल्दी से बहुत जल्दी से रिएक्ट माना बात करके रिजल्ट्स आउट कर देना और हर चीज़ों को जल्दी जल्दी डील नहीं करता है। जो रेगुलर मेडिटेशन करता होगा वो बहुत रिलैक्स्ड होगा। उसका भोजन करने का स्टाइल आप देख लीजिए, चाहे वो कोई भी चीज़ नोटिस कर रहे हैं तो उनका स्टाइल देख लीजिए, तो वो हर जगह जो होगा वो बहुत संभल के इन द सेंस, मैं ये नहीं कहती बहुत स्लो हो जाएगा
1: जी,
2: वो हर काम करेगा लेकिन उससे पहले से वो बेहतर करेगा, पहले से बेहतर वो रिलैक्स्ड है, अपने आप में कंटेंटमेंट उसे फील होगी।
1: बिल्कुल,
2: कि उसको लगेगा कि अरे ठीक है, ये सब कुछ अच्छा हो रहा है, उसे नेगेटिव हुआ है लेकिन उसको नेगेटिव डील करने का भी पावर मिलता है। पावर इन द सेंस वो अपने आप को उस समय स्टॉप करेगा और आगे चलकर अपने आप को उस चीज़ को दोबारा से सोचना वो नहीं रखेगा, सोचेगा नहीं
1: जी।
2: जो कि हमने अभी पीछे भी क्वेश्चन किया था कि हमारे पास जो रिग्रेट हुआ या हमारे को जो भी गिल्ट फील हुआ, तो वो उस गिल्ट से भी अपने आप को ईजिली निकालने की क्षमता रखेगा। ये मेडिटेशन का एक कहें कि ऊर्जा कहो या मिराकल कहो, ये क्षमता रखता है मेडिटेशन कि आपको उस हर जोन से बाहर निकालता है जो जोन निगेटिव कहे जाते हैं।
3: जो भी मेडिटेशन करते हैं, जैसे कि अभी प्रिया जी ने बताया, जो भी मेडिटेशन करते हैं एक तो उनकी वो हैप्पीनेस मिल जाती है, वो बड़े खुश रहेंगे और उनका एक ऑरा जो है ना वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। कई बार आपने फील भी किया होगा, आपके फैमिली में भी आपने कई बार, कि कुछ कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनके पास बैठ के बड़ा सुकून फील होता है और वो भी कहीं ना कहीं रिलैक्स्ड होते हैं। हम उनको देख करके कहते हैं कि आप तो बहुत रिलैक्स हैं, पर किसी किसी का और ऐसा होता है कि उनके पास बैठते ही हम शांत भी हों तो हमें गुस्सा आ जाता है
1: जी।
3: है ना, तो वो कहीं ना कहीं वो ऑरा जो बना हुआ है नेगेटिविटी का, तो वो चीज़ मेडिटेशन करने वालों का जो ऑरा होता है वो अपने आप में पॉजिटिव बन जाता है।
1: बिल्कुल।
3: और पॉजिटिव उनके पास में जो आते भी हैं लोग, उनको भी वो पॉजिटिविटी फील होती है। वो जहाँ भी जाते हैं किसी भी सिचुएशन में, जो मेडिटेशन करने वाले हैं या पॉजिटिव रहने वाले, वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे।
1: बिल्कुल,
3: ये उनकी पहचान होती है कि वो डिस्टर्बेंस नहीं है। इसको अगर हम शास्त्रों के हिसाब से अगर हम बताएं या किसी तरह से, तो उसमें ये कहा जाता है कि योगी शीतल काया वाले, माना उनके जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत काम होंगे
1: जी,
3: और अंग अंग उनका शीतल होता है और जो भी उनके संपर्क में आता है वो भी शांत हो जाता है। इसीलिए हमें, क्योंकि हम हैं पीसफुल, हमें चाहिए भी शांति है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं उसे कहाँ? बाहर
1: जी।
3: जरूरत है उसको अपने अंदर ढूंढने की, अपने अंदर जाने की, और उसके लिए हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, है ना। तो ये मेडिटेशन करने के लिए सिर्फ हमें 5 से 7 मिनट भी अगर हम देते हैं तो हम बहुत अच्छा अपने आप को रिलैक्स भी कर पाते हैं और वो हम खुद फील करेंगे। एक मैंने आपको योगी की बात बता दी या मेडिटेशन करने वालों की बात बता दी, लेकिन एक आप जब खुद करते हैं उनका जीवन आप देखेंगे कि बैलेंस्ड रहता है
1: जी।
3: ऐसा भी नहीं है कि जो मेडिटेशन करते हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं, वो काम धंधा छोड़ के बैठ गए हैं। ये भी नहीं है कि भाई वो 24 घंटे बस प्रभु की कोई माला जप रहे हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ सोचने का पैटर्न पॉजिटिव हो जाता है
1: जी।
3: बस उनका नज़रिया पॉजिटिव की तरफ हो जाता है। वो दूसरों को चेक करने की बजाय, दूसरों को जजमेंट देने की बजाय मुझे क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट को भी मेडिटेशन जरूरी है। आप देखते हैं साइंटिस्ट जो है वो बिल्कुल एकांत में चले जाते हैं। अगर आपने डॉक्टर स्टीफन का नाम सुना होगा तो उन्होंने भी अपने जो ऑर्गन्स उनके थे कंट्रोल में उसको उन्होंने यूज़ किया। उन्होंने कभी भी और लोगों को ब्लेम नहीं किया कि इनकी वजह से इनकी वजह से इनकी वजह से। उन्होंने सिर्फ क्या किया कि अपने जो ऑर्गन्स उनके कंट्रोल में थे। मेडिटेशन का मतलब भी यही है कि आपकी जो चीज़ कंट्रोल में है आप उसका बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं। और वो तब होगा जब मुझे पता होगा मेरे पास क्या है, और उसके लिए मुझे थोड़ा सा अपने आप को तो चेक करना पड़ेगा। तो मेडिटेशन करने वाले लोग बैलेंस्ड होते हैं, उनकी लाइफ के अंदर बहुत पॉजिटिविटी होती है, वो हर एक परिस्थितियाँ जब भी आती हैं किसी भी तरह की तो उसमें अपने आप को मोल्ड करना वो जानते होते हैं।
4: आज की डिस्कशन से हमें ये पता लगता है कि हमें हमेशा बी पॉजिटिव रहना चाहिए। आप सुन रहे थे जस्ट टॉक अबाउट इट से रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।
2: सोचना है जाना कहाँ जाए, वहीं ले जाए जहाँ।
1: तो थोड़ा फोन डाउन कीजिए और जिंदगी खुलकर जीना शुरू कीजिए। रेडियो महारानी कहता है, जिंदगी ऑनलाइन नहीं दिल से जी जाती है।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: दिन
1: कुड़ी मैनू किसी
2: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
3: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
4: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला।

0: मजा मजा। जिवाले बाबू मेरा गाना चला दो, जिवाले बाबू मेरा गाना चला दो, जिवाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।
1: अरे आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, गाना बजा दूं।
2: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं।
4: तो टेढ़ी मेढ़ी राय, उल्टी पुल्टी बातें,
3: इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
5: चल अर्जुन, शुरू हो जा।
2: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
5: अर्जुन नहीं होता, अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ।
5: इरशाद,
2: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
5: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा,
2: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
5: ये बात तो सही है।
2: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
5: कैसे कैसे?
2: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
5: अरे यार, वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
2: सुनो सुनो, हेलो,

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जिंदगी सब सुनकर हर किसी के दिमाग में कोई ना कोई चीज जरूर आती है। कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी हमारे खुलकर सपने जीने का राज है, तो कभी लगता है कि जिंदगी एक प्यारा सा एहसास है। किसी के लिए सिर्फ ये सांस है, तो किसी के लिए उसकी पूरी जिंदगी उसके हौसले की कहानी। हे वेलकम दोस्तों, मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानी ऑन रेडियो महारानी। और जैसा कि आपको पता है कि संघर्ष की कहानी में मैं लेकर के आती हूँ कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसी स्टोरीज जो आपके ही गली मोहल्ले की हैं पर अभी तक आप तक नहीं पहुँची है। तो उसका जिम्मा उठा लिया है मोनिका ने और आज बहुत ही खूबसूरत सी कहानी मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ। तो जब बात आती है जिंदगी की, तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है। जिंदगी का असली मतलब तब समझ आता है जब दरवाजा आपके लिए बंद कर दिया जाए, जब लोग कह दे तुमसे नहीं हो पाएगा, और जब आपका ही समाज आपकी पहचान को आपके सपने से छोटा समझने लगे, जब हर सुबह उम्मीद उठे पर रात होते ही वो सो जाए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर किसी बच्चे से उसका बचपन छीन लिया जाए, किताबें हटाकर उसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाए, तो उस बच्चे की लाइफ क्या होगी? अगर हर दिन उसे ये एहसास कराया जाए कि उसकी कोई कीमत नहीं है, तो क्या होगा? शायद वो टूट जाएगी, शायद वो हार मान लेगी, या शायद वो अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लेगी। और डियर फ्रेंड्स, आज की कहानी में ये सब सच में हुआ है। एक ऐसी लड़की जिसने सिर्फ गरीबी नहीं देखी बल्कि जातिगत भेदभाव भी झेला है, समाज के ताने सुने, घरेलू हिंसा को सहा, और एक ऐसा दिन भी देखा जब उसे लगा कि अब मुझे नहीं जीना चाहिए, और उसने अपनी जिंदगी खत्म करने की भी कोशिश की। लेकिन किस्मत शायद उसे बचाना चाहती थी, क्योंकि ईश्वर ने उसके लिए एक ऐसी कहानी लिख रखी थी जिसे आज पूरी दुनिया प्रेरणा के नाम से जानती है। कहा जाता है कि हीरे की पहचान तब होती है जब उसे आग में तपाया जाता है, और आज की हमारी कहानी भी एक ऐसे ही हीरे की है जिसे जिंदगी ने बार बार आग में झोंका, लेकिन हर बार वो और मजबूत होकर बाहर निकली। और जिस इंसान को कभी लोग बोझ समझा करते थे, उसी इंसान के फैसले पर हजारों लोगों का आज भविष्य टिका हुआ है। जिसके पास कभी दो वक्त की रोटी के पैसे नहीं हुआ करते थे, वो आगे चलकर करोड़ों की कंपनी की मालकिन बनी। तो आखिर कौन है वो लड़की, कैसे उसने मौत के दरवाजे से लौटकर सफलता की सबसे ऊंची सीढ़ी का सफर तय किया, जानेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूं मोनिका और आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानी।
1: Get ready?

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानी। कहते हैं कि इंसान का बचपन उसकी सबसे खूबसूरत यादों में से होता है, लेकिन आज जिस लड़की की कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ, उसके बचपन में ना खिलौने थे, ना बेफिक्र हंसी, ना सपनों से भरी सुबह। उसके हिस्से में थी तो सिर्फ गरीबी, भेदभाव और दर्द। साल था 1961 यानी 1961। महाराष्ट्र के अकोला जिले का एक छोटा सा गांव। यहीं एक गरीब दलित परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। पिता पुलिस विभाग में कांस्टेबल थे, ईमानदार थे, लेकिन आमदनी इतनी नहीं थी कि बड़े परिवार की हर जरूरत पूरी हो सके। घर में अक्सर पैसों की कमी रहती थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि पूरे परिवार को सोच समझ कर खाना बांटना पड़ता था। लेकिन इनके घर में गरीबी से बड़ा भी एक दर्द था, जिसका नाम था जातिगत भेदभाव। स्कूल में कई बच्चे उनके साथ बैठना भी नहीं पसंद करते थे। कुछ लोग सिर्फ जाति की वजह से उसे कम समझते थे। सोचिए जरा, एक छोटी सी बच्ची जिसे अभी दुनिया को समझना भी नहीं आया था, उसे समाज पहले ही बता देता है कि तुम दूसरों जैसी नहीं हो। लेकिन उसने फिर भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। वो सपने देखती रही कि एक दिन मैं भी कुछ बड़ा करूंगी, मगर जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। सिर्फ 12 साल की उम्र, जिस उम्र में बच्चे 7वीं-8वीं की किताबें पढ़ते हैं, उस उम्र में उसके हाथों में स्कूल बैग नहीं बल्कि शादी की मेहंदी लगा दी गई थी। उसकी शादी उससे कई साल बड़े युवक से करा दी गई थी। किसी ने उससे पूछा तक नहीं कि वो क्या चाहती है, उसके सपने क्या हैं, उसकी इच्छा क्या है, क्योंकि उस दौर में बहुत सी बेटियों की आवाज़ सुनी ही नहीं जाती थी। शादी के बाद उसे लगा होगा कि शायद अब जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन असल संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। ससुराल पहुंचते ही उसके लिए हर दिन एक परीक्षा जैसा बन गया। सुबह से रात तक काम, जरा सी गलती पर डांट और कई बार मारपीट। उसे मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा। वो चुप रहती क्योंकि उसे यही सिखाया गया था कि लड़की को सब सहना पड़ता है, लेकिन हर इंसान के सहने की एक सीमा होती है। कुछ महीनों बाद जब उसके पिता को उसकी हालत का पता चला तो वो अपनी बेटी को वापस घर ले आए। उन्हें लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल दर्द तो अब शुरू हुआ था। गांव के लोग ताने मारने लगे कि शादी टूट गई है, शायद ये लड़की अब सगुनी है और अब इसका क्या ही होगा। हर दिन हर बात उसके दिल को तोड़ रही थी। वो खुद को एक बोझ समझने लगी थी। और फिर एक दिन उसने वो कदम उठाया जो शायद कोई इंसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं उठाना चाहेगा। उसने खुद को मारने की कोशिश की। उसे लगा शायद अब सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। परिवार वाले समय रहते उसे अस्पताल ले गए और डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली। अब उसे होश आया तो वो सिर्फ जिंदा नहीं थी, वो बदल चुकी थी। उसने खुद से एक वादा किया कि अगर भगवान ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है तो मैं इससे रोते हुए नहीं बल्कि लड़ते हुए जीऊंगी। और डियर लिसनर्स, यही वो पल था जिसने एक टूटी हुई लड़की को एक योद्धा बना दिया। लेकिन क्या सिर्फ हौसला ही काफी होता है? क्या बिना पैसे, बिना सहारे और बिना पहचान के कोई लड़की अपनी तकदीर बदल सकती है? जानेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो महारानी पर संघर्ष की कहानी।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानी ओनली ऑन रेडियो महारानी। और डियर लिसनर्स, कभी कभी जिंदगी हमें दूसरी बार मौका जरूर देती है, लेकिन उस मौके को पहचानना और उसे अपनी ताकत बना लेना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। अस्पताल के उस बिस्तर पर जहाँ कुछ दिन पहले एक लड़की ने जिंदगी से हार मान ली थी, अब वही लड़की एक नया सपना देख रही थी। एक सपना अपने पैरों पर खड़े होने का, लेकिन सपना देखना बहुत आसान था, उसे सच करना नहीं। घर में पैसे नहीं थे, कोई बड़ा सहारा नहीं था, समाज का भरोसा नहीं था, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी लड़की जिस पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था, जिसे लोग पहले ही नाकाम मान चुके थे। कुछ समय बाद उसने एक बड़ा फैसला लिया, वो अपना गांव छोड़कर मुंबई आ गई। मुंबई एक ऐसा शहर जहां हर दिन लाखों लोग अपने सपनों के साथ आते हैं, लेकिन हर सपना पूरा नहीं होता। शुरुआत में उन्हें एक छोटी सी गारमेंट फैक्ट्री में काम मिला, घंटों सिलाई की, कम वेतन पर काम किया, लंबी मेहनत की, लेकिन इस बार उन्होंने किसी से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था मेहनत से थकना बेहतर है, लेकिन हालात से हारना नहीं। और कुछ समय बाद सरकारी योजना के तहत उन्हें छोटा सा लोन मिला, उस लोन से उन्होंने एक सिलाई मशीन खरीदी। यही सिलाई मशीन उनकी नई जिंदगी की पहली पूंजी बनी। धीरे धीरे उन्होंने घर से सिलाई का काम शुरू किया, फिर फर्नीचर का छोटा व्यापार किया, फिर रियल एस्टेट में कदम रखा, और हर बार जो कमाया उसे खर्च नहीं किया बल्कि अगले काम में लगाया। और यहीं से शुरू हुई एक साधारण महिला की असाधारण कहानी। लेकिन जिंदगी उनकी अभी और भी बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। सालों बाद एक कंपनी थी कमानी ट्यूब्स, कभी भारत की बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी में गिनी जाती थी, लेकिन अब कर्ज में डूब चुकी थी। फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, मजदूर बेरोजगार हो गए थे, और सबका एक ही मानना था कि अब ये कंपनी कभी नहीं बच सकती। और दूसरी तरफ ये एक ऐसी महिला थी जिन्होंने फैसला किया कि मैं कोशिश करूंगी और इस कंपनी को बचाऊंगी। लोग बहुत ज्यादा हंसे, कुछ ने कहा कि जो अपनी जिंदगी नहीं संभाल पाई वो इतनी बड़ी कंपनी क्या संभालेगी। लेकिन इन्होंने अपनी बातों से किसी को जवाब नहीं दिया, इन्होंने जवाब दिया अपने काम से। कंपनी के कागज को समझा, बैंक से बातें की, कानूनी लड़ाइयां लड़ी, मजदूरों का भरोसा जीता, और धीरे धीरे इस बंद पड़ी कंपनी में फिर से मशीनों की आवाज गूंजने लगी। जिस कंपनी को लोग खत्म मान चुके थे वो दोबारा चलने लगी, और हजारों लोगों की नौकरियां बच गईं। और उसी दिन दुनिया ने पहली बार इस महिला का नाम बहुत ही सीरियसली अपने दिल से लिया। वो महिला थी कल्पना सरोज। तो आगे क्या हुआ स्टोरी में हम जानेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए रेडियो महारानी पर और सुनते रहिए संघर्ष की कहानी।

पे चलते समय सबसे पहले सुरक्षा के बारे में सोचें। आपका कहीं जल्दी पहुंचने से ज्यादा जरूरी है आपका घर सही सलामत पहुंचना। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट मोनिका और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर संघर्ष की कहानी। और संघर्ष की कहानी में आज कहानी चल रही है कल्पना सरोज जी की। वो कहते हैं ना, जब आप बहुत सारी चीजें अनप्रेडिक्टेबल चीजें करते जाओ और एक ऐसी चीज जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए, दूसरों के लिए एक मोटिवेशन एक इंस्पिरेशन बन जाए, तो उसे सराहना मिलनी ही चाहिए। और कल्पना सरोज जी की इसी असाधारण यात्रा और समाज के योगदान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2013 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। आज की कहानी यहीं पर खत्म जरूर हो रही है, लेकिन इनकी कहानी से मिलने वाली सीख शायद आपकी जिंदगी में आज से शुरू हो जाए। एक ऐसी लड़की जिसका बचपन छिन गया, जिसकी शादी सिर्फ 12 साल की उम्र में कर दी गई, जिसने घरेलू हिंसा सहा, समाज के ताने सुने, अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की, अगर वही लड़की एक दिन करोड़ों की कंपनी संभाल सकती है तो क्या हमारी मुश्किलें इतनी बड़ी हैं कि हम अपने सपनों से हार मान लें? शायद नहीं, क्योंकि जिंदगी कभी ये तय नहीं करती कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है, बल्कि जिंदगी सिर्फ ये देखती है कि आपने हार मानने के बाद दोबारा उठने की हिम्मत की है या नहीं। और डियर लिसनर्स, लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पहचान नहीं है, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन कल्पना सरोज जी की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसका बैंक बैलेंस नहीं बल्कि उसका हौसला होता है। याद रखिए, अगर परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई है, बल्कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कहानी की शुरुआत अभी और यहीं से हुई है। तो अपने दिल को भी मजबूत बनाइए, खुद पर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और साथ ही साथ सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। और आपके पास भी अगर कुछ ऐसी कहानियां हैं जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं या लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर 9654896896 पर शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ भेज सकते हैं अपना प्यारा सा मैसेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, तब तक टाटा, टेक केयर।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: कहते हैं ना, दिल सिर्फ प्यार करने के लिए नहीं, जिंदगी जीने के लिए भी हेल्दी होना चाहिए। इसी के साथ वेलकम टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जुंशी आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ हम एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर हेल्थ और न्यूट्रिशन से जुड़ी जरूरी बातें आप तक लेकर आते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर घर और हर फैमिली से जुड़ा हुआ है, यानी मेंस हार्ट हेल्थ। और अगर बात की जाए हार्ट अटैक और हार्ट डिसीजेस, तो ये सिर्फ बड़े बुजुर्गों तक लिमिटेड नहीं रहा है, बल्कि यंग एज में भी इसके काफी केसेस बढ़ रहे हैं। तो आज जानेंगे आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए लाइफस्टाइल और डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए, और साथ ही क्या वो वार्निंग साइन है जिन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अरविंद फ्रॉम सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। तो डॉक्टर, आज हम बात कर रहे हैं पोषण की पाठशाला में मेंस हार्ट हेल्थ की। और अगर बात की जाए हार्ट हेल्थ की, तो राइजिंग हार्ट अटैक डिसीज इन यंग मैन आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। सर डॉक्टर, अगर हार्ट अटैक की बात की जाए, तो पहले हार्ट अटैक को सिर्फ बढ़ती उम्र की प्रॉब्लम माना जाता था, लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो 30 से 40 साल की एज में भी हार्ट अटैक के केसेस काफी बढ़ गए हैं। सर डॉक्टर, अब ये बताइए कि हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, और साथ ही जितने भी यंग मैन आज हमें सुन रहे हैं उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए।
1: थैंक यू अंजलि, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो पोषण की पाठशाला। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड टू लिसन दीज क्वेश्चंस जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, स्पेशली हार्ट हेल्थ से रिलेटेड, जो यंगस्टर्स में आजकल एक फियर डेवलप हो गया है। मानिए कि यंग पेशेंट्स हम लोग आज से 10 साल पहले तक इतने हार्ट के नहीं देखते थे जितने आज की डेट में देखना शुरू कर रहे हैं। न्यूज़ भी आती है और हम लोग अपनी कैथ लैब में इमरजेंसीज में ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जो कि 30 साल के, 25 साल के तक, 18 साल के तक पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्ट अटैक आया है। इस चेंज का क्या कारण है? सबसे ज़्यादा कॉमन कारण जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में, अपने 10 साल की प्रैक्टिस में रियलाइज़ किया है, वो ये है कि यंगस्टर्स में स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। मतलब आज से 20 साल पहले इतने यंग एज में स्मोकर्स नहीं देखे जाते थे, आजकल की डेट में कॉलेज से लेके, इनफैक्ट कभी कभी मैं स्कूल के बच्चों को भी स्मोकिंग करते हुए देखता हूँ। दिस वन सिंगल थिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ हार्ट अटैक इन यंग मेल्स, स्पेशली फीमेल्स भी खैर स्मोकिंग करती हैं, बट फिर भी कम कॉमन है, बट मेल्स की स्मोकिंग जो हार्ट अटैक करा रही है, और ये यंग एज के हार्ट अटैक्स हैं, ये बहुत ही चिंताजनक चीज़ है। तो मेरा सभी लोगों से एक निवेदन है कि जो भी यंगस्टर्स हैं, प्लीज़ अवॉइड स्मोकिंग बिकॉज इट कैन किल यू एनी टाइम। इसके अलावा भी बहुत कारण रहते हैं जिसके कारण हार्ट अटैक, जिसे कहेंगे सडन कार्डियक डेथ हो सकती है, जिसमें कि कार्डियोमायोपैथीज, चैनलोपैथीज, हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां जो कि फैमिलियल चल रही होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, बट ये फिर भी मैं बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं मानता हूँ।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर, यानी बढ़ती लाइफस्टाइल और हमारी रोज की आदतें हार्ट हेल्थ पर सीधा असर डाल रही है। इसी से जुड़ा एक और कॉमन मिथ है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक म्यूजिक ब्रेक। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अरविंद से मेंस हार्ट हेल्थ की। सो डॉक्टर, अगर हार्ट डिसीजेस की मैं बात करूँ तो बहुत सारे मिथ एंड रियलिटी है हमारे आसपास, इसी के ऊपर आज बात करने वाले हैं। डॉक्टर, अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हम यंग हैं और फिट दिखते हैं तो हार्ट डिसीज का कोई रिस्क ही नहीं होता। तो डॉक्टर, क्या ये सच में सही है? और साथ ही यंग एज में हार्ट को हेल्दी रखने के लिए किस तरह की हेल्दी हैबिट जरूर अपने आनी चाहिए?
1: देखिए, ये बहुत बड़ा भ्रम है कि जैसा इंसान दिख रहा है बाहर से, अंदर भी क्या उसका शरीर स्वस्थ है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि एक अच्छा तंदुरुस्त शरीर जो है खाली स्किन से ही पता चल जाता है, स्किन के ग्लो से पता चल जाता है कि हेल्दी है। बट शरीर अंदर कई बार ऐसी बीमारियां पनप रही होती हैं जिनको हम लोग कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, कुछ पता नहीं चलता है, तो हमें लगता है हम हेल्दी हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट कारण है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे कि हम साइलेंट किलर कहते हैं। हमारी स्टडीज में देखा गया है कि 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन व्हिच इज अनकंट्रोल्ड, मतलब कि हर चौथा बंदा जो है उसको बीपी की बीमारी है और उसका कंट्रोल अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये बीपी अगर लंबे समय तक रहता है तो पहले 5 साल 6 साल कुछ नहीं कहता है, पर धीरे धीरे अंदर से शरीर को खोखला करता जाता है। ऐसी और भी कई तरह की बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ऐसी बीमारियां हैं जिनको अगर हम स्क्रीन नहीं करें, जिनको हम चेकअप नहीं कराएं रेगुलर, तो धीरे धीरे बॉडी को खाएंगी। इनिशियली कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, पर बाद में जब तक सिम्टम्स आएंगे तब तक काफी देर हो चुकी होगी।
0: तो डॉक्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आज आपने हमें समझाई है, सिर्फ फिट दिखना ही हेल्दी हार्ट की गारंटी नहीं होती है। अब बात करते हैं उन वार्निंग साइन की जिन्हें टाइम रहते पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस पर भी बात करेंगे वापस आकर। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: शानदार सुरक्षा के साथ एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अरविंद से मेंस हार्ट हेल्थ को लेकर। तो डॉक्टर आप बात करेंगे वार्निंग साइन वी शुड नेवर इग्नोर। तो डॉक्टर अगर बीमारियों की बात की जाए ना, तो हमारी बॉडी कई बार हमें बहुत पहले से सिग्नल देना शुरू कर देती है, लेकिन हम उन सभी सिग्नल्स को नॉर्मल समझकर इग्नोर करने लगते हैं। ये बताइए हार्ट अटैक के वार्निंग साइन क्या होते हैं? साथ ही अगर किसी इंसान को कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं अपनी बॉडी में, तो सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए?
1: देखिए, हार्ट अटैक का सिम्टम मैं अगर क्लासिकल सिम्टम बोलूं तो एक छाती पे दबाव, उसके साथ बाजू में भी ये दबाव जाना और गले में भी इसी दबाव का महसूस करना, ये एक क्लासिकल सिम्टम्स है। ये एसोसिएटेड विद स्वेटिंग, मतलब खूब सारा पसीना आना, घबराहट होना, इम्पेंडिंग डूम जिसे कहते हैं, मतलब कि ऐसा लगता है कि मेरी मौत आ गई, ये वाली फीलिंग क्लासिकल सिम्टम्स कॉन्स्टिट्यूट करती है हार्ट अटैक के। पर 1/3 ऑफ द पेशेंट्स, मतलब एक तिहाई पेशेंट्स इन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट नहीं करते हैं। सिम्टम्स बहुत ही वेग होते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, पेट में जलन हो रही है, किसी को चक्कर आ रहे होते हैं, कोई बेहोश हो जाता है, किसी की धड़कन बढ़ रही होती है। तो ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ चेस्ट पेन नहीं होते हैं हार्ट अटैक में। तो मेरे विचार में ऐसा कोई भी सिम्टम जो अनयूजुअल लगे, जो उनको पहली बार महसूस हो, जिससे उनको की डर लगे, घबराहट हो, तो जरूर नजदीकी अस्पताल में एक बार ECG कराना चाहिए। बिकॉज अब जैसा कि मैंने पहले भी समझाया कि उम्र नहीं रही इस बीमारी की, अब मानिए कि पोस्ट कोविड कह लीजिए, वैक्सीन का असर कह लीजिए, या स्मोकिंग का असर कह लीजिए, या हमारे लाइफस्टाइल का चेंजेस कह लीजिए, पर इसकी कोई उम्र नहीं रही। बट हाँ, 25-30 साल के बाद ये बीमारी किसी को भी हो सकती, तो ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं तो जरूर नजदीकी अस्पताल में इमरजेंसी जाके ECG कराएं।
0: बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आपने, यानी इमरजेंसी के वक्त सही इन्फॉर्मेशन और तुरंत एक्शन किसी की भी जान बचा सकता है, लेकिन प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेहतर होता है, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। तो फिर इसी बात पर लाइफस्टाइल का रोल और कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, इसको भी समझेंगे लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: पर अभी बाकी है जून का जुनून। इस आग उगलती गर्मी से अगर खुद को है बचाना तो पानी को अमृत समझ पी जाना।
1: साथ आसमां जी रे, अब साथ समंदर पी रे, चल साथ सुनो में कर दे ये ऐलान।
2: सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का रखो ख्याल। साइबर क्राइम में हैकिंग, फिशिंग और साइबर स्टॉकिंग से हो जाओ सावधान। डू योर पार्ट, बी साइबर स्मार्ट।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आर्चिंशली आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं मेंस हार्ट हेल्थ को लेकर। सो डॉक्टर, अब बात करते हैं लाइफस्टाइल एंड हार्ट हेल्थ की, बिकॉज कहा जाता है लाइफस्टाइल एंड हार्ट हेल्थ का बहुत बड़ा कनेक्शन है। आज की बिजी लाइफ में स्ट्रेस, लेट नाइट रूटीन, जंक फूड और एक्सरसाइज की कमी, ये सब हमारा खराब लाइफस्टाइल का पार्ट है। ऐसे में ये सब हमारे हार्ट को किस तरह इफेक्ट करता है, और साथ ही अगर किसी को सिर्फ एक लाइफस्टाइल चेंज से शुरुआत करनी हो तो वो किन चीजों से शुरुआत कर सकता है?
1: थैंक यू अंजलि, आपने बहुत ही रिलेवेंट सवाल पूछा है। आजकल की जनरेशन के साथ जो कॉरपोरेट लाइफ के साथ जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है वो इज रियली डेंजरस एंड हार्मफुल टू आवर हार्ट। एंड मैं मानता हूँ कि लाइफस्टाइल में तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो है गुड फूड विच मीन्स बैलेंस्ड फूड, गुड स्लीप एंड गुड एक्सरसाइज। ये तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन के बिना हम लोगों की लाइफ कभी भी हेल्दी नहीं हो पाएगी। सो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा लाइफस्टाइल में स्लीप से, क्योंकि आजकल एक तो नाइट शिफ्ट्स हैं कॉर्पोरेट में, लेट वर्किंग आवर्स हैं, इसके बाद लोगों के नेटफ्लिक्स की एडिक्शन, चाहे कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की एडिक्शन, सोशल मीडिया की एडिक्शन, इसके कारण बहुत ज़्यादा ऑल्ट्रेशन इन स्लीप साइकिल हो रही है। लोग कभी सैटरडेज को 2 बजे सो रहे हैं और कभी अपने ऑफिस आवर्स में सो रहे हैं। जो स्टडीज़ में देखा गया है, अगर आप अपनी स्लीप के ड्यूरेशन को 7 आवर्स to 9 आवर्स के बीच में नहीं रखते हैं, मतलब 7 आवर्स से कम सोते हैं, 9 आवर्स से ज़्यादा सोते हैं, दोनों ही केसेस में हार्ट रिस्क बढ़ता है। दूसरा, नॉट ओनली द नंबर ऑफ आवर्स यू स्लीप, ऑल्सो द पैटर्न इन विच यू स्लीप मैटर्स। मतलब अगर मान लीजिए आप रात में 7 घंटे 12 से 7 सोते हैं, तो अगर उसमें आप ऑल्टर करके उसको 2 से 9 भी कर देते हैं तो भी रिस्क बढ़ता है। तो मतलब अगर 2 घंटे से ज्यादा ऑल्टर होता है स्लीप का टाइमिंग ड्यूरेशन जब आप सो रहे हैं उस टाइम, तो वो भी रिस्क बढ़ाता है। तो एक रेगुलर पैटर्न ऑफ स्लीप, हाँ वेरिएशन ऑफ 1/2 आवर 1 आवर चलता है, पर एक रेगुलर पैटर्न और एडिक्वेट स्लीप दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग स्लीप हाइजीन के नाम से कहते हैं। दूसरा, डाइट। देखिए कॉर्पोरेट में या कहीं भी आजकल ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इतनी जॉब्स ट्रैवलिंग वाली हैं, बाहर खाना पड़ता है, बट यू हैव टू पिक वाइजली, बिकॉज बाहर का तला हुआ खाना और लॉट ऑफ कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट रिच, लॉट ऑफ शुगर रिच ड्रिंक्स या फूड, ये सब इतनी कॉमनली अवेलेबल है आजकल बाहर में, और हेल्दी ऑप्शंस अभी भी हमारे कंट्री में बहुत कम है, और इफ़ यू वांट तो बहुत ही महंगे मिलते हैं, मुश्किल से मिलते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू कहीं भी उनको ऑफिस जाना है तो ऑफिस के लंच अगर तो हेल्दी बनाते हैं तो वेल एंड गुड, बट नहीं मिलता है अगर तो डेफिनेटली कैरी फ्रॉम योर होम। लर्न टू कुक हेल्दी फूड, लर्न टू ऑलवेज रीड द लेबल्स ऑफ द ड्रिंक्स विच यू कंज्यूम, उसके पीछे देखे कितनी कैलरीज है, कितनी शुगर है। तो ये सब चीज़ें आपको अवेयर करेंगी और आप फिर उन ड्रिंक्स को या उन फूड को अवॉइड कर पाएंगे। तो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हेल्दी डाइट। लाइफ के लिए हेल्दी एक्सरसाइज, एडिक्वेट एक्सरसाइज, विच आई वुड कॉल एज 30 मिनट्स ऑफ मिनिमम गुड लेवल एक्सरसाइज, नाउ नॉट 30 मिनट्स ऑफ टहलना। 30 मिनट टहलने से दोस्त बनेंगे, हार्ट हेल्थ नहीं अच्छी होगी, पर अगर आपको अच्छी हार्ट के लिए एक्सरसाइज करनी है तो 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग इज बेयर मिनिमम। इससे स्लीप भी अच्छी आएगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी घटेंगे, बॉडी वेट भी मेंटेन होगा, एंड यू विल फील फिट एंड एनर्जेटिक ऑल्सो एंड पॉजिटिव बिकॉज ऑफ गुड हॉर्मोन्स।
0: डॉक्टर से कहा जाता है छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आ सकते हैं, और जब बात लाइफस्टाइल की हो तो न्यूट्रिशन इसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है, और इसी बारे में बात करेंगे लेकिन वापस आकर। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ अर्चेंचली आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं मेंस हार्ट हेल्थ को लेकर। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद। तो डॉक्टर, अगर मैं बात करूँ डाइट फॉर अ हेल्दी हार्ट तो वो क्या होनी चाहिए? यह और अक्सर पोषण की पाठशाला में हम न्यूट्रिशन की बात जरूर करते हैं, क्योंकि सही पोषण ही अच्छी सेहत की बुनियाद होती है। तो डॉक्टर, ये बताइए हार्ट को हेल्दी रखने के लिए डेली डाइट में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जरूर शामिल होनी चाहिए, और साथ ही किन फूड्स को लिमिट या अवॉइड करना चाहिए?
1: डाइट में आजकल बहुत कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, कीटो डाइट, लो कार्ब डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं, एक साइंस है उसके पीछे। पर मेरे सबसे मूल चीज समझने वाली ये है कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है खाने की, वो समझना सबसे जरूरी है। आज की डेट में प्लेट में जितना भी पड़ा है उसको खा लेना ठीक नहीं है, अपनी डाइट काउंट करनी जरूरी है। तो आमतौर पे एक फीमेल को 2000 किलो कैलोरीज चाहिए और एक मेल को 2500। सो इस कैलोरी काउंट से हम लोग अगर चलें और इसको डिवाइड करें, कि ऐसा नहीं कि ये जो कैलोरीज हैं ये सारी की सारी हम लोग कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर लें, तो अराउंड से 50% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 30% प्रोटीन होना चाहिए, 20% फैट होना चाहिए। इसमें भी जो फैट 20% है उसमें 6% या 7% ही अराउंड घी वाला, जो सैचुरेटेड फैट जिसे कहते हैं, घी हो सकता है। तो ये एक बैलेंस डाइट कंस्टिट्यूट करती है। और इसके अलावा हमें अगर ज़्यादा अपने डाइट को, मतलब पेट को भरने लायक डाइट बनाना है, तो उसमें हमें ऐड करना चाहिए रफेज, जैसे सलाद हो गया और इसी तरह की प्लांट बेस्ड चीज़ें, जो कि हम लोगों का पेट भरें पर ज़्यादा कैलोरीज ना दें। ये तो हुई बात कैलोरीज की। और अगर हम बात करें शुगर की, तो शुगर जो है दिन में 2 स्पून या 3 स्पून से ज्यादा हम लोगों को नहीं लेनी चाहिए। तो इट्स नॉट गुड फॉर योर अलॉट ऑफ थिंग्स। डायबिटीज में रिस्क बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वेट बढ़ता है और हार्ट का रिस्क भी बढ़ता है। तो शुगर्स को इज द न्यू पॉइजन कहा जाता है आजकल। तो जो वाइट थिंग्स हैं, सॉल्ट, वाइट शुगर, वाइट एंड मिल्क ऑल्सो इज नॉट अ ग्रेट थिंग टू ज्यादा इन लार्ज क्वांटिटी। तो इन तीन चीजों से बचें। और बाकी अगर मिल्क लेना है तो आप स्किम्ड मिल्क लें, क्रीम पार्ट है, फैट निकला हो तो उसको आप ले सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्रेफर सी फूड मोर देन योर जो आप मटन या वो खाते हैं। जो पोल्ट्री में भी है तो उसमें एग्स खाना इज गुड, बट उसका जो बीच का योक है उसको निकाल के खाएं, दैट यू कैन कंज्यूम एंड दैट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की है। सही डाइट ना सिर्फ हार्ट को हेल्दी रखता है बल्कि कई सीरियस डिसीजेस का रिस्क भी कम कर सकता है। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे वापस आकर। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ। जी।

0: वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं मेंस हार्ट हेल्थ के ऊपर। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद। डॉक्टर, अब बात करते हैं साइलेंट किलर्स एंड रेगुलर चेकअप्स की। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल को साइलेंट किलर कहा जाता है, तो ऐसे में इनका हार्ट डिजीज से क्या कनेक्शन है और साथ ही किस एज से रेगुलर हार्ट चेकअप्स कराना शुरू कर देना चाहिए?
1: हाँ, ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है अंजलि। आई थिंक ये मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को, हमारे जो लोग हैं उनको नहीं पता ये बात कि 20 साल की उम्र से हर साल इंसान को अपना बीपी नापना चाहिए। साल में एक बार ही सही, पर बीपी नापना जरूरी है। उसमें अगर रीडिंग ज्यादा आए तो बार बार भी नापना चाहिए, पर अगर वो नॉर्मल है तो अगले साल नापना चाहिए। तो बीपी को मेजर हमेशा 20 साल की उम्र से हर साल करना चाहिए नियमित तौर पे, क्योंकि बीपी ज्यादा होने के कोई सिम्टम्स नहीं आते। कोई लोग कहते हैं कि बीपी से सरदर्द हो गया, पर यूजुअली बीपी से सरदर्द तभी होता है जब बीपी 200 के पार चले जाता है, और तब तक बहुत देर भी हो चुकी होती है। तो बीपी को जरूर नापें हर साल। हर एक यंग आदमी जो कि हेल्दी भी महसूस करता है, जिसको कोई तकलीफ भी नहीं है, उसके बावजूद भी उसे हर साल बीपी नापना चाहिए। दूसरा, आपने बोला डायबिटीज। आमतौर पर यूजुअली रिकमेंडेशन कहती हैं कि 30 से 35 साल के बाद हर साल शुगर नापना है, पर मैं इसमें डिफर करता हूँ, क्योंकि मुझको लगता है कि इंडिया जो है डायबिटीज कैपिटल बन गई है वर्ल्ड की। मतलब सबसे ज्यादा डायबिटीज की बीमारी इंडिया में है आज की डेट में। तो ऐसे में हम लोगों को अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने प्रिवेंशन के लिए 25 साल से 30 साल के बीच में हर साल शुगर नापना शुरू करना चाहिए, और अगर शुगर ठीक आ रहा है तो साल साल पे नापें। हाँ, कोलेस्ट्रॉल को 20 साल से नापें, एक बार 20 साल पे नाप लें। अगर ठीक आता है तो हर 4-4 साल पे भी नाप सकते हैं, पर बीपी और शुगर हर साल पे नापें 20-25 साल की उम्र से।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर, रेगुलर चेकअप्स और टाइम पर डायग्नोसिस बहुत सी प्रॉब्लम से हमें बचा सकता है। सो माय डियर लिसनर्स, आज ही अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए और फटाफट से आज ही अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए, एक चेकअप कराइए और अपना ध्यान रखिए। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: दिया?
1: नहीं
0: कप्तान, क्या तुझे यकीन नहीं है?
1: हाँ पार्टनर, यकीन है, पूरा यकीन है। अगर मैं कूद जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा।
2: साले डर गया, ट्यूब लाइट
0: साले, तू कूद गया।
2: अब मैं पागल नहीं हूँ तेरी तरह, मर जाएगा किसी दिन, लाश भी नहीं मिलेगी।
0: क्यों?
2: तो क्या हुआ? अबे आत्मा भटकती रहेगी तेरी, शांति नहीं मिलेगी।
0: अगर ये लाश नहीं मिली ना तो जला देना मेरी चीजें, मेरे कपड़े, मेरे जूते और उसकी राख नदी में बिखेर देना, मिल जाएगी मेरी आत्मा को शांति। अब तू भी

0: शानदार ब्रेक के साथ एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजली आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं मेंस हार्ट हेल्थ के ऊपर। डॉक्टर, आज हमने पोषण की पाठशाला में जाना किस तरह से मेंस को अपने हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही हेल्दी हार्ट की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा होती है। तो आज आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, साथ ही आज से ही अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जिनका डेली ध्यान रखना चाहिए और साथ ही अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए।
1: 5 हेल्दी हैबिट्स। द फर्स्ट वन डेफिनेटली ऑन माय लिस्ट इज अ गुड 5-7 आवर्स ऑफ स्लीप, एंड देन सेकंड गुड हैबिट इज गुड हाफ एन आवर ऑफ एक्सरसाइज 5 डेज अ वीक एट लीस्ट। थर्ड, गुड ईटिंग हैबिट्स व्हिच कंस्टिट्यूट्स ऑफ बैलेंस्ड गुड प्रोटीन डाइट, एंड फोर्थ, गुड मेंटल हेल्थ which includes de-stressing yourself with meditation, yoga, and fifth one, last but not the least, stop smoking. Thank you very much, Anjali, and it was great time. I hope I was useful to you and everybody listening.
0: जी डॉक्टर, तो दोस्तों आज की बातचीत से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हेल्दी हार्ट सिर्फ मेडिसिन से नहीं बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल और सही न्यूट्रिशन से भी बनता है। यानी छोटे छोटे चेंजेस जैसे बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस को मैनेज करना और टाइम पर हेल्थ चेकअप करवाना हमारे दिल को लंबे टाइम तक हेल्दी रखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। आज हमें रेडियो महारानी के पोषण की पाठशाला में ज्वाइन किया डॉक्टर अरविंद, अ कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद। फिलहाल अब वक्त हो गया है मेरा यहाँ से जाने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए एक्सपर्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पर ये ट्रैक। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 FM।
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: एवरीवन, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम और मैं हूं आरजे पलक। स्वागत है आप सभी का खास मुलाकात में। आज के गेस्ट हैं सोशल मीडिया की दुनिया के तीन एंटरटेनिंग क्रिएटर्स, दीपू दिल्ली, साहिल ओबे और नीरज बराल। इनकी वीडियोस आपने जरूर देखी होंगी, जहां इनका पापा बेटा कंसेप्ट और कॉमेडी टाइमिंग ऑडियंस को खूब एंटरटेन करती हैं। आप सभी का रेडियो महारानी में स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच।
0: अच्छा दीपू, सबसे पहले आप ये बताओ कि ये पापा बेटा वाला कंसेप्ट आया कैसे और किसने सबसे पहले बोला था कि तू पापा बनेगा और तू बेटा?
1: जब हम शुरुआती दिनों में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्या क्रिएट कर रहे थे
0: जी,
1: तो हमने बहुत सारे कैरेक्टर क्रिएट किए जिसमें पापा वाला भी था।
0: ओके।
1: और ऐसा नहीं है कि जोर नहीं था कि मैं करूंगा ये करेगा या मैं करूंगा या साहिल करेगा। इसने भी डैड का कैरेक्टर किया, मैंने भी डैड का कैरेक्टर किया, इवन नीरज ने भी किया है, राइट
0: जी,
1: नीरज ने भी किया है। बट वो स्लोली स्लोली हमें पता चला कि भाई इस कैरेक्टर में हमें क्या एलिमेंट्स और डालने हैं।
0: ओके।
1: तो हमने उसमें वो एलिमेंट्स डाले, थोड़ा और तड़का लगा और उसके बाद वो कैरेक्टर क्रिएट हुआ
0: जी।
1: अब वो इतना क्रिएट हो गया कि अब लोगों को इतना पसंद आ रहा है, वो वही कैरेक्टर मांगते हैं कि भाई यही कंटेंट डालो।
0: बिल्कुल।
1: तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि भाई ये भी करना चाह रहा है, मैं भी करना चाह रहा हूँ, और ऐसी कोई बहस नहीं थी कि मैं करूंगा। सबका एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर, इवन इसका भी कैरेक्टर था एक।
0: ओके।
1: बट वो अब ड्रॉप आउट कर दिया, वो कर नहीं रहा है वो उस कैरेक्टर में काम
0: जी।
1: तो डैड वाले कैरेक्टर का ऐसा ही है कि काफी सारे कैरेक्टर लिखे ऐसे और जो धीरे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है, पर डैड वाला कैरेक्टर को ज्यादा ही कल्ट हो गया। तो सबने किया है, बट ऐसा नहीं है कि मेरे में वो ज्यादा सूट किया, तो
0: okay.
1: हो सकता है कि इसलिए रेगुलरली अब मैं
2: लोगों
1: ही कर
2: रहा हूं। पसंद वही आया।
0: ओके। और जब पहली बार ये कैरेक्टर्स प्ले किए आप सभी ने, तब लगा था कि यही आपकी पहचान बन जाएगा या ये बस एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपने स्टार्ट करा था?
1: नहीं नहीं, जैसे पहले बताया ना आपको कि हमने कैरेक्टर बहुत सारे प्ले किए। अब ये वाला जो कैरेक्टर है वो फट गया, राइट, जो पिछले भी काफी सारे कैरेक्टर है, जैसे कि सतपाल का कैरेक्टर हो गया और एक मेरा और कैरेक्टर है मवाली का
0: जी,
1: उससे पिछला कैरेक्टर है वो भी डेपी का जो फॉरेन रिटर्न है।
0: ओके।
1: उन कैरेक्टरों में हमने काम नहीं किया ज्यादा, तो इसलिए अभी वो इवॉल्व नहीं हो पाया, बट उनपे भी काम करना बाकी है। और जो ये वाला कैरेक्टर है, इससे पहचान, यही तो दिक्कत है कि हर कोई डैड बुला रहा है आजकल, तो काफी सारे कैरेक्टर है, बट जो ज्यादा पसंद कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो लोग जिस कैरेक्टर को पसंद कर रहे हैं वो डैड वाला कैरेक्टर है
0: जी।
1: तो रीजन बीइंग कि ना लोग कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर से ना कनेक्ट कर जाते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बिगनिंग रही है और अभी बहुत सी फन स्टोरीज बाकी हैं। चलिए लेते हैं एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं इसी कॉन्वर्सेशन के साथ। डोंट गो एनीवेयर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन हम?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे सुनो
0: बाय।
1: मीठी लस्सी तो पी लो।
2: मेहनत करने वालों का कभी ईमान नहीं बिकता।
3: बाबा, बाबा।
2: अरे मेहनत करने वालों का कभी ईमान नहीं बिकता।
4: और आगे
2: याद रखिए हेलमेट पहनने वालों का कभी चलान नहीं कटता।
5: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं खास मुलाकात और मैं हूं आरजे पलक। हमारे साथ स्टूडियो में दीपू दिल्ली, साहिल उबे और नीरज बलाल मौजूद हैं। लेट्स कंटिन्यू द कन्वर्सेशन। साहिल, रियल लाइफ में आप तीनों दोस्त हो लेकिन स्क्रीन पर फैमिली लगते हो, इतनी नेचुरल केमिस्ट्री का सीक्रेट क्या है?
1: सीक्रेट यही है कि हम शुरुआती दौर से ही हम साथ में
0: हैं। जी,
1: क्योंकि हम एक तरीके से नेबर्स भी है और हम रिश्तेदार में भी पड़ जाते हैं, तो हमारा जो जैमिंग है वो पहले से ही बहुत अच्छा है। तो इसलिए ऑन स्क्रीन लोगों को भी यही दिख रहा है कि हाँ, इनका अच्छा बढ़िया फैमिली की तरह कंटेंट है और लोगों को पसंद आ रहा है ये चीज।
2: बेसिकली हम एक दूसरे को ना बचपन से जानते हैं।
0: ओके
2: तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती जेल होने में ना। हम ना खुल के बात कर लेते हैं।
0: हाँ जी,
2: कि आप किसी नए क्रिएटर से मिलते हो ना, आप खुल के ना मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख नहीं पाओगे किसी भी नए लोगों के साथ। तो इस वजह से ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन हमें प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमने बचपन से एक दूसरे को देखा है और हमारे सारी फैमिली एक दूसरे को जानती है और एक ही एरिया में रहे, तो ऐसी कोई मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो तभी वो जेल ऑन स्क्रीन भी दिखेगा आपको और ऑफ स्क्रीन भी दिखेगा आपको।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। दीपू, शूट के टाइम सबसे ज्यादा रीटेक कौन करवाता है और सबसे ज्यादा मस्तीखोर कौन है?
2: मैं सच बताऊं तो रीटेक्स तो अभी उतने नहीं होते, बट रीटेक्स होते हैं। सबसे ज्यादा आज भी नीरज करता है।

0: कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ इसलिए गधा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: सोचा था कॉर्पोरेट ज्वाइन करके आराम की नौकरी होगी, लेकिन दिन में 10 बार तो मीटिंग हो जाती है। मैनेजर को भी काम लंच के 10 मिनट पहले याद आता है। लीव मांगने पर वाई इंटरव्यू शुरू हो जाता है। काम मैं करता हूँ, क्रेडिट मैनेजर ले जाता है, और ये बात जब मैं घर वालों को बता दूँ तो वो मुझे गधा बोल देते हैं।
2: ठीक कह रहे तुरेंद्र, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कितना भी कर ले, रहेगा तो गधा ही।
3: वाली बात और कहानियों में है जिंदगी का एहसास। हमें जो भी सुने यही बोले, ये हुई ना बात। हम है आपका अपना रेडियो, रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ है।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है खास मुलाकात ओनली ऑन रेडियो महारानी। दीपू, आजकल क्रिएटर्स को OTT प्रीमियर्स और बड़े एंटरटेनमेंट इवेंट का हिस्सा बनने का मौका मिलता है, और अगर आपको एक इनविटेशन चूज करना हो तो वो किस इवेंट या किस सेलिब्रिटी के साथ होगा?
1: ओमपुरी साहब हो गए, मतलब बहुत ऐसे कलाकार है ना जो एक्टिंग की दुनिया के महारथी है।
0: जी जी जी।
1: उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मतलब है कि आपने कुछ मतलब कर दिया बढ़िया।
0: ओके।
1: क्योंकि वो ना ऐसे आर्टिस्ट है जो बहुत ही सरल से सीन को इतना उम्दा, इतना बेहतरीन बना देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: देखने में मजा आता है।
0: बिल्कुल। वक्त हो गया है एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है खास मुलाकात।

0: गर्लफ्रेंड हूँ इसलिए कलेशी हूँ। यार निया सुन।
1: हाँ सिया बोल।
0: यार मैंने पूछा कैसे हो, उसने बोला बढ़िया, ये भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, और जब मिलने के लिए बोलो तो कहता है टाइम नहीं है, और दोस्तों के साथ घूमने के लिए टाइम ही टाइम है। जिस लड़की को जानता तक नहीं है उसकी फोटो पे भी लाइक कर देता है, और जब पूछो तो बोलता है बेबी बस फ्रेंड है, और पता है रील्स पे रिप्लाई ना करके रिएक्ट करके छोड़ देता है, और जब मैं कंप्लेंट करूं तो मुझे कलेशी कह देता है।
1: सही कह रही है, सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कलेशी कहते हैं।
2: आज मेरे पास पसीना है, डिहाइड्रेशन है, हीट वेव्स है, तुम्हारे पास क्या है?
3: मेरे पास नींबू पानी है।
4: बात करो।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है खास मुलाकात और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साहिल ओबे, दीपू दिल्ली और नीरज बराल। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आज आप तीनों को अपनी दोस्ती को सिर्फ एक लाइन में डिफाइन करना हो तो वो लाइन क्या होगी?
1: जल।
0: ओके, और वो क्यों?
1: वो इसलिए कि हम जब काम करते हैं ना बहुत शिद्दत के साथ करते हैं और एक दूसरे को समझ के करते हैं। कोई हैवी कैरेक्टर है ना, फॉर एग्जांपल अच्छा कैरेक्टर है
0: जी,
1: हम ये नहीं करते कि भाई वो कैरेक्टर मैं करूंगा या ये कैरेक्टर मैं करना चाहता हूँ या ये कैरेक्टर मैं करना चाहता हूँ, ऐसा हमें रहता ही नहीं हमारे में।
0: ओके,
1: जिसमें जो शूट कर रहा है वो वही करेगा और कोशिश करते जिसके चैनल में चीजें डल रही है उसको लीड ही मिले।
0: ओके,
1: हम ये नहीं चाहते कि भाई आपके चैनल में आप हल्के पड़ो, और ये चीजें ना हम बिहाइंड द कैमरा समझते हैं
0: जी,
1: हम दूसरे क्रिएटर के साथ ये नहीं कर सकते, तो इसलिए साथ में रहे तो मजा आता है। एक दूसरे के साथ काम करने में बहुत कंफर्टेबल भी रहते हैं हम, बहुत मजा भी आता है और बहुत मस्ती भी करते हैं साथ ही साथ,
2: और काम भी इजी हो जाता है। जब एक प्रॉपर टीम होती है तो काम भी काफी इजी हो जाता है।
0: बिल्कुल सही बात है। और हमारे लिसनर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: तो ये मैसेज देखना चाहूंगा कि भाई कंटेंट देखो तो अच्छा कंटेंट देखो, कुछ भी मत देखो। अगर किसी, अगर आप कंटेंट कंज्यूमर हो तो अच्छे कंटेंट को देखो और अच्छे क्रिएटर को फॉलो करो, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे क्रिएटर जो ऊटपटांग चीजें बना रहे हैं। कोशिश करो कि आप लोग भी कंटेंट बनाना शुरू करो, क्योंकि कंटेंट ही फ्यूचर है।
0: बिल्कुल सही बात है।
2: और जो जो मेहनत कर रहा है उसको सपोर्ट करो, मेरा तो ये कहना है।
0: बिल्कुल,
2: मतलब और जनरेशन भी ऐसी चेंज हो गई कि आज की जनरेशन को कंटेंट ही पसंद है।
0: थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ पर आने के लिए।
1: थैंक यू सो मच।
0: मैं हूँ आरजे पलक, आप लेती हूँ आप सभी से इजाजत। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए गेस्ट और एक नई खास मुलाकात के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: रानी तुझे पता है कल पड़ोस वाले भैया का एक्सीडेंट हो गया।
1: अरे एक्सीडेंट पर कैसे हुआ?
0: बस क्या बताऊं, इस तपती धूप में बाइक लेके दोस्त के घर जा रहे थे, ना साथ में वाटर बॉटल और ऊपर से इतनी गर्मी कि उन्हें चक्कर आ गए और बैलेंस बिगड़ गया।
2: इस गर्मी टू व्हीलर चलाते वक्त अपना खास ध्यान रखिए। पीक हीट आवर्स में अननेसेसरी ट्रेवल अवॉइड करिए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए और सेफ राइड करिए, क्योंकि घर पहुंचना जरूरी है।
3: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
5: Dear elders, never click on links from unknown senders to protect yourself from social engineering attacks. कभी अपने passwords, bank details, OTPs and KYCs को मिठाई की तरह ना बांटें. Stop, think and verify.
6: हम आप तक पहुंचाते हैं हर दिल की कहानी, क्योंकि हम हैं रेडियो महारानी। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, इसलिए गधा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: सोचा था कॉर्पोरेट ज्वाइन करके आराम की नौकरी होगी, लेकिन दिन में 10 बार तो मीटिंग हो जाती है। मैनेजर को भी काम लंच के 10 मिनट पहले याद आता है। लीव मांगने पर वाई इंटरव्यू शुरू हो जाता है। काम मैं करता हूँ, क्रेडिट मैनेजर ले जाता है, और ये बात जब मैं घर वालों को बता दूँ तो वो मुझे गधा बोल देते हैं।
2: ठीक कह रहे तुरेंद्र, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कितना भी कर ले, रहेगा तो गधा ही।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ऑनलाइन दुनिया एक डिजिटल मेला है जहाँ हर चमक सोना नहीं होती, और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं खुद। एक दिन मुझे ऑनलाइन दिख गए कोरियन बूट्स सिर्फ 500 रुपए में, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। मैंने सोचा क्या कमाल की डील है, तभी तुरंत ही ऑर्डर कर दिया। और फिर जो हुआ, मेरे घर आए सिर्फ 500 रुपए का चूना। बूट्स तो कभी आए नहीं, बस मेरा दिल बोला अलेक्सा प्ले हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स। इसलिए ओटीपी पासवर्ड बैंक डिटेल्स किसी को मत दीजिएगा, और कोई डील ज्यादा ही परफेक्ट लगे तो समझ जाओ स्कैम का जादू चल रहा है रमेश बाबू। अलर्ट रहिए, सेफ रहिए, वरना ऑनलाइन बाजार आपको भी कोरियन बूट्स का चूना लगा देगा।
0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
4: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो आशा।
3: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो, सो बी कॉन्फिडेंट।
4: तुम जितनी कोशिश कर लो ऊंचा न होगा कोई।
5: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।
6: 70s हो, 90s हो या हो 20s, हर म्यूजिकल दुनिया का राग है रेडियो महारानी के साथ। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ है।

0: वालों का कभी ईमान नहीं बिकता।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: अरे मेहनत करने वालों का कभी ईमान नहीं बिकता।
2: और आगे
0: याद रखिए, हेलमेट पहनने वालों का कभी चलान नहीं कटता।
3: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
4: ओए मुन्ना, मैं तुझे समझा रहा हूँ, जब भी घर से निकले तो पानी की बोतल साथ लेके निकलियो। अगर तू बिना पानी की बोतल लिए निकला तो तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। ध्यान रखियो मुन्ना।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारो।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारो।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो कह रहा था बस से उतरो और आगे बढ़ो। मुंह उठा के आगे बढ़ना था। अब मैं चली तुम बोलते रहो।
1: सुनो सुनो हेलो टिकट कटवा लेना।
2: चुस्की हो या गांव की गलियां यहां हर बात में है अपनापन। हर आवाज में है कहानी क्योंकि ये है रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फ्री वाईफाई हमेशा सेफ नहीं होता, इसलिए अब से पब्लिक वाईफाई यूज ना करें। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ।
2: गन्ने का जूस, बड़ा गिलास, 20 रुपए का।
3: ये गन्ने का जूस मुझे दे दे ठाकुर, क्योंकि गर्मी बहुत है।
4: यहाँ गानों में है अपनी वाली बात और कहानियों में है जिंदगी का एहसास। हमें जो भी सुने यही बोले, ये हुई ना बात। हम है आपका अपना रेडियो, रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

चुस्की हो या गांव की गलियां, यहां हर बात में है अपनापन, हर आवाज में है कहानी, क्योंकि ये है रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारो।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो टिकट कटवा लेना।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

save life. Of course, पर save water, save cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते.

को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो, टिकट कटवा लेना।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

सोचो, एक क्रिकेट ग्राउंड, बॉल न्यू है, बॉलर फ्रेश है और एक टीनेजर बिना किसी डर के कवर ड्राइव मार रहा है, स्मूथ क्लासी, जैसे बॉल उसका हुक्म मानती हो। ये कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं था, ये वो लड़का था जिसके बारे में लोग बोल रहे थे नेक्स्ट बिग थिंग, सिर्फ हैदराबाद का नहीं इंडिया का फ्यूचर। सचिन तेंदुलकर ने जब इस लड़के का गेम देखा तो सिर्फ रन्स नहीं देखे, उन्होंने देखा स्पार्क। नाम था अंबती रायडू। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान और आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उनका नाम है अंबती रायडू। अंडर 19 से लेकर डोमेस्टिक क्रिकेट तक रायडू का बैट इतना जोर से बोला कि सिलेक्टर्स ने ज्यादा वेट नहीं किया और लोग भी मान चुके थे ये लंबी रेस का घोड़ा है। पर असली सवाल ये है, जिसका करियर इतना स्ट्रॉन्ग स्टार्ट होता है उसकी कहानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाती है? क्यों बार बार टीम से अंदर बाहर? क्यों इतना टैलेंट होने के बाद भी रायडू एक श्योर शॉट स्टार नहीं बन पाया? इस कहानी का सेकंड चैप्टर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट नहीं है, नेचर और चॉइसेस का भी है। तो सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मैं हूं आपका मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ और शो चल रहा है कामयाबी की उड़ान।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सोचो, एक क्रिकेट ग्राउंड, बॉल न्यू है, बॉलर फ्रेश है और एक टीनेजर बिना किसी डर के कवर ड्राइव मार रहा है, स्मूथ क्लासी, जैसे बॉल उसका हुक्म मानती हो। ये कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं था, ये वो लड़का था जिसके बारे में लोग बोल रहे थे नेक्स्ट बिग थिंग, सिर्फ हैदराबाद का नहीं इंडिया का फ्यूचर। सचिन तेंदुलकर ने जब इस लड़के का गेम देखा तो सिर्फ रन्स नहीं देखे, उन्होंने देखा स्पार्क। नाम था अंबती रायडू। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान और आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उनका नाम है अंबती रायडू। अंडर 19 से लेकर डोमेस्टिक क्रिकेट तक रायडू का बैट इतना जोर से बोला कि सिलेक्टर्स ने ज्यादा वेट नहीं किया और लोग भी मान चुके थे ये लंबी रेस का घोड़ा है। पर असली सवाल ये है, जिसका करियर इतना स्ट्रॉन्ग स्टार्ट होता है उसकी कहानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाती है? क्यों बार बार टीम से अंदर बाहर? क्यों इतना टैलेंट होने के बाद भी रायडू एक श्योर शॉट स्टार नहीं बन पाया? इस कहानी का सेकंड चैप्टर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट नहीं है, नेचर और चॉइसेस का भी है। तो सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम। मैं हूं आपका मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ और शो चल रहा है कामयाबी की उड़ान।
1: Yeah.

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: ये भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाए और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचे। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

जब भी हम किसी स्पोर्ट्स स्टार के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें सामने आती है, जैसे कि टैलेंट, उसका एटीट्यूड, और राइडू के पास भी सब कुछ था, टाइमिंग, टेक्निक, कॉन्फिडेंस। पर एक चीज थी जो अक्सर उसके साथ फील्ड में आ जाती थी, टेम्पर यानी गुस्सा। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, और शो चल रहा है कामयाबी की उड़ान। और हम बात कर रहे हैं आज अंबती रायडू की। डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्होंने बहुत से रन्स मारे और हेडलाइंस भी बनाई, पर हेडलाइन सिर्फ सेंचुरीज की नहीं थी, कभी ऑन फील्ड आर्ग्यूमेंट्स, कभी डिसिप्लिन इश्यूज। सेलेक्टर्स के लिए रायडू एक पजल बन गए थे। टैलेंट अनक्वेश्चनेबल है, पर क्या हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? ये थे कुछ सवाल सेलेक्टर्स के। इंडिया के लिए बहुत से मौके मिले, कभी प्रॉमिसिंग स्टार्ट, कभी सॉफ्ट डिसमिसल, कभी ब्रिलियंट इनिंग्स, बट उसके बाद साइलेंस। और धीरे धीरे रायडू का नाम प्रोबेबल से मे बी, और फिर वेयर इज ही नाउ, इसमें बदलने लगा। एक टाइम ऐसा आया जब लोग मान चुके थे रायडू का इंडिया चैप्टर खत्म। पर क्रिकेट का गेम सिंपल नहीं होता, और रायडू की कहानी भी सिंपल नहीं थी, क्योंकि जब सबने हाथ खड़े कर दिए तब एक टीम ने सिर्फ टैलेंट नहीं देखा, कैरेक्टर को सेकंड चांस दिया। कौन सी थी वो टीम, करेंगे इसके बारे में बात मगर थोड़ी देर बाद। और जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं अंबती रायडू की, तो उनकी लाइफ के जितने भी स्ट्रगल्स थे और कमबैक कैसे हुआ, उन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं ओनली ऑन द शो कामयाबी की उड़ान। फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना रेडियो महारानी 89.6 FM पर कुछ

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

हर खिलाड़ी की लाइफ में एक ना एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो बिल्कुल टूट जाता है, मगर समय और भगवान आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं, और ऐसा ही टेस्ट हुआ अंबती रायडू का। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, और आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, और आज हम लोग बात कर रहे हैं अंबती रायडू की। साल था 2018 जब उनको टीम में नहीं लिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ द यो-यो टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जिसमें फिटनेस टेस्ट की जाती है। और फिर आया आईपीएल 2018, एक टीम जिसका कलर सिर्फ येलो नहीं बिलीफ का सिंबल था, चेन्नई सुपर किंग्स। यहां फ्लैशी नहीं रिलायबल प्लेयर्स चलते हैं, और रायडू यहां परफेक्टली फिट हो गया। नो अननेसेसरी शॉट्स, नो ईगो, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रेशर सिचुएशन हो या बिग मैच, रायडू खड़ा रहा। 600 से ज्यादा रन्स, मैच विनिंग नॉक्स, और फिर एक आवाज, रायडू इज बैक इन इंडिया कंटेंशन। सेलेक्टर्स ने भी देखा ये पुराना रायडू नहीं है, ये मैच्योर है, शांत है और टीम के लिए खेलता है। 2019 वर्ल्ड कप के पहले तक लग रहा था बस एक फॉर्मल अनाउंसमेंट बाकी है, नहीं तो रायडू तो अपनी टीम में है ही है। पर क्रिकेट सिर्फ परफॉर्मेंस से नहीं चलता ना, कभी कभी इक्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स भी आ जाते हैं, और रायडू फिर से डिसीजन के बीच आ गया। और यहां पर एक ऐसी चीज हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। क्या हुआ आगे बताऊंगा मगर थोड़ी देर बाद, अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ। वापस आकर अंबती रायडू की लाइफ के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, और बात करेंगे उन 3D स्मार्ट ग्लासेस की जो ऑर्डर किए थे अंबती रायडू ने, क्यों किए थे बताऊंगा मगर इस गाने के बाद।

0: शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद,
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद।

इंडिया में क्रिकेट को एक धर्म की तरह माना जाता है, और जब भी क्रिकेट में कोई खिलाड़ी पहुंचता है तो वो बहुत सी उम्मीदें लेके जाता है, उसकी अपनी खुद की उम्मीद, उसकी परिवार की उम्मीदें, और फिर उसके बाद आती है अनाउंसमेंट की स्टेज। वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस होने वाला था। हर क्रिकेटर के घर का सीन ऑलमोस्ट सेम होता है, टीवी ऑन, मोबाइल साइलेंट, फैमिली पास बैठी हुई, और एक उम्मीद इस बार नाम आ ही जाएगा। अंबती रायडू के साथ भी वही हो रहा था। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, और हम लोग बात कर रहे हैं अंबती रायडू की पूरी लाइफ के ऊपर, जहां अभी तक मैंने बताया कि कैसे उनके गुस्से की वजह से काफी टीम्स ने उनको ड्रॉप कर दिया, बट साल 2018 के इंडियन प्रीमियर लीग में उनको चांस दिया चेन्नई ने, और उसके बाद हुआ क्या, साल 2019 का वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंसमेंट, नाम पढ़ना शुरू हुए, एक एक करके प्लेयर्स अनाउंस होते गए, मिडल ऑर्डर के नाम आए, ऑलराउंडर्स के नाम आए, पर रायडू का नाम कहीं पर भी नहीं था। उस पल सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं टूटा, उस पल सालों की मेहनत, कमबैक और सेल्फ कंट्रोल भी छुप गए। ना किसी को फोन किया, ना मीडिया के सामने आए, बस एक छोटा सा ट्वीट किया, जस्ट ऑर्डर्ड अ न्यू सेट ऑफ 3D क्लासेस। लोगों को लगा जोक है, पर जो समझ रहे थे उन्हें पता था ये जोक नहीं, दर्द का शॉर्टकट था। रायडू ने कभी यह नहीं कहा कि सिलेक्टर्स गलत थे, पर उसकी खामोशी बहुत कुछ कह गई। उसने फिर भी क्रिकेट तुरंत नहीं छोड़ा, CSK के लिए खेले, हर रन्स में प्रोफेशनलिज्म दिखाया, जैसे कह रहे हो अगर यही मेरी स्टेज है तो मैं यही अपना बेस्ट दूंगा, फैंस के लिए, टीम के लिए, और सबसे बड़ी बात अपनी इज्जत के लिए। और फिर एक दिन बिना शोर, बिना ड्रामा, बिना इमोशनल वीडियो के अंबती रायडू ने कहा, दिस इज इट, नो फेयरवेल मैच, नो स्पॉटलाइट, बस रिस्पेक्ट। रायडू की कहानी हमें यह सिखाती है, हर ग्रेट प्लेयर का एंड फेयरी टेल जैसा नहीं होता, कुछ कहानियां बिना तालियों के खत्म हो जाती है और याद वहीं रह जाती है। अंबती रायडू शायद वर्ल्ड कप ना जीत पाए, पर उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी हारने नहीं दी, और शायद ये ही एक रियल चैंपियन की पहचान होती है। तो गाइज, आप लोगों को ये पूरा प्रोग्राम कैसा लगा मैसेज करके जरूर बताइएगा, नंबर है 9654896896। ऐसी ही और भी इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ क्रिकेटर्स, ऑफ स्पोर्ट्समैन लाता रहूंगा आप सभी के सामने। मैं निकलता हूं यहां से, मिलूंगा आप सभी से मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 8 ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तब तक के लिए

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
3: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
4: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
5: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।
6: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर एक प्रत्यारोपण विशेषज्ञ के साथ चर्चा करने वाले हैं, जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देंगे। कहीं मत जाइएगा, हम थोड़ी ही देर में वापस आते हैं।

0: इस इलाके में नए आए हो साहब, क्योंकि हेलमेट पहन के राइड करने का रूल बच्चा बच्चा जानता है।
1: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
2: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
3: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
4: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: आप सभी का ऑर्किड इंडिया के इस खास कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में स्वागत है। जैसे कि हमने आपको ब्रेक के पहले बताया था कि आज हमारे साथ ऑर्किड इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा है, जो हमें किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं।
1: धन्यवाद पायल। दोस्तों, हम हमेशा आपके साथ ऐसे लोगों की बातचीत करवाते हैं जो कि ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ होते हैं या जिन लोगों ने अपने परिजनों के अंग दान किए हैं। इसी कड़ी में हम आज बातचीत करने जा रहे हैं डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी से, जो कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। दोस्तों, आज हम डॉक्टर त्रिपाठी से जानेंगे कि स्वैप ट्रांसप्लांट क्या होता है और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, किन विशेष परिस्थितियों में हम ये इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं और किन पेशेंट्स में इनका हम लाभ नहीं ले सकते। तो आइए चलते हैं हम डॉक्टर त्रिपाठी के पास एंड डॉक्टर त्रिपाठी से जानते हैं इस बारे में। डॉक्टर त्रिपाठी जी, आप हमारे श्रोताओं को स्वैप ट्रांसप्लांट के बारे में बताइए कि ये किस तरह का ट्रांसप्लांट होता है और इसकी विशेषता क्या होती है।
2: देखिए, स्वैप ट्रांसप्लांट को समझने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नॉर्मल ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया क्या है। जब किसी व्यक्ति की किडनी खराब होती है तो ऐसी स्थिति में ट्रांसप्लांट के लिए उसे किसी अपने परिजन की, जिसका उसके साथ ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है और वो मेडिकली फिट है, उसकी किडनी उसके शरीर से लेके मरीज के शरीर में प्रत्यारोपित की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे कानून के हिसाब से सिर्फ निकट संबंधी ही आपको किडनी दे सकता है, डोनेट कर सकता है। तो अगर आपके परिवार में कोई भी ब्लड ग्रुप मैच डोनर नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपके पास विकल्प बहुत कम रह जाते हैं। या तो आपको बिना ब्लड ग्रुप के ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ेगा या कैडेवर पे। ऐसे लोगों के लिए स्वैप ट्रांसप्लांट बहुत जरूरी होता है। स्वैप ट्रांसप्लांट क्या है? अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है और आपके परिवार में किसी का ब्लड ग्रुप बी है, ऐसी स्थिति में वो आपको नॉर्मल ट्रांसप्लांट के लिए किडनी नहीं दे सकता। इसी तरह से एक और परिवार है जिसमें मरीज का ब्लड ग्रुप बी है और उसके डोनर का ए है, वो भी डोनर अपने मरीज को नॉर्मल कंपेटिबल ट्रांसप्लांट के लिए वो भी उपयुक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर आप आपस में अदला बदली, स्वैप को हिंदी में हम अदला बदली बोल सकते हैं, अगर आप इस
3: आवाज आ रही है आपको,
2: तो एक कंपेटिबल ट्रांसप्लांट
3: आ रही है, नहीं आ रही,
2: तो इससे फायदा आपको महंगे ट्रांसप्लांट पे नहीं,
3: अभी भी नहीं आ रही,
2: आपको नॉर्मल रेट पे कंपेटिबल ट्रांसप्लांट उपलब्ध होगा और हमारे कानून के हिसाब से
3: आपकी आवाज मेरे पास भी नहीं आ रही है,
2: उसके हिसाब से ये लीगल है। इस तरह के
3: जा रही है
1: हेलो डॉक्टर साहब, आपने जो बताया कि ये ट्रांसप्लांट लीगल है,
4: अच्छा, तुम्हारे
1: तो
4: पास तो
1: इसमें कुछ विशेष अनुमति की जरूरत होती है गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताएं।
2: अलग से स्वैप ट्रांसप्लांट का उसमें नाम है, उसकी जो प्रोसेस।
3: हां जी, हेलो।
2: तो जो भी नॉर्मल
3: एक सेकेंड आवाज आ रही है मोनिक सर,
2: ट्रांसप्लांट के लिए भी अलग फॉर्मेट होते हैं।
3: नहीं आ रही ना, एक मिनट रुकिएगा।
2: परिवारों की सारी लीगल डिटेल्स लगाई जाती है, तो जैसे हम एक फाइल में एक मरीज और डोनर
3: हेलो अब आ रही है,
2: इस केस में दोनों परिवार आ गए साथ में, तो सबके आपस में दोनों परिवार के आपस के रिलेशन, और इसमें भी ये जरूरी है कि आपस में पैसे का लेन देन ना हो, ऑर्गन की किसी तरह से खरीद ना हो, तो यहाँ भी आपके अकाउंट स्टेटमेंट चेक करना।
3: हेलो हेलो, 1 2 3 माइक टेस्ट, माइक टेस्ट,
2: मदद कर रहे हैं, अदला बदली है,
3: क्या अब आवाज आ रही है
2: कि शायद आपको किसी भी तरह से पैसे के लेन देन की जरूरत ना पड़े। तो इन सब चीजों की जो रूटीन जांचे सामान्य ट्रांसप्लांट में होती है वो इसमें भी होती है, और जो आपकी ऑथराइजेशन कमेटी है वो स्वैप ट्रांसप्लांट के लिए इन सब चीजों को देखती है।
3: माइक भी चल रहा है मेरा,
2: हम ट्रांसप्लांट पे जा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब
3: आ जाइए, आ जाइए।
1: स्वैप ट्रांसप्लांट बताया तो इसमें आपने बताया कि दोनों मरीज के परिवार जनों से हम ये एक्सचेंज कर सकते हैं, तो इसमें भी ये चीज अप्लाई होती है, ये चीज लागू होती है कि जो डोनर है वो पेशेंट का
5: परिवार जन निकल
1: जाए, या फिर जो अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट है हम उन लोगों को भी इसमें, या डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं जो दूर के रिश्तेदार हैं हम उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं।
2: नहीं, यहाँ पर भी निकट संबंधियों का कानून तो वही रहेगा जो सामान्य ट्रांसप्लांट पे है। अगर स्वैप का जो एक ग्रुप है उसमें भी वही सारे कानून लगेंगे जो नॉर्मल ट्रांसप्लांट पे लगते हैं, वो उसका निकट संबंधी होना चाहिए, उसके जो भी जो कागज हैं, जो सरकारी कागज हैं उसकी मैचिंग के वो जरूरी होगा। अगर वो जेनेटिकली रिलेटेड है तो उनके केस में जो HLA टाइपिंग हम करते हैं वो सब की जाती है। अंतर सिर्फ ये है कि मरीज का डोनर के साथ संबंध स्थापित करना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस मरीज का डोनर दूसरे मरीज का परिजन है, तो उनका आपस में संबंध तो नहीं होगा। तो आपको अपना जो डोनर है, जो एक्चुअल डोनर नहीं है, जो एक्सचेंज में जा रहा है, उसके साथ आपके संबंध को स्थापित करना पड़ेगा।
1: अगर वो आपका निकट संबंधी नहीं है तो
2: नहीं है तो ट्रांसप्लांट संभव नहीं है। तो नहीं केस में आपका संबंधी तो होना चाहिए, दो संबंधियों के बीच में ये एक्सचेंज ना कि अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट है, इसे भी हम रिलेटेड ट्रांसप्लांट मानेंगे।
1: जो सामान्य ट्रांसप्लांट है उसकी प्रक्रिया में आप दूर के रिश्तेदारों से, अपने दोस्त से या फिर अपने पहचान वालों से एक विशेष प्रक्रिया के तहत अंग ले सकते हैं, जिसमें सरकार की परमिशन की जरूरत होती है और सरकार

0: करें।
1: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: दोस्तों हम फिर से यहाँ पर उपस्थित हैं अपने इस कार्यक्रम को लेके जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर त्रिपाठी से जो कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और बंसल हॉस्पिटल में कार्यरत हैं जो कि भोपाल में स्थित है। तो दोस्तों हम अपनी इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब हमने अभी इस बारे में बातचीत की कि इसकी क्या विशेषता है, थोड़ा सा हम इस बारे में बातचीत करते हैं। आप हमें ये बताइए हमारे श्रोताओं को कि किन मरीजों में स्वैप ट्रांसप्लांट पॉसिबल है और किन मरीजों को स्वैप ट्रांसप्लांट सजेस्ट नहीं किया जाता, उनको पहले ही मनाही कर दी जाती है कि स्वैप ट्रांसप्लांट इस पर्टिकुलर केस में पॉसिबल नहीं है।
2: देखिए स्वैप ट्रांसप्लांट किन में किया जाता है, सबसे पहले तो अगर आपके परिवार में, पहले हम देखते हैं कि आपके परिवार में ब्लड ग्रुप मैच डोनर है या नहीं है। तो सपोज किसी की फैमिली में ब्लड ग्रुप मैच लोग मिल रहे हैं, वैसी स्थिति में हम उन्हें स्वैप ट्रांसप्लांट की

0: आगे नहीं देंगे और अलाउ भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास डोनर उपलब्ध है, तो आप जाहिर सी बात है कि आप नॉर्मल ट्रांसप्लांट की तरफ जाएंगे। दूसरी चीज आती है कि एक डिफिकल्टी होती है कि सपोज आपका रिसिपिएंट जो है उसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो ऐसी स्थिति में उसके घर में अगर डोनर नहीं है तो जो दूसरा परिवार है उसे ओ ग्रुप की किडनी चाहिए, और उस दूसरे परिवार के डोनर का अगर ओ ग्रुप है तो वो अपने परिवार को भी किडनी दे सकता है। तो इन ग्रुप्स के ट्रांसप्लांट बहुत डिफिकल्ट होते हैं, इनमें स्वैप में उन्हें डोनर मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इन लोगों को किडनी कब मिलती है उसकी एक दूसरा क्राइटेरिया होता है कि अगर आपके डोनर के साथ आपका ब्लड ग्रुप मैच तो कर रहा है लेकिन डोनर स्पेसिफिक एंटीबॉडी है आपके शरीर में, अर्थात मैचिंग नहीं है उसमें, अगर आपका ट्रांसप्लांट होता है तो शायद आपकी किडनी रिजेक्ट कर जाएगी और डोनर का ब्लड ग्रुप वो है, इसका मतलब है कि वो अपने मरीज को किडनी तो दे सकता है ब्लड ग्रुप के हिसाब से लेकिन उसमें एंटीबॉडी होने की वजह से वो फिट नहीं है। ऐसी स्थिति में ओ ग्रुप के रेसिपिएंट को भी अपोजिट से किडनी मिल सकती है। तो आमतौर पर जब भी कोई पेशेंट रजिस्ट्री के लिए आता है तो हम ओ ग्रुप का रेसिपिएंट जो होते हैं उनके केस में हम उन्हें बताते हैं कि आपके केस में स्वैप के लिए डिफिकल्टी है, और ऐसे केसेस जब भी आएंगे जो मैंने आपको बताया डोनर स्पेसिफिक एंटीबॉडी वाले, तो वैसे केसेस में हम इन डोनर्स को आपस में मिलाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने कुछ देर पहले ऐसे ट्रांसप्लांट की बात की थी जिसमें ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता, जिसे हम ABO इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं, थोड़ा सा हमें इस बारे में विस्तार से बताएंगे कि ये किस तरह का ट्रांसप्लांट होता है।
0: देखिए, सामान्य रूप से जब भी आप रूटीन में सुनते हैं कि किसी को ब्लड चढ़ाना है तो ब्लड ग्रुप कंपेटिबिलिटी किसको हम बोलते हैं कि ओ ग्रुप किसी को भी दे सकता है, ए बी ग्रुप का पेशेंट किसी से भी ब्लड ले सकता है, ए ग्रुप का ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है, तो यही चीज़ें गुर्दा प्रत्यारोपण में भी यही संभावनाएँ लागू होती हैं। तो अगर ऐसा कोई डोनर आपके पास है आप ट्रांसप्लांट पे चले जाते हैं, लेकिन अगर आपका ग्रुप ए है और डोनर का बी है, ऐसी स्थिति में ट्रांसप्लांट संभव नहीं है क्योंकि बी ग्रुप की किडनी आपके शरीर में जाएगी तो किडनी रिजेक्ट हो जाएगी। इन मरीजों में अगर ट्रांसप्लांट होता है तो इसे हम ABO इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट बोलते हैं। ऐसा कैसे संभव है? तो जब किसी डोनर का ब्लड ग्रुप बी है और रेसिपिएंट ए है, तो ऐसी स्थिति में रेसिपिएंट में जो बी ग्रुप का एंटीबॉडी है उसको हम कुछ दवाइयों प्लाज्माफेरेसिस के माध्यम से शरीर से एंटीबॉडीज को हटा देते हैं। तो एक प्लाज्माफेरेसिस की प्रोसेस होती है जिसमें आपका जो वाइट वाला ब्लड है, प्लाज्मा है, इसी में सारी एंटीबॉडीज होती हैं, उस एंटीबॉडी को निकाला जाता है। एंटीबॉडी नई ना बने इसके लिए काफ़ी पहले से इम्यूनोसप्रेशन दिए जाते हैं, कुछ महंगे इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे कि शरीर में रिबाउंड ना हो, फिर से एंटीबॉडीज ना बने। जब एंटीबॉडी की मात्रा एक खास लिमिट में आ जाती है, जैसे 1:8 है, 1:4 है, ना के काफ़ी कम हो जाए, उसका अपना क्राइटेरिया होता है, हर सेंटर का अपना क्राइटेरिया होता है, उस स्थिति में गुर्दा प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। क्योंकि एंटीबॉडीज लेवल कम है तो शरीर उस किडनी को एक्सेप्ट कर लेता है और धीरे धीरे एक एकोमोडेशन की प्रोसेस होती है कि वो बॉडी उस चीज़ को एकोमोडेट कर जाती है। भविष्य में चूंकि आप ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स में हैं, आपने एंटीबॉडीज का लेवल एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बनता, और इन मरीजों में भी ये देखा गया है कि ये ट्रांसप्लांट का सफलता का रेट भी करीब करीब कंपेटिबल ट्रांसप्लांट के बराबर ही होता है, जिसमें थोड़े से एक्सपेंस आपके ज़्यादा होंगे। जब नॉर्मल ट्रांसप्लांट 6-8 लाख तक का जा रहा है तो करीब करीब 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं इसमें, क्योंकि प्लाज्मा फेरेसिस और इन दवाइयों का कॉस्ट होता है। लेकिन अगर इनिशियल फेज अच्छी निकल जाती है, बॉडी एक्सेप्ट करती है, तो लॉन्ग टर्म आउटकम इसमें भी बहुत अच्छा होता है।
1: जैसा कि आपकी बात से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये एक तरह की प्लांट प्रोसेस है, तो इस पूरे प्लाज्मा फेरेसिस की प्रोसेस में
2: जाने के लिए
3: उस टाइम आवाज आपको इसलिए नहीं आती क्योंकि हमने एक नंबर उठाया नहीं था,
0: डिपेंड नहीं करता, ये फिक्स नहीं होता,
2: कितनी प्लाज्मा आने के लिए।
3: मेरी आवाज आ रही थी, आप नहीं आ रही,
4: रिंग आ जाएगा उसके,
0: जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए है,
3: करिए करिए।
0: बी ग्रुप का एंटीबॉडी का लेवल टेस्ट किया जाता है सबसे पहले, तो कई लोगों में एंटीबॉडी लेवल बहुत हाई होते हैं, जैसे 500 से ऊपर होते हैं, कई लोगों में 32-64 इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में एंटीबॉडी टाइटर आते हैं। तो जिन लोगों के एंटीबॉडी टाइटर कम
3: उठा ले रहे
0: उनमें 3-5 साइकल्स में कंट्रोल हो जाता है, एक दिन 6 साइकिल हो जाती है। जिन लोगों में लेवल बहुत ज्यादा, कई बार उनमें 2 तक भी लग जाते हैं,
3: नहीं आ रहा ना कुछ भी, आवाज नहीं आ रही,
0: समय आपके एंटीबॉडी लेवल
3: भी नहीं ना।
0: आजकल कुछ नई चीजें मार्केट में है, जैसे कॉलम्स होते हैं, तो कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जिनको प्लाज्मा फेरेसिस के साथ हम जोड़ देते हैं, तो एक सिंगल लंबी साइकिल में हम 1-2 दिन में ही सारे एंटीबॉडीज को हटा देंगे। और हम अपने
3: ये रिंगिंग की लाइट क्यों नहीं चल रही, ये तो वो अलग है, ये तो अलग, इसकी लाइट क्यों नहीं चल
1: रही। शरीर में जो हमने चेंजेस किए, प्लाज्मा निकाल लिया, जो एंटीबॉडी उनको कम कर दिया, तो ट्रांसप्लांट
0: में होती है, हमें रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज को हटाना है, डोनर की किडनी रिसिपिएंट के शरीर में जानी है, तो डोनर की किडनी चेक ना हो इसलिए रिसिपिएंट की एंटीबॉडी
4: बिल्कुल नहीं आ रही है, वो जाएगी स्पीकर पे जाएगी,
0: हमने हटा दी किडनी को, हमने लगा दिया, क्योंकि अब आप
3: कैसे कुछ भी नहीं आ रहा है,
0: अब हमने ऐसी दवाइयां
3: दी शरीर
0: का जो एंटीबॉडीज,
3: चलिए माइक ऑन है सब ऑन है, बट ये लाइट भी तो जलनी चाहिए रिंगिंग की जब फोन आए,
4: हाँ ये तो जलनी चाहिए,
3: ये नहीं जल रही ना,
0: पहले हमने
3: ये दवाई है ऑन एयर होल्ड हो जा रहा
0: है, लेवल्स को टेस्ट करते हैं कि सडन बढ़ ना जाए, और कई बार ट्रांसप्लांट के बाद हमें फिर से प्लाज्मा करनी पड़ती है पहले हफ्ते में, लेकिन समय के साथ साथ ये एंटीबॉडी जनरेशन बहुत कम हो जाता है, और दो तीन हफ्ते बाद आप मान सकते हैं करीब करीब
3: जो
0: भी सामान्य गुर्दा प्रत्यारोपण की
3: यही कुछ होना चाहिए, ये
0: जो की क्योरेबल नहीं है या क्योर भी रिसेंटली हुआ है, उसके लिए अपनी अपनी हर कैंसर की अपने टाइम पीरियड होता है, किसी पेशेंट को एडवांस कार्डियक डिसीज है जिससे उसकी लाइफ बहुत लंबी नहीं है ट्रांसप्लांट के बाद, तो ऐसे लोगों में ट्रांसप्लांट की मनाही है मेडिकल रीजन से, तो अगर किसी के पास भी डोनर उपलब्ध नहीं है कंपेटिबल, और उसके पास इनकम्पेटिबल डोनर उपलब्ध है जिसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं है, तो ये भी इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट में जा सकता है।
1: सर हम यहाँ पर फिर से एक छोटा से अंतराल के बाद वापस आएंगे और अपनी इस बातचीत को जारी रखेंगे, दोस्तों हम थोड़ी ही देर में वापस आते हैं।

0: यू नो सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो, यू रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

0: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर। बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: कुछ पुरानी यादें, पुराने किरदार, आज के जमाने के लिए यादगार।
1: और मुशायरे, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: जिंदगी कैसी है पहेली हाँ।
0: वो एक कल जब बीते थे अपनों के संग कुछ पल,
3: एक दूसरे से करते हैं प्यार हम,
0: जब इशारों में होती थी बातें, इंतजार में कटती थी रातें।

0: सुनिए सिनेमा के कुछ यादगार रंग अपनों के संग शो रात बाकी बाद बाकी में सपना के संग।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए।
0: शनिवार और रविवार रात 8 से 10 ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मिलके एक दिया जलाएं। अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। एकता का परचम चहुं ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
2: दोस्तों हम अपनी इस चर्चा को जारी करते हुए डॉक्टर त्रिपाठी से बात करते हैं। हम बात कर रहे थे एबीओ इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट के बारे में। सर, स्वैप ट्रांसप्लांट और एबीओ इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट दोनों के लिए कोई नेशनल रजिस्ट्री या स्टेट लेवल रजिस्ट्री मौजूद है?
3: देखिए बिल्कुल, बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत पहले से काम कर रही हैं। जैसे महाराष्ट्र में स्वैप की रजिस्ट्री है, मेरे हिसाब से 3 रजिस्ट्रीज हैं वहाँ पे। इस तरह से कुछ ऐप बने हुए हैं जिसमें देश के कहीं से किसी कोने से भी कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट अपने मरीज को ऑनलाइन वहाँ पे रजिस्टर करा सकता है और उसके लिए डोनर जहाँ भी उपलब्ध हो। जैसे मैं भोपाल में हूँ, मेरी अपनी स्वैप रजिस्ट्री है, लेकिन चूँकि मैं सिंगल सेंटर है, मेरे पास रजिस्ट्री छोटी है। मेरे अपने जितने पेशेंट्स हैं, कई बार हमें उसके कंपेटिबल डोनर के लिए दूसरा स्वैप ढूंढना पड़ता है। कई बार सालों हम वेट करते हैं कि इस मरीज के लिए डोनर कब मिलेगा। ऐसी स्थिति में इस तरह की रजिस्ट्री जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन है, वहाँ पे हमारे पेशेंट्स को स्वैप उसका कंपेटिबल स्वैप मिलना बहुत आसान है, शायद तुरंत मिल सकता है क्योंकि रजिस्ट्री बहुत बड़ी है। तो इस तरह की रजिस्ट्री है। साउथ में बहुत सी जगहें ऐसी है जहाँ बहुत एक्टिवली इन सब चीज़ों पर काम हो रहा है और यही वजह है कि आजकल ट्रांसप्लांट्स के नंबर हमारे देश में लगातार बढ़ रहे हैं, स्वैप के नंबर बढ़ रहे हैं, एवियन कंपेटिबल बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग इस क्षेत्र में काफ़ी तेजी से अपना काम बढ़ा रहे हैं।
2: एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से है कि हम आप मध्य प्रदेश में भोपाल जिले में भोपाल शहर में ये प्रैक्टिस करते हैं नेफ्रोलॉजी की, तो अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में उपलक्ष्य में बात करें तो मध्य प्रदेश में स्वैप ट्रांसप्लांट या एबीओ इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट कहाँ कहाँ ये सुविधा उपलब्ध है? और
3: देखिए मध्य प्रदेश में भी स्वैप और एबीओ इनकम्पेटिबल दोनों ही ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। पिछले वर्ष 2019 में हमने ही एबीओ इनकम्पेटिबल और स्वैप दोनों ही ट्रांसप्लांट भोपाल शहर में स्टार्ट किया था। एबीओ इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट इसके पहले भी इंदौर में कुछ हुए हैं, मैं एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बता पाऊंगा। पिछले साल हमारे यहाँ एक मरीज था जिसमें एक हिंदू फैमिली थी जिसकी वाइफ के साथ उसकी मैचिंग नहीं थी और दूसरा एक मुस्लिम फैमिली थी जो कि उत्तर प्रदेश से थी। तो इस तरह से दो अलग अलग स्टेट, दो अलग अलग रिलीजन के लोग हमें मिले और हमने उसकी शुरुआत की स्वैप की एमपी में, उनका सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया। उसके 3 से 4 महीने के बाद एक और इसी तरह से दो फैमिलीज़ के बीच में हमने स्वैप ट्रांसप्लांट किया। तो कुल 4 रेसिपियंट्स हमारे स्वैप ट्रांसप्लांट से अब तक फ़ायदा ले चुके हैं। यहाँ पर एबीओ इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट भी पिछले 6 महीने में हमने 4 एबीओ इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट यहाँ पर किए हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो ग्लाइकोजॉब कॉलम्स से होता है जिसमें कि 1 से 2 दिन में ही हम एंटीबॉडीज़ को रिमूव करते हैं, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे बहुत कम होता है। तो इस तरीके से 4 एबीओ इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट भोपाल शहर में हमने पिछले 6 महीने में किए हैं
2: जी। सो इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा, अगर हम खर्चे की बात करें तो लगभग कितना खर्चा?
3: मैं अपने सेंटर का खर्चा बताऊं तो जो नॉर्मल कंपेटिबल ट्रांसप्लांट है ब्लड ग्रुप मैचिंग, उसका एक्सपेंस सब कुछ मिला के करीब करीब 6 से 7 लाख तक आता है। अगर हम एबीओ इनकम्पेटिबल की बात करें तो ये खर्चा 10 से 12 लाख के बीच, वो एंटीबॉडीज़ पे डिपेंड करता है। अगर आपका एंटीबॉडी टाइटर कम है तो शायद 10 से 11 लाख या 1-2 लाख और एक्स्ट्रा अगर टाइटर ज़्यादा है। तो स्वैप ट्रांसप्लांट का एक्सपेंस में कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि जब हमने उसकी डिटेल अभी समझी है कि वो ट्रांसप्लांट पूरी तरह से कंपेटिबल ट्रांसप्लांट जैसा ही है, सिर्फ इसमें डोनर मेडिकली आपस में रिलेटेड नहीं है, दो अलग अलग परिवारों में एक्सचेंज हुआ है। तो उसका खर्चा भी आप करीब करीब 6 से 7 लाख के बीच माने
2: जी। दोस्तों अब मैं डॉक्टर त्रिपाठी से अपील करूंगा कि वो हमारे श्रोताओं के लिए अगर कोई अपील करना चाहें तो।
3: देखिए मैं जो किडनी की बीमारी से ग्रसित मरीज हैं, उनके परिजन हैं, उनके लिए बताना चाहूँगा कि हमेशा एक पॉजिटिव थॉट रखें। अगर आपकी किडनी ख़राब है, आपकी किडनी पूरी तरह से डैमेज है, आपको डायलिसिस लग रहा है, यहाँ से ज़िंदगी का अंत नहीं है। किसी भी गुर्दा फेलियर के मरीज में एक सही ट्रीटमेंट जो आपको एक लंबी ज़िंदगी दे सकता है, आपको एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह या जैसे आप पहले थे, आप सब कुछ खा सकते हैं, आप घूम फिर सकते हैं, आपको रूटीन बहुत सारी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है, डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं तो ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छा विकल्प है, आपको एक नई ज़िंदगी देने जैसा है। तो आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क करें, उनसे ट्रांसप्लांट के बारे में सलाह लें, अगर आपके पास डोनर नहीं है तो ये जिस जिनकी हमने बातें की स्वैप ट्रांसप्लांट, ईवीएन कंपेटेबल ट्रांसप्लांट, इन सब की सुविधाएं आजकल ज़्यादातर सेंटर्स में उपलब्ध हैं, तो इन सब के बारे में खुल के अपने डॉक्टर से बात करें और जो भी संभव हो पाए आप कोशिश करें कि ट्रांसप्लांट पे जाएं। डायलिसिस पे बहुत लंबा समय निकालना बहुत कम संभावनाएं होती हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ट्रांसप्लांट की तुलना में बहुत ख़राब।
2: धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे शो पर आए और हमसे इतनी बातचीत की और इतनी सही जानकारी हमें उपलब्ध करवाई, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, अगर आप भी अंगदान के बारे में कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारी हेल्पलाइंस पर कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हैं, हमें ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे विदा लेता हूँ, हम जल्दी ही वापस आएंगे एक नए शो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।
4: हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम से आपको स्वाप ट्रांसप्लांट के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली होगी और इन प्रयासों से बहुत से मरीजों तथा उनके परिवारों को फायदा होगा। डॉक्टर त्रिपाठी ने बहुत ही सरल भाषा में हमें एक बहुत ही जटिल इलाज के बारे में समझाया और हम सभी का मार्गदर्शन किया। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताइए और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दीजिए। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे, इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

आइडियाज आर इजी, बिलीफ इज रेयर। कभी सोचा है, आइडियाज तो सबके पास होते हैं, प्लान्स भी होते हैं, पर बिलीफ वो सिर्फ कुछ लोग ही कैरी कर पाते हैं। और आज का एपिसोड एग्जैक्टली इसी बिलीफ के बारे में है। ये कहानी नॉइस से शुरू नहीं होती, ये धीरे धीरे अनफोल्ड होती है। जैसे कोई इंसान पहले सुनना सीखता है फिर बोलता है। और आज हम एक ऐसे नाम पर बात कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट सिर्फ बोर्डरूम्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एवरीडे कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन गया। मैं हूँ गीत और अब टाइम है बिजनेस अनप्लग का, जहाँ हम सक्सेस को कोट नहीं करते, समझने की कोशिश करते हैं। और आज के इस एपिसोड में फैक्ट्स बाद में आएंगे, पहले माइंडसेट आएगा। आपने कभी गौर किया है, कुछ बदलाव शोर मचाकर नहीं आते, वो धीरे से आते हैं, इतने धीरे से कि ज्यादातर लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। और आज का एपिसोड एक ऐसे ही बदलाव की कहानी है। और ये कहानी किसी अचीवमेंट से शुरू नहीं होती, ये कहानी शुरू होती है ध्यान देने की एक हैबिट से। हम अक्सर बिजनेस को नंबर्स, चार्ट और स्ट्रेटजी से जोड़ते हैं, लेकिन बिजनेस का सबसे पहला फेज इन सबसे पहले आता है, वो है ऑब्जर्वेशन। ये वो स्टेज होती है जहाँ कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, बस देखा जाता है, सुना जाता है और समझा जाता है। इंडिया के बिजनेस लैंडस्केप में एक ऐसा वक्त भी था जब अपॉर्चुनिटी कोई कॉमन वर्ड नहीं था, मार्केट्स नैरो थे, चॉइसेस लिमिटेड थी और एम्बिशन को अक्सर प्रैक्टिकल होने के एडवाइस से रोक दिया जाता था। ऐसे माहौल में सबसे रेयर चीज होती थी क्लैरिटी। क्लैरिटी लाउड नहीं होती, क्लैरिटी बस स्टेडी होती है। इस एपिसोड की कहानी उस क्लैरिटी के ग्राउंड में घूमती है। ये कहानी उस दौर की है जब किसी के पास बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होता, लेकिन नजर काफी दूर तक जाती। और यहीं पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझ आती है कि ग्रोथ हमेशा स्पीड से नहीं आती, कभी कभी ग्रोथ रुक कर देखने से आती है। इस स्टेज पर कोई हेडलाइंस नहीं होती, कोई इंटरव्यूज नहीं होते, बस एक इंटरनल प्रोसेस होता है। लोग कैसे सोचते हैं, लोग क्या चाहते हैं और लोग क्या कह नहीं पाते हैं। बिजनेस अनप्लग के इस एपिसोड में हम आज अनसेट पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये कहानी टैलेंट की नहीं है, ये कहानी लक के भी नहीं है, ये कहानी है पेशेंस के साथ बनने वाली सोच की। जब कोई मार्केट को सिर्फ सेलिंग स्पेस नहीं, एक लिविंग सिस्टम की तरह देखता है, जहां हर डिसीजन के पीछे एक ह्यूमन इमोशन होता है। और जब आप इमोशन समझने लगते हो तो आप सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं सोचते, आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने लगते हो। और यहीं से ये कहानी शुरू हो जाती है। इस फेज में कोई रिस्क नहीं लिया जाता, इस फेज में रिस्क समझा जाता है। और ये समझना ही आगे जाकर डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन दोज हु फॉलो मार्केट्स एंड दोज हु क्वाइटली शेप देम। और जब हम किसी बड़े नाम को देखते हैं तो हमें रिजल्ट दिखाई देता है, प्रोसेस नहीं। पर हर रिजल्ट से पहले एक इनविजिबल स्टेज होती है जहां कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। और आज इस कहानी का वही मतलब है, उस इनविजिबल स्टेज को फील कराना। नाम अभी नहीं आएगा क्योंकि नाम से पहले सोच का आना जरूरी है। आज के लिए सिर्फ इतना याद रखिए, कहानी एम्बिशन से नहीं, अटेंटिवनेस से शुरू होती है। और अब इस एपिसोड का अगला हिस्सा इसी सोच को एक डिसीजन के पॉइंट तक ले जाएगा। एक ऐसा डिसीजन जो उस वक्त ऑर्डिनरी नहीं लगा लेकिन बाद में डेफिनेशन बन गया। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ बनी हुई हूँ गीत। और अभी कुछ देर पहले हमने जाना कि बिजनेस की शुरुआत आइडिया से नहीं होती, समझ से होती है। और अब उसी समझ के बाद एक पॉइंट आता है जहाँ सोचना काफी नहीं रहता, जहाँ डिसीजन लेना पड़ता है। और उस वक्त इंडियन मार्केट पहले से ही जो तय किए गए थे उन्हीं पैटर्न्स पर चल रही थी, जो चीज बिक रही थी वही सही मानी जाती थी। लेकिन यहाँ पर एक अलग सोच काम करती है। सवाल ये नहीं था कि अभी क्या बिक रहा है, सवाल ये था आगे क्या होना चाहिए। यहाँ एक इम्पोर्टेंट फर्क समझिए, कुछ लोग मार्केट को देखते हैं, कुछ लोग कस्टमर्स को देखते हैं। और कस्टमर्स सिर्फ प्राइस नहीं देखते, वो कंसिस्टेंसी देखते हैं, भरोसा देखते हैं, और सबसे जरूरी वो ये देखते हैं कि प्रोडक्ट उसके लिए बना है या नहीं। और यहीं पर एक साफ डिसीजन लिया गया, फॉलो करने का नहीं, लीड करने का। ये कोई एक्साइटमेंट वाला फैसला नहीं था, ना ही कोई जल्दबाजी में लिया गया था। ये सोच समझ कर लिया गया फैसला था कि अगर इंडिया को क्वालिटी मिल सकती है तो उसे अल्टरनेटिव क्यों दिया जाए। और क्वालिटी का मतलब लग्जरी नहीं था, क्वालिटी का मतलब था रिलायबल, ड्यूरेबल और एसेसिबल। ये डिसीजन उस टाइम इंडस्ट्री के कंफर्ट जोन के खिलाफ था, लेकिन कंज्यूमर के बिहेवियर के साथ था। और यही रीजन था कि इस डिसीजन के साथ पेशेंस जुड़ा हुआ था, क्योंकि जब डिसीजन कंज्यूमर के साथ अलाइन होता है तो मार्केट बनने में टाइम लगता है, लेकिन टूटता नहीं है। और इस पॉइंट पर कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई ड्रामेटिक मूव नहीं हुआ, काम चलता रहा, सोच क्लियर रही। और यहीं से कहानी एक नए सवाल की तरफ बढ़ती है। डिसीजन तो ले लिया गया, लेकिन अब सवाल ये है कि इस डिसीजन को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, और उससे भी बड़ा सवाल कौन करेगा। और अगले लिंक पे हम उसी पर्सनालिटी की बात करेंगे जो इस तरह के डिसीजन को सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रहने देते। और अब वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

हे ईश्वर, हम माफी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा आपसे ज्यादा और ज्यादा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देती हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

पता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ही लगता है यू शुड नो। है मन उदास कापे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स अ लॉट।

डीनू जेम्स की आवाज में बहुत ही बढ़िया सा ट्रैक थैंक्स अ लॉट, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ गीत बनी हुई हूँ। अब तक हमने बातें की हैं सोच के डिसीजंस की, डायरेक्शन की। अब नेचुरली एक सवाल आता है, ऐसी सोच को ग्राउंड पर उतारने वाला इंसान किस तरह का होता होगा, क्योंकि आइडियाज कई लोगों के पास होते हैं, डिसीजन भी कई लोग लेते हैं, पर उन्हें लगातार निभा पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और यहाँ एक नाम आता है, नाम है धीरूभाई अंबानी का। और सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, उनकी पर्सनैलिटी लाउड नहीं थी, वो डोमिनेट नहीं करते थे, वो प्रेशर क्रिएट नहीं करते थे, उनकी ताकत कनेक्शन में थी। वो सामने वाले को सुनते थे, बात पूरी होने देते थे और फिर उस बात के पीछे की सोच को समझने की कोशिश करते थे। धीरूभाई अंबानी प्रोडक्ट से पहले लोगों पर काम करते। उनका मानना था, जब लोग खुद को किसी आइडिया का हिस्सा मानने लगते हैं तो ग्रोथ अपने आप फॉलो करती है। इसी वजह से उन्होंने कस्टमर्स नहीं बनाए, उन्होंने पार्टिसिपेंट्स बनाए थे। मिडिल क्लास ने पहली बार ये महसूस किया कि बिजनेस उनके लिए भी हो सकता है। उनके डिसीजंस में फियर नहीं दिखता था, लेकिन प्रिपरेशन जरूर दिखती थी। वो रिस्क को इग्नोर नहीं करते थे, वो रिस्क को समझकर सिंपल बना देते थे, और शायद यही वजह थी कि उनके डिसीजंस सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं रहे, सस्टेनेबल रहे। उनके लीडरशिप का एक और पहलू था, कंसिस्टेंसी। वो जो सोचते थे उस पर रुके रहते थे, ना जल्दी एग्जिट, ना अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन, बस फोकस। और जब फोकस क्लियर होता है तो लोग साथ आ जाते हैं। धीरूभाई अंबानी की पर्सनालिटी बिजनेस के नंबर्स में नहीं दिखती, वो दिखती है उस कॉन्फिडेंस में जो लोगों के बिहेवियर में आ गया। आज भी जब कोई मिडिल क्लास इन्वेस्टर मार्केट को अपनी जगह समझता है तो उसके पीछे इसी सोच का असर है। और इसके बाद ये कहानी एक और मोड़ लेगी, जब सिस्टम ने इस ग्रोथ को नोटिस किया। उस हिस्से में हम बात करेंगे प्रेशर्स की, चैलेंजेस की, और उस अप्रोच की जिसने सब कुछ बैलेंस रखा। आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहीं से कहानी और गहरी होती है।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ गीत बनी हुई हूँ। हम बात कर रहे हैं धीरू भाई अंबानी के बारे में। चलो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं उनके बचपन की तरफ। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की अपने गांव के स्कूल से, मैट्रिक तक पढ़ाई पूरी की, लेकिन इसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की। क्यों? क्योंकि काम शुरू करने का मौका था और मौका कभी किसी का इंतजार नहीं करता। और 18 साल की उम्र में यमन के एडेन चले जाते हैं। यहाँ इनके बड़े भाई पहले ही काम कर रहे थे और एडेन उस टाइम ट्रेडिंग का बड़ा हब था और यहीं से इनकी असली लर्निंग शुरू हुई। इन्होंने ए बेस एंड को में क्लर्क की नौकरी शुरू की। शुरुआत में काम सिंपल था, हिसाब किताब रखना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बेसिक तरीके समझना। लेकिन जल्दी ही इन्होंने समझ लिया कि ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये बिजनेस सीखने का असली मैदान है। एडेन में इन्होंने अलग अलग देशों के ट्रेडर्स के साथ काम करना सीखा। ये लेसन इनके आगे के फैसलों में दिखाई दिए, क्वालिटी, नेटवर्क, प्लानिंग, हर चीज में। 1958 में ये इंडिया वापस आ जाते हैं। मुंबई में हुआ इनका पहला ट्रेडिंग बिजनेस, रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। शुरुआत छोटी थी, इंडियन स्पाइसेस एक्सपोर्ट किए, पॉलिस्टर यार्न इंपोर्ट किया, लेकिन यही इनका पहला कदम था जो आगे चलकर रिलायंस इंडस्ट्री की नींव बना। और यही वक्त था जब उन्होंने जाना बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, कनेक्शंस, टाइमिंग, एग्जीक्यूशन, ये सब उतने ही जरूरी है जितना प्रोडक्ट या कैपिटल। और अब थोड़ी देर बाद हम जानेंगे कि कैसे छोटी सी कंपनी ने टेक्सटाइल में कदम रखा और वही कदम उनको बड़े बदलाव की तरफ ले गया। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी, सो स्टे विद मी।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: वेलकम अगेन, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ गीत बनी हुई हूँ। अगर आपने हमारा पिछला लिंक मिस किया है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि हमने क्या बात की है। हम बात कर रहे हैं धीरूभाई अंबानी के बारे में, इनकी लाइफ जहाँ से इन्होंने बिजनेस की तरफ अपना एक कदम बढ़ाया। और अब हम बात करेंगे धीरूभाई अंबानी के ट्रेडिंग बिजनेस की नींव इन्होंने कैसे रखी। लेकिन छोटे कदम अक्सर बड़े बदलाव की तैयारी होते हैं और अब हम उस दौर में पहुंचते हैं जब इन्होंने टेक्सटाइल में पहला कदम रखा। मुंबई में इनका ट्रेडिंग बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा था। इंडियन स्पाइसेस का एक्सपोर्ट और पॉलिस्टर का इंपोर्ट, ये शुरुआत थी। लेकिन धीरूभाई ने देखा कि रियल पोटेंशियल टेक्सटाइल में है। ये कोई अचानक डिसीजन नहीं था, इन्होंने मार्केट देखा, समझा और एक क्लियर स्ट्रेटेजी बनाई। स्मॉल स्केल से शुरू किया, सप्लायर्स और बायर्स के साथ भरोसा बनाया। स्लोली इन्होंने टेक्सटाइल ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में कदम रखा। ये टाइम इनके लिए लर्निंग और एक्सपेरिमेंटेशन का भी था। क्वालिटी पर फोकस, प्रोडक्शन प्रोसेस को समझना और टाइमिंग, सब कुछ उनका खुद का एक्सपीरियंस था। टेक्सटाइल सेक्टर में कदम रखते ही इन्होंने महसूस किया कि बिजनेस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि रिलेशनशिप्स, क्रेडिबिलिटी और एग्जीक्यूशन का खेल भी है। धीरे धीरे इनका बिजनेस एक्सपेंड हुआ, छोटी छोटी डील्स, छोटी छोटे फैक्ट्रीज और यही छोटी छोटी जीतें धीरे धीरे बड़े एम्पायर की नींव बन गई। और यही वो वक्त था जब इन्होंने जाना कि विजन और पेशेंस दोनों साथ चलेंगे तो ग्रोथ सस्टेनेबल होगी। और अगला हिस्सा ये बताएगा कैसे रिलायंस ने टेक्सटाइल से आगे बढ़कर इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल अपनाया और धीरे धीरे भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर में बदल गया। तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि कहानी अभी और भी बड़ा मोड़ लेने वाली है।
1: A plate is a myth when the rent is due, but hunger is home. It hurts straight in the ribs when I suffer alone. My stomach be yelling louder than my prayers at night. My mind telling me to quit, I might take the advice. Mama prayed for the light while I'm restraining the spark. Pops worked through the dark, but now I'm breaking his heart. I sense the disappointment in the words they utter. Teardrops that weigh tons come from hurting mothers. Hate what I see in the mirror, I'm the cause for the shame. Reflections on my failures always calling my name. Metal shackles are the only inheritance of the firstborn. Add to the trauma, so I carry the curse on. Masking the emptiness, my smile is a prop, just like another lifeless attire that I rock. My girl walked away, said rapping ain't a job. Get a life, I'd never make it, so I don't fit the plot.

वेलकम अगेन, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड। और अब हम उस दौर में हैं जब धीरू भाई अंबानी का विजन बड़ा रूप लेने लगा। टेक्सटाइल सेक्टर में कदम रखने के बाद इन्होंने समझा कि ग्रोथ सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रह सकती, इन्हें एक ऐसा मॉडल चाहिए था जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड हो, यानी रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट सब कुछ उनके कंट्रोल में हो। यह आसान नहीं था, चैलेंजेस हर तरफ थे, सप्लायर्स, क्वालिटी, लॉजिस्टिक, लेकिन धीरू भाई ने अपनी सीख और इंट्यूशंस के साथ हर हर्डल को हैंडल किया। स्लोली इनका बिजनेस एक्सपेंड हुआ। स्मॉल फैक्ट्री से शुरू करके इन्होंने बड़े प्लान्स बनवाए, प्रोडक्शन लाइन सेटअप की और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया। और ये सिर्फ नंबर्स का खेल तो नहीं था, ये स्ट्रेटेजी, एग्जीक्यूशन, विजन का खेल था। इन्होंने मार्केट्स की नीड को समझा, टाइमिंग परफेक्ट की और हर अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज अप्रोच की वजह से आज एक इंडस्ट्रियल जायंट बन गया है। टेक्सटाइल से शुरू होकर पेट्रोकेमिकल्स, एनर्जी, टेलीकॉम, हर सेक्टर में इन्होंने अपने कदम रखे। ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है, ये विजन, हार्ड वर्क और रिस्क टेकिंग की कहानी है। धीरू भाई अंबानी ने दिखाया कि अगर सही समय पर सही कदम उठाया जाए तो छोटी शुरुआत भी दुनिया बदल सकती है। और ये कहानी हमें ये सिखाती है, बड़े सपने, छोटी शुरुआत, यही है असली सक्सेस। और आप बताइए कि कैसी लगी आपको आज की कहानी। मैं मिलूंगी आपसे कल, जहां ढेर सारी बातें करूंगी किसी नई कहानी के साथ। आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके, कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: हेलो, हेलो।

0: जान पाए।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
3: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
4: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
1: तुम्हें देखो ना ये क्या हो गया।
0: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन, मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
1: तुम्हें देखो ना।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारो।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारो।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो कह रहा था बस से उतरो और आगे बढ़ो। मुंह उठा के आगे बढ़ना था। अब मैं चली तुम बोलते रहो।

0: अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। सर, आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
3: जमाना बीता चेहरे बदले मगर आवाज वही पुरानी, रात बाकी बात बाकी में सुनते रहिए बातें।

0: कुछ रिश्ते होते हैं जो डायरी में लिखे जाते हैं और कुछ फोन के ड्राफ्ट मैसेज में सेव हो जाते हैं, जो ना कभी भेजे जाते हैं और ना ही कभी फोन से डिलीट हो पाते हैं।
1: क्यों फूलों के खिले खिले
2: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी एक कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
3: है फिर क्यों आंखों में नमी, क्यों मैं रोता हूं।
2: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन, मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
4: जब HR 51 की गाड़ियाँ दिखें तो समझ जाना ये है हरियाणा का फरीदाबाद शहर पुराना, और जब बैठो इन गाड़ियों में तो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 ही।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

सुबह की नींद हो या शाम की थकान, एक चीज ही है इनका इलाज, चाय। पर आज बात सिर्फ चाय की नहीं, बात है कुल्लड़ वाली चाय की। शहर बदले, लोग बदले, वक्त भी गुजर गया, पर कुल्लड़ वाली चाय का जादू आज भी वहीं रह गया।

89.6 FM पर मैं हूँ आरजी अंजलि और शो लेकर आ गई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज बात करने वाले हैं कुल्हड़ वाली चाय की। कभी सोचा है जो चाय आज हम रोज पीते हैं वो सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, एक सफर है। वो कहा है कि एक कप चाय और दो लम्हे सुकून की, बस इतनी सी ख्वाहिश होती है इंसान की। लेकिन ये चाय हमेशा से इंडिया की थी, और ये कुल्हड़ वाली चाय क्या ये सिर्फ टेस्ट का खेल है या मिट्टी से जुड़ी एक पुरानी कहानी की? तो चलिए बात करते हैं आज कुल्हड़ वाली चाय की। ये कहानी शुरू होती है चाइना से। हाँ, चाय की पहली पत्तियां चाइना के इंपीरियल्स ने पीनी शुरू की थी एक हर्बल मेडिसिन के तौर पर। लेजेंड्स कहते हैं कि इसके पीछे के एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो एक चाइनीज इंपीरियर के उबलते पानी में गलती से चाय की पत्ती आ गिरे। मानो तो ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन बेहद यादगार। फिर कहा है कि गलती से जो मिल जाए वो अक्सर नसीब होता है। चाय भी शायद इसी किस्मत का हिस्सा बन गई। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इंडिया में चाय आई कैसे? इस पहेली को सुलझाने के लिए बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम बेमिसाल, तुम लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवां। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे अंजलि, और आज बात कर रहे हैं कुल्हड़ वाली चाय की। अब सवाल यह है कि चाय इंडिया कैसे आई? तो कहा जाता है कि 1800 के आसपास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना से चाय खरीद खरीद कर थक चुकी थी। फिर सल्यूशन क्या था? फिर सॉल्यूशन के लिए चाय को इंडिया में उगाना ही शुरू कर दिया। धीरे धीरे असम के जंगलों में वाइट टी प्लांट्स मिले, और वहीं से शुरू हुआ इंडिया की चाय का सफर। पर यहाँ भी एक ट्विस्ट था। लेकिन वो ट्विस्ट था क्या? पहले चाय सिर्फ अंग्रेज पीते थे। इंडियन लोगों को चाय पसंद ही नहीं थी। वो कहा है कि जो चीज आज अपनी लगती है कभी पराई भी थी, पर जब अपनी बनी तो पूरे दिल से बन गई। और बस फिर क्या था? फिर देसी दिमाग चला, दूध मिला, अदरक इलायची लौंग पत्ती डाली, और चाय बन गई अपनी वाली चाय। ये सिर्फ ड्रिंक नहीं है, ये आदत बनी, ये बहाना बनी, ये रिश्तों का ब्रिज बन गई। वो कहा है कि अदरक सी तीखी, इलायची सी मीठी, चाय ने हर थकी हुई जिंदगी को फिर से जीना सिखा दिया। चाय की बात तो कर ली, लेकिन चाय को जो खास बनाता है वो है कुल्हड़। आखिर अब इंडिया में कुल्हड़ वाली चाय का क्रेज क्यों हुआ? ये जानने के लिए बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।
2: सोचना है जाना कहां, जाए वहीं ले जाए जहां।
1: तो थोड़ा फोन डाउन कीजिए और जिंदगी खुलकर जीना शुरू कीजिए। रेडियो महारानी कहता है, जिंदगी ऑनलाइन नहीं दिल से जी जाती है।

0: ये जाए।
1: अब बात करते हैं कुल्लड़ के सफर की, वही कुल्लड़ वाली चाय जो आज एक इमोशन जगाती है। रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर मैं हूँ आरजी अंशली आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा। कुल्हड़ मिट्टी का बना हुआ, हर सिप के साथ एक खुशबू देता हुआ। पुराने जमाने में चाय शीशे या कप में नहीं कुल्हड़ में ही पीने का रिवाज था। क्यों? क्योंकि कुल्हड़ केमिकल फ्री होता था, चाय का असली टेस्ट इनहेंस करता था और इतना ही नहीं हर कुल्हड़ एक बार एक मेहमान होता था। यूज किया और फिर मिट्टी में वापस मिला दिया, इतनी सी कहानी थी कुल्हड़ की। तो वो कहा है कि ना झूठी चमक ना शीशे का घमंड, कुल्हड़ वाली चाय जैसी होती है सीधी साफ और जमीन से जुड़ी हुई है।

बात है कुल्लड़ वाली चाय की, लेकिन क्या खास बनाता है इस चाय को, इस बारे में ही बात करेंगे। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।

0: मिट्टी से बनी है, मिट्टी में मिल जाएगी, कुल्लड़ वाली चाय हर याद में बस जाएगी। अब बात करते हैं कुल्लड़ वाली चाय का इमोशन। 89.6 FM पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आरजी अंजली आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा। कुल्लड़ वाली चाय क्लासी नहीं होती पर रियल होती है। स्टेशन के बेंच पर, कॉलेज के बाहर, शाम के अंधेरे में या बारिश के मौसम में कुल्लड़ वाली चाय कन्वर्सेशन स्टार्टर होती है। वो कहा है कि कुल्लड़ की चाय और पुरानी बातें, दोनों में शोर कम और एहसास ज्यादा होता है।
1: उसे जगमगाते नस में

0: दूजे के सहारे।
1: और सिर्फ इतना ही नहीं, कई चीजें हैं जो खास बनाती है कुल्लड़ वाली चाय को। साइंस भी मानता है कुल्लड़ वाली चाय का जादू। कुल्लड़ की मिट्टी वाली चाय एसिडिटी बैलेंस करती है, और इतना ही नहीं, ये रियल टेस्ट को इनहेंस करती है, इसलिए चाय ज्यादा फ्लेवरफुल हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, कुल्लड़ वाली चाय में यादें घुली होती हैं। वो कहा है कि कुल्लड़ टूट जाता है पर निशान रह जाता है, बिल्कुल उन चाय के पलों जैसे जो बीत जाते हैं पर याद बन जाते हैं। कुल्लड़ की और भी बहुत सारी खास बातें हैं। कुल्लड़ इको फ्रेंडली होता है, हर कुल्लड़ एक बार यूज होता है सिर्फ। प्लास्टिक या ग्लास से ज्यादा हेल्दी माना जाता है, और अपने नॉर्थ इंडिया में तो कुल्लड़ वाली चाय नॉस्टैल्जिया है। और सबसे बड़ी बात, कुल्लड़ वाली चाय याद दिलाती है कि हम शहर में रहकर भी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो बस अगली बार जब चाय पियो तो कप नहीं।

तो अब से जब भी चाय पीनी हो तो कुल्हड़ का इस्तेमाल करना, उस मिट्टी को महसूस करना जहाँ से कुल्हड़ आया, उन हाथों को याद करना जिन्होंने पहली बार चाय उबाली, क्योंकि कुल्हड़ वाली चाय सिर्फ गर्म नहीं होती, ये तो दिल को सेक लेती है। वो कहा है कि चाय हो तो कुल्हड़ वाली हो, कहानी हो तो दिल वाली हो। आज के हमारे कल्चर कारवा सफर में हमने जानी कुल्हड़ वाली चाय की कहानी। इस सफर में फिर मिलेंगे कल एक नई कहानी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, सुनते रहिए कल्चर कारवा। दिस इज आरजी अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

शाम ढल रही है और वीकेंड अपनी फुल वाइब में आ चुका है और शायद आप कहीं ड्राइव पे हो या अपनी बालकनी में चाय के साथ थोड़ा मी टाइम एंजॉय कर रहे हो। ऐसे ही एक परफेक्ट मोमेंट के लिए लेकर आई हूँ मैं एक ऐसा शो जहाँ गाने सिर्फ सुनाई नहीं देते बल्कि महसूस होते हैं और उनके पीछे छुपी कहानियाँ दिल तक पहुँच जाती है। हेलो माय ब्यूटीफुल लिसनर्स, आप सुन रहे हो म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूं पलक आप सभी के साथ और आज इस एक घंटे में हम खोलने वाले हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे राज जो स्क्रीन पर नहीं दिखते पर हर गाने के पीछे छुप कर बैठे होते हैं। तो रेडी हो जाओ क्योंकि आज हर सॉन्ग के साथ एक नई स्टोरी अनलॉक होगी। दिस इज नॉट जस्ट म्यूजिक, दिस इज म्यूजिकल डायरी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं एक ऐसी फिल्म के साथ जहां प्यार भी है और जुनून भी, और ये मूवी और कोई नहीं बल्कि मलंग है।

अगर इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो दिशा पटनी का रोल पहले कृति सैनन को ऑफर हुआ था, लेकिन डेट्स इशू और डेस्टिनी ने दिशा को इस जर्नी का हिस्सा बना दिया। अब उस कल मास्क तो आपको याद ही होगा जो आदित्य रॉय कपूर पूरी फिल्म में पहनते हैं। वो इतना पॉपुलर हो गया कि उन्होंने उसे रियल लाइफ में भी पब्लिक प्लेसेस पर पहनकर प्रमोशन करना चालू कर दिया था। तो चलिए इस मूवी की एक हिडन हिंट की बात करते हैं। शायद आपने नोटिस ना करा हो, लेकिन लास्ट में एक फोन कॉल आता है और उसमें होती है एक फीमेल वॉइस। क्या आप सोच सकते हो वो फीमेल वॉइस किसकी हो सकती है? तो चलिए फिर इस सस्पेंस को करते हैं खत्म। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर की थी, जिसमें वो एक और मर्डर के बारे में बताती हैं। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी लगाई जा सकती है कि मलंग 2 भी आ सकती है। और इस मूवी की इतनी बात हो ही गई है तो सुनाती हूँ आपको इसी मूवी का एक हिट गाना हम रहा। और इस गाने के बाद मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी मूवी के बारे में जहाँ एक ही पर्दे पर देखे गए एक से ज्यादा स्टार्स। कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। तब तक के लिए ये म्यूजिक आपके लिए।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

0: 89.6 FM पर मैं लौट आई हूँ आपकी अपनी पलक म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो के साथ। और जैसा कि मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि एक ही पर्दे पर देखे गए एक से ज्यादा स्टार्स, कौन सी थी ये मूवी? जी हाँ, इस मूवी का नाम है ओम शांति ओम।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आप सबने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। थैंक्स वेरी मच। आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड।
0: अच्छा, इस मूवी का आइकॉनिक गाना था दिल में मेरे है दर्द डिस्को दर्द डिस्को। सोचिए SRK का जो लुक हमें देखने को मिला, यानी कि वो हैंडसम लुक, वो चार्मिंग लुक जो हम सभी ने स्क्रीन पर देखा, उसके लिए SRK ने कितनी मेहनत करी होगी। मतलब सोच सकते हैं आप कि एक गाने के लिए कोई 3 महीने तक इंटेंस वर्कआउट कर सकता है। क्या आप में है इतनी डेडिकेशन? मेरे में तो नहीं है। देखो, और जैसा कि मैंने आपको हिंट दिया ही था कि एक ही पर्दे पर देखने को मिले इतने सारे स्टार्स, वो गाना तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा है। जी हाँ, वो गाना था बस दीवानगी दीवानगी दीवानगी है। इस गाने में ही देखे गए थे 31 स्टार्स। और इतना ही नहीं, इन सबको इनवाइट करने के लिए प्रॉपरली गिफ्ट हैम्पर्स बनाए गए थे। तो अगर मुझे भी कोई ऐसे ही गिफ्ट हैम्पर्स के साथ इनवाइट करना चाहे तो मैं खुशी खुशी आ सकती हूँ। साथ ही साथ अगर हम इसकी शूटिंग की बात करें तो लोग अपना शूट खत्म करके घर ही नहीं जाया करते थे, बल्कि वहीं पर चिल करा करते थे। एनवायरनमेंट इतना चिल और कूल बना दिया था कि लोगों को घर जाने का ही मन नहीं करता था। ऐसा ही ऑफिस में भी होना चाहिए। खैर, इसी गाने में हमें बहुत सारी गाड़ियां देखने को मिली थी, और वो गाड़ियां और किसी की नहीं बल्कि राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की थी। मतलब एक ही गाने में प्रॉपर नॉस्टैल्जिया देखने को मिला है। और अब इस मूवी की इतनी बात हो ही रही है तो सुनते हैं इसी मूवी का वो रोमांटिक आइकॉनिक सॉन्ग, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। और इसी गाने के बाद हम बात करेंगे एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जिसने हम सभी लड़कियों को सिखाया कि हम किसी के फेवरेट बने या ना बने, लेकिन खुद का फेवरेट बनना बहुत जरूरी है। कौन थी ये बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड।

0: म्यूजिकल डायरीज के एक और चैप्टर के साथ फिर से लौट आई हूँ मैं पलक आप सभी के पास, और साथ ही साथ लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक सवाल। और ये सवाल ये है कि क्या आप भी अपने फेवरेट हो? क्योंकि अब मैं जिस मूवी के बारे में आप सभी को बताने वाली हूँ उसके बाद फॉर श्योर आप सबको खुद से प्यार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब एंट्री हो रही है गीत की फ्रॉम जब वी मेट।
1: शट अप, चमाट मारूंगी ज्यादा बकवास किया तो।
0: अच्छा, आप सभी ने इस मूवी में ये डायलॉग तो पक्का सुना है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो चलिए जानते हैं कि इस मूवी में करीना कपूर की एंट्री कैसी हुई। हुआ यूँ था कि करीना कपूर वॉज ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस, इवन जब इम्तियाज अली उनके खुद भी फैन नहीं थे, लेकिन उन्हें बस इतना पता था कि ये लड़की गीत का रोल बहुत अच्छे से प्ले कर सकती है। लेकिन करीना की जर्नी इतनी सिंपल नहीं थी, क्योंकि फिल्म इनिशियली बॉबी डियोल के साथ स्टार्ट हुई थी। और अगर हम इस मूवी के टाइटल की बात करें तो जब वी मेट इसका फाइनल टाइटल था ही नहीं। इससे पहले कई सारे ऐसे टाइटल आए जो कि रिजेक्ट किए गए, पंजाबी मेल और काफी और भी बहुत टाइटल्स थे जो कि रिजेक्ट किए गए, और फाइनली ऑडियंस वोट से ये टाइटल डिसाइड हुआ जब वी मेट। इस मूवी में बहुत सारे गाने हमने सुने हैं, लेकिन इसका ये इश्क है ये एक अडेप्टेड वर्जन है एक इंटरनेशनल ट्रैक का, मतलब ग्लोबल टच है इस पूरी मूवी में। अब इस मूवी की इतनी बात हो ही रही है तो सुनते हैं इस मूवी का वो गाना जो हर किसी ने किसी ना किसी को डेडिकेट किया है, और वो गाना है तुमसे ही दिन होता है। और इस गाने के बाद हम बात करेंगे एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में जो सीधा आप सभी के दिल तक छू जाएगी। कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में, स्टे ट्यून्ड।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।
0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो और मैं हूं पलक आप सभी के साथ। जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने आप सभी को बताया था कि एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में बात करेंगे जो आप सभी के दिल तक जाती है और वो मूवी है रब ने बना दी जोड़ी।
1: उसको मुझसे लव करा दे यार, कुछ ऐसा कर दे कि मैं उसकी लाइफ का हीरो बन जाऊं, जैसे जैसे वो फिल्मों के हीरो को देखकर खुश हो जाती है, ऐसे मुझे भी देखकर हीरो अपने हाथों से कुछ जादू कर दे बॉबी, लव स्टोरी बना दे यारा।
0: इसका टाइटल ही इतना प्यारा है, हम सभी ने ये मूवी तो पक्का देखी ही है, तो मूवी तो हम सभी को पता है कि ये मूवी भी इस टाइटल की तरह ही प्यारी थी। और इसमें ये जो गाना है कि हौले हौले हो जाएगा प्यार बलिए, जैसा कि ये गाना है इसकी शूटिंग उसके बिल्कुल अपोजिट की गई थी। क्यों? क्योंकि ये गाना सिर्फ 3 टेक्स में शूट हुआ और SRK ने इस गाने में अपने डांस स्टेप खुद से ही इम्प्रोवाइज किए थे। मतलब वो इतने टैलेंटेड हैं कि उन्हें किसी की भी नीड नहीं पड़ी कि वो किसी से डांस स्टेप सीखे। और इसी मूवी में आपने एक और गाना सुना होगा, फिर मिलेंगे चलते चलते, वो गाना एक्चुअली एक ट्रिब्यूट था लेजेंड्स को और वो लेजेंड्स थे राज कपूर, शम्मी कपूर, देव आनंद और राजेश खन्ना। और साथ ही साथ अगर इसकी कास्टिंग की बात की जाए तो अनुष्का शर्मा की ये डेब्यूट मूवी थी, लेकिन इतनी आसानी से इनको भी ये मूवी नहीं मिली थी। इनकी कास्टिंग से पहले सोनम कपूर और गुरप्रीत संधू तक कंसिडर हुई थी, लेकिन कहा जाता है ना कि डेस्टिनी आपको अपनी मंजिल तक लेकर ही जाती है, तो इस मूवी में वैसा ही हुआ था। डेस्टिनी ने अनुष्का को ही चूज किया और इस फिल्म से हम सभी ये सीखते हैं कि प्यार लाउड नहीं होता, रियल होता है। अच्छा हम जिससे सच्चा प्यार करते हैं, यानी कि जिससे भी हमें ट्रू लव होता है, कहते हैं कि हमें उसमें ही रब दिखने लगता है। तो इस मूवी की इतनी बात हो ही रही है तो सुनाती हूँ आपको यही गाना, तुझमें रब दिखता है। और इसी गाने के साथ वक्त हो गया है मेरे जाने का, मुझे दीजिए आप सभी इजाजत। 1 घंटा, इतनी सारी कहानियाँ, इतने सारे गाने और उन सबके बीच कहीं ना कहीं आपके अपने इमोशंस भी कनेक्ट हो गए होंगे। यही तो मैजिक है म्यूजिक का, जो सिर्फ सुनाई नहीं देता, याद भी रह जाता है। आज के लिए बस इतना ही। ये था म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो, जहाँ हर गाने के पीछे एक सीक्रेट था और हर सीक्रेट के पीछे एक फीलिंग। मैं हूं पलक, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीकेंड एक और नई डायरी, नए गाने और नए राजों के साथ। तब तक अपनी लाइफ की प्लेलिस्ट

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा सुरेंद्र, कितना भी कर ले घर का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।
3: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था,
4: मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिश।
3: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
4: प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है।
3: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
4: आवारा हूँ आवारा हूँ।
3: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
5: हाँ तो अर्ज किया है।
6: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
5: कर रहे हैं आप, सुनो तो
6: इरशाद।
5: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
6: तुम्हारे नंबर पे?
5: हाँ जी।
6: अच्छा
5: और उन्होंने पूछा क्या?
6: क्या पूछा?
5: हाँ पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
6: क्या बात कर रहे हो?
5: हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
6: अच्छा
5: हमारी लाइफ में एक खटारा सी साइकिल है वो भी बेकार है।
6: बिल्कुल तुम्हारी तरह। और पागल तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
5: नहीं नहीं रेंट पे ईएमआई पे।
6: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
5: इज्जत का फालूदा कर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारो।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारो।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: यार वो कह रहा था बस से उतरो और आगे बढ़ो। मुंह उठा के आगे बढ़ना था। अब मैं चली तुम बोलते रहो।
1: सुनो सुनो हेलो टिकट कटवा लेना।
2: जो हर तूफान हर बारिश को चीरते हुए पहुंचती है आपके पास वो है रेडियो महारानी 89.6 एफएम की आवाज। जी हाँ आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
1: कुछ हटके।
3: हेलो हाय यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके शो है आज दिल शायराना और आज मेरे साथ स्टूडियो में है अर्चना पांड्या जी जो कि पोइटेस हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका
4: और साथ ही साथ मौजूद है वंदना रानी दयाल जी। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: तो ये कविता लिखने का शौक ये कब आपको हुआ, कहाँ से इंस्पिरेशन ली, किसको लिखते हुए देखा या सुना कि आपको लगा कि अब तो मुझे भी स्टार्ट करना चाहिए?
5: मैं 2018 से लेखन में आई
3: जी
5: और मेरी मासी लिखती हैं, वो बहुत बड़ी उपन्यासकार हैं
3: जी,
5: तो बस उनको देख के थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन हुई कि मैं भी लिखूं। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया
3: जी,
5: तो बस उन्हीं का थोड़ा सा प्रोत्साहन नाम मिला, उसी से लिखना शुरू।
3: जैसे हमने बचपन में मुंशी प्रेमचंद जी को बहुत ज्यादा पढ़ा है, सुना है, तो उनसे या उस दौर के जो भी राइटर्स हैं उनमें से कौन ज्यादा पसंद है?
5: क्योंकि मैं इलाहाबाद की हूँ तो इसलिए महादेव वर्मा, निराला
3: जी
5: इन लोग को बचपन से ही पढ़ा।
3: घर
5: में भी ऐसा माहौल था कि पढ़ा, मतलब साहित्यकारों को पढ़ना, मेरे पिताजी बहुत पढ़ने में विश्वास रखते थे, टीचर थे, तो बस ऐसे ही। और इलाहाबाद में तो पता ही है कि साहित्यकारों का
3: एग्जैक्टली
5: पूरा जमावड़ा है वहाँ पे, तो बस ऐसे थोड़ा सा
3: जी
5: पढ़ने का और लिखने का
3: शौक आपको वहाँ से हुआ
4: जी। वंदना मैम आपके पास आते हैं तो आपसे है अगला सवाल
3: कि कहाँ से लिखने का शौक हुआ, क्या वो चीज थी जो पढ़ी और आपको लगा कि अब तो मुझे भी पोएट्री की तरफ रुख करना चाहिए?
6: लिखने की ओर झुकाव तो हमारा बचपन से ही हो गया था, क्योंकि तब मैंने खत लिखना शुरू किया था
3: जी,
6: और वो खत मैं अपने पापा के नाम लिखती थी क्योंकि उस समय दूर रहते थे अपने पीएचडी के लिए। और जब मैं स्कूल में आई तब मेरी हिंदी टीचर्स ने हमारे लिए, हमारे पीछे इतनी मेहनत की कि लिटरेचर क्या होता है हमारी समझ में बहुत यंग एज में आ गया
3: जी।
6: और तब से हमने प्रेमचंद, शिवानी, शरद चंद्र, निराला, महादेव वर्मा, इन सबको बहुत पढ़ा और धीरे धीरे साहित्य अपने अंदर रिश्ता बसता चला गया
3: जी। क्या बात है।
4: अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है आज दिल शायराना।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है आज दिल शायराना। मैं आपके साथ गीत हूँ और हम आज दो कवित्रियों से बात कर रहे हैं जिनकी रचनाएं बहुत खूबसूरत है। तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो जैसे हमने मुंशी प्रेमचंद जी की बात यहाँ पर की है, तो बेसिकली वो अपनी कविताओं में कम्युनिटी की बात करते थे या समाज, जो समाज हमारा देश है उसकी बात करते थे। तो आज के वक्त में क्या लगता है, कविताओं में समाज की बात हो रही है या सिर्फ एक फेम के लिए कविताएं लिखी जा रही हैं?
1: नहीं, मुझे तो लगता है कि आजकल लोग मतलब अपने लिए लिखते हैं, अपनी अपनी जो कहते हैं ना, अपनी सफलता के लिए या जो अपने लिए लिख रहे हैं।
0: अच्छा,
1: पहले के जो राइटर्स थे, समाज में जो चल रहा है वो उनके लेखन में दिखता था
0: जी,
1: उस समय के जो भी हालात रहते होंगे, लेकिन आज वो नहीं है। आज जो जिसका अपने मन करता है वैसे ही लिखता है। और साहित्य का आजकल मैं समझती हूँ कि थोड़ा गिरावट जरूर आ रही है।
0: और ये गिरावट क्यों आई है?
1: गिरावट इसलिए आई है कि अब सब लोग ही लिखना चाहते हैं।
0: अच्छा जी।
1: बहुत लोग लिखना चाहते हैं, कोई पढ़ना नहीं चाहता। मैं समझती हूँ लिखने, अगर आप पढ़ते भी हो ना तो भी आप साहित्य की सेवा करते हैं।
0: जैसे आपने कहा अभी यहाँ पर कि अपने लिए लिख रहे हैं, बट मुझे लगता है कि समाज के लिए, बिकॉज जब कोई एक राइटर कुछ लिख देता है और लोग उसे पढ़ते हैं तो बहुत प्रभाव छोड़ कर जाता है। और हमारे समाज में काफी सुधार भी हुए हैं जो पहले हमारे राइटर्स रहे हैं, जो उन्होंने लिखा है और लोगों ने पढ़ा है। तो आपको नहीं लगता कि शायद ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि राइटर्स को, पोइट्स को ये ख्याल रखना चाहिए कि वो समाज के हित में या देश के हित में भी बहुत ज्यादा लिखने पर जोर डालें?
1: कहते हैं ना, कलम में बहुत ताकत होती है, तलवार से भी ज्यादा कलम में ताकत होती
0: है। जी जी।
1: तो वही चीज हम लोग शायद अब भूलते जा रहे हैं कि कलम में बहुत ताकत होती है। हम सच नहीं लिखते, हम अब जो जिससे हमें मतलब थोड़ा फायदा होता है ना, हम वही चीज लिखते हैं। हम सच
0: थोड़ा दबा दे,
1: ढक देते हैं।
0: हाँ,
1: वो चीज है
0: जी जी। तो कहते हैं कि हर एक राइटर या हर एक पोइट का ना एक मूड होता है, एक थीम लाइन होती है। तो आपकी वो कौन सी विधा है जिसमें आप सबसे ज्यादा लिखती हैं और बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं खुद को?
2: मुझे गजलें लिखना ज्यादा पसंद है।
0: गजलें?
2: जी
0: जी।
2: मैं लिखना कुछ भी शुरू करूं, मैं अंत गजल की तरफ मुड़ के ही करती हूं।
0: जी, क्योंकि आप उसमें बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं।
2: कंफर्टेबल हूं, और उसमें जो एक फ्लेवर है ना गजल का, विरह मोहब्बत की बातें और बरसात की बातें और ये खूबसूरत चीजें लिखना मुझे अच्छा लगता है। मैं उसको भी महसूसना चाहती हूँ, चाहती हूँ लोग भी महसूस करें।
0: जी, जैसे आपने कहा कि गजलें इसलिए लिखना पसंद है क्योंकि उसमें विरह मोहब्बत की बातें होती हैं, और ऐसा कहीं सुना भी है, मैं नहीं जानती कि इस बात में कितना फैक्ट है, लेकिन आपसे ही जान लेते हैं। चलिए, कहते हैं कि जिसका दिल टूटता है वो वही बहुत अच्छा कवि बनता है, क्या ये बात सही है?
2: हाँ, आपने सही सुना है। और हिरण के भी जो मुँह से शायद आह निकली थी, तो कहते हैं कि गजल उसी से बनी।
0: अच्छा जी।
2: पर जी, पर ऐसा नहीं है, हम जब किसी की जिंदगी में उतरते हैं या किसी के बहुत करीब होते हैं
0: जी,
2: तो उसकी टूटन का एहसास भी, खास करके जब हम कवि दिमाग वाले इंसान हैं, तो उसका एहसास भी हम बड़ी जल्दी कर लेते हैं। कहते हैं पर काया प्रवेश, इसको कहते हैं
0: जी,
2: वो हम बड़ी जल्दी कर लेते हैं। तो अपने साथ वो हुआ हो या ना हुआ हो, हम उसको लिख पाते हैं। और कई बार लोग गलत फहमी में आते हैं कि अच्छा ऐसा लिखा है, इसका मतलब ऐसा हुआ होगा। नहीं, नॉट एग्जैक्टली, जरूरी नहीं है ऐसा।
0: आपने कहीं कुछ इमोशन किसी और के भी देखे होते हैं?
2: हाँ हाँ, कई बार ऐसा होता है, तो हम उसे उतारते हैं सब।
0: जी जी। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है आज दिल शायराना।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है आज दिल शायराना, और बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। मेरे साथ स्टूडियो में दो कवित्री मौजूद हैं, हम अब बात करते हैं वंदना रानी दयाल जी से। यहाँ पर हम स्टेज पोइट्री की बात कर लेते हैं, बिकॉज स्टेज पोइट्री का एक अलग ही प्रेशर होता है, और आपने बहुत सारे काव्य गोष्ठी प्रोग्राम्स डेफिनेटली दिए होंगे, तो जब लोग आपको सुनते हैं और रिएक्ट भी करते हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस या उनकी जो तालियां हैं वो एक पोइट की क्रिएटिविटी को खत्म कर देती हैं? आपको ऐसा फील हुआ है कभी?
1: नहीं, क्रिएटिविटी को खत्म नहीं करती, बल्कि वो तो आप में जोश लाती है कि हाँ, आपने जो दो पहले मिसरे बोले उनको पसंद आए तो उन्होंने तालियां बजाई
0: जी,
1: तो ये तो अच्छी बात होती है
0: जी। यहीं से एक सवाल और है, बहुत सारी चीजें आप लिखते हैं, सारी चीजें तो नहीं होती होंगी जो आप प्रेजेंट करते हैं सबके सामने, तो वो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये लोगों तक पहुंचाना है और ये खुद के लिए छिपा कर रखना है, ये कैसे डिसाइड करते हैं आप?
1: देखिए, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे कि मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, तो मुझे अपने अंदर के जो ख्यालात हैं, जो जज्बात हैं, मैं उसे पब्लिक करना पसंद नहीं करती
0: जी।
1: और कई बार ऐसा होता है कि मैं उसमें थोड़ा सा लाग लपेट करके, ऊपर नीचे करके, मैं उसे कविता में उतारती जरूर हूँ, पर जेरोक्स कॉपी नहीं करती अपने मन का।
0: जी, जेरोक्स कॉपी की बात हो गई है, तो हम एक शायर के बारे में जरूर बात करेंगे, जॉन एलिया साहब। क्योंकि लोग ना उनको बहुत ज्यादा सुन रहे हैं इस टाइम पर, बहुत ज्यादा वायरल हैं, शायद लोगों ने उनके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा भी नहीं है, लेकिन उनकी कोई एक या दो गजल कोई सुनी है कहीं, कुछ पढ़ा है?
1: पढ़ा तो बहुत है
0: जी, जी।
1: लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि उनका जो लहजा है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा यूनिक लहजा है, और बड़े दम खम से वो बात करते हैं।

0: पहले बड़े धीरे से 4-5 बार एक ही शेर को बोलते रहते हैं, उसके बाद एक बड़ा तगड़ा सा शेर सी लाइंस पीछे से आती है, तो वो उनका खास अंदाज है जो एक बहुत ही मामूली चीज को ही बहुत
1: मेरा सवाल यहाँ पर ये था कि लोग उनको कॉपी करने की बहुत कोशिश करते हैं, तो ये जो जेरोक्स का टाइम आ गया है, तो लोग जो कॉपी करने का सोच रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे?
0: मैं इस बात से बहुत डिसअपॉइंट होती हूँ कि लोग किसी को कॉपी करना चाहते हैं। देखिए, नकल के लिए अकल चाहिए होती है। कुछ लोग नकल करते हैं, पर आप ऐसे कीजिए कि आप अपना फ्लेवर उसमें जिंदा रखिए। आप जॉन एलिया नहीं बन सकते हैं, ये याद रखिए हमेशा। आप गालिब नहीं बन सकते हैं, आप उनको पढ़ के सीख के उसको अपनी शैली में उतार सकते हैं।
1: जी,
0: तो जेरोक्स बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आप उनसे सीखिए, अपने लहजे में लिखिए।
1: जी, अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है आज दिल शायराना।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: टियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है आज दिल शायराना। मेरे साथ यहाँ पर दो कवित्री मौजूद हैं, अर्चना पांड्या जी और वंदना रानी दयाल जी। तो अर्चना मैम आपके पास आते हैं, अगला सवाल आपके लिए है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो अभी थोड़ी सी ज्यादा हाईलाइट है, जिसको ओपन माइक कहा जाता है। एक जमाना था जहाँ काव्य गोष्ठी या मंच पे जो प्रोग्राम्स होते थे कवियों के, वो थोड़े से कम होकर लोग ओपन माइक की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं। ऑल दो यंगस्टर्स इससे लिखने के लिए काफी ज्यादा खुश हैं कि उनको भी सुना जा रहा है। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं, जो काव्य गोष्ठी है वो बदल कर अब हो गई है ओपन माइक, आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं?
1: देखिए, वहाँ जैसे काव्य गोष्ठी जब होती थी तो वहाँ हम बहुत सारे लोगों को सुनते भी थे और अपना भी देते थे,
0: इनपुट देते थे।
1: लेकिन आज जो ओपन माइक में बस अपना सुन लिया और अपनी पीठ थपथपा ली, वही वाल। बाकी मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा था, काव्य गोष्ठियाँ जो होती थी और हम मिलते भी थे लोगों से, मिलना जुलना भी अब थोड़ा जैसे होता है ना, थोड़ा कम हो गया लोग अपने में। वो है
0: जी। और आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि क्या ज्यादा पसंद है आपको, ओपन माइक या काव्य गोष्ठी की तालियां, या अकेले बैठकर किसी कमरे में लिखी हुई एक सच्ची लाइन, क्या ज्यादा पसंद होगा?
1: अकेले कमरे में बैठ के सच्ची लाइन।
0: तो वो क्या सच्ची लाइन लिखी थी, क्या हम सुन सकते हैं आज आपसे?
1: जरूर
0: जी।
1: मैं एक मुक्तक सुनाऊंगी।
0: बिल्कुल।
1: मुक्तक चार लाइनों का होता है।
0: जी जी।
1: तेरी

0: बगावत हमसे करता है, तेरा होने की चाहत में बगावत हमसे करता है।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और अभी यहाँ पर वक्त है खूबसूरत से गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है आज दिल शायराना।

0: वंस अगेन वेलकम बैक यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके शो है आज दिल शायराना। मेरे साथ दो कवित्री मौजूद है स्टूडियो में, तो अब हम बढ़ते हैं वंदना रानी दयाल मैम आपके पास और अगला सवाल आपके लिए है। अगर मैं किसी भी फील्ड की बात करती हूँ, किसी आर्ट फील्ड की, जैसे हम म्यूजिक पर बात कर लेते हैं या हम डांसिंग पे बात कर लेते हैं, तो हर कोई एक मेंटोर चुनता है, देन उनसे सीखकर आगे बढ़ता है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक लिटरेचर या शायरी में पे बात करूँ, तो बहुत कम लोग हैं जो मेंटोर चुनते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ पढ़ते हैं या सुनते हैं और लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, इस फील्ड में भी एक मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है?
1: मुझे लगता है कि ये जो गुरु परंपरा वाली बात है ना, वो हर जगह सही है। आप भक्ति की ओर जाइए, आप ज्ञान की ओर जाइए, आप कहीं भी जाइए, अगर आपका एक गुरु है तो आपको वो दिशा देगा। और बिना दिशा के आप भटके हुए इंसान है। जिस इंसान को दिशा मिल गई है वो आपसे बेहतर करेगा और जल्दी मंजिल की ओर पहुंचेगा।
0: जी, क्या बात है। अब बहुत सारे लोग लिखते हैं लेकिन हर कोई उस पोइट्री के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है। जैसे अगर मैं बात करूं बहुत ऐसे शायरों के बारे में जो बहुत खालिस लिखते हैं, जैसे फराज साहब, फैज साहब, उनकी पोइट्री समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। उनको समझ पाए उसके लिए लिटरेचर की बहुत अच्छा खासा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो एक अच्छी कविता की पहचान क्या है आपके अकॉर्डिंग?
1: पहचान ये है कि देखिए, हम लोग भी अभी कुछ लिखते हैं ना, तो कुछ उसमें ऐसे लफ्ज आते हैं जो मुझे लगता है कि ये सब नहीं समझ सकेंगे, तो मैं कैप्शन में वो डाल देती हूँ उसकी मतलब, इसका मतलब क्या है।
0: जी जी,
1: ताकि अगर कुछ ऐसे लोग पढ़ रहे हैं जिनको पता ही नहीं इसका मतलब क्या, वो कहाँ से उसका उसके मजे ले पाएगा। तो ये बात होती है। अदरवाइज कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जिस महफिल में हैं, आप देखिए यंगस्टर्स की महफिल है तो आप वैसी गजल सुनाइए। अगर थोड़े पढ़े लिखे या साहित्यिक लोग हैं तो आप उस तरह की गजल सेलेक्ट कीजिए, या अगर आप कहीं लिख के दे रहे हैं तो कैप्शन में उसके मतलब डाल दीजिए।
0: जी, क्या बात है। अब हम बात करेंगे, जैसे कि ये सवाल तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या ज्यादा पसंद है, अकेले बैठकर एक बहुत ही अच्छी लिखी हुई लाइन या ओपन माइक या काव्य गोष्ठी की तालियां?
1: देखिए, तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है।
0: और आई थिंक तालियां भी इम्पोर्टेंट है,
1: तालियां भी इम्पोर्टेंट है, अकेले बैठ के पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। ओपन माइक मैं सोचती हूँ यंगस्टर्स के लिए अभी ज्यादा अच्छा है।
0: जी,
1: क्योंकि जिनको स्टेज नहीं मिल पाया है, जिनकी पहचान नहीं है, जो यंग राइजिंग स्टार बनना चाहते हैं, उनके लिए ओपन माइक इज 100% ओके। लेकिन जिनको मंच मिल रहे हैं, वो मंच भी चाहता है, तालियां भी चाहता है।
0: जी जी,
1: और कभी अकेले में पढ़ना चाहता है, ये तो मूड की बात है। आपने शुरू में कहा था
0: ये मूड वाली बात है, यहाँ 50-50 पर चलेंगे। जी जी, तो कुछ ऐसा लिखा हो जो ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया हो और आपके दिल के भी बहुत करीब है, वो रचना आज जो यहाँ पर रखना चाहें आप?
1: अपनी लिखी हुई?
0: बिल्कुल। आप गाकर सुनाएंगी या पढ़कर?
1: आपकी नजर, एक गजल कर रही हूँ जो मैंने हाल में लिखा था।
0: जी,
1: उसको तरन्नुम में ढाला है। दीदार हमको हो जो तेरा, मसरूर होंगे हम। दीदार हमको हो जो तेरा,

0: एक बार तो हर रोज ही मर जाया करेंगे हम।
1: क्या बात है,
0: बात बिना बात न उठा।

0: रब से तुम्हें हर रोज ही मांगा करेंगे हम, बात बिना बात न रूठा करेंगे हम।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है आज दिल शायराना।

0: Once again, welcome back. You all are listening Radio Maharani 89.6 FM. कुछ हटके शो है. आज दिल शायराना मेरे साथ स्टूडियो में है वंदना रानी दयाल जी और अर्चना पांड्या जी, जो कि बहुत ही खूबसूरत कवित्री हैं. बहुत मजा आया आपसे बात करके. तो जाते जाते
1: जी,
0: हमारे लिसनर्स के लिए और उन यंग पोइट्स के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं लेकिन एग्जैक्टली उनको क्या करना है, क्या लिखना है वो नहीं पता, तो उनको क्या आप टिप्स देना चाहेंगे?
1: मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि आप बहुत सारा पढ़िए, बहुत पढ़िए, उसके बाद आप दो लाइनें लिखिए.
0: जी,
1: क्योंकि जब भी आप किसी पिच पे आते हैं और आपको वहाँ से लॉन्चिंग पैड है आपके लिए, आप वहाँ से उड़ान भरना चाहते हैं, तो पूरी तैयारी के साथ आइए.
0: जी,
1: जितने तैयारी के साथ आएंगे आपको उड़ान उतनी ऊंची मिलेगी, आपको अच्छी वाली फ्लाइट मिल जाएगी.
0: क्या बात है.
1: इसलिए पढ़िए ज्यादा. जब फिर लिखने की बात आएगी तो बहुत सारे पेपर्स में, मैगजीन्स में उनके मेल आईडी होते हैं, आप वहाँ भेजिए. धीरे धीरे आपको लोग पहचानेंगे तो बहुत सारे मंचों पे आपको खुद ही बुलाया जाएगा.
2: यंगस्टर को मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी लिखे दिल से लिखे.
0: क्या बात है. थैंक यू सो मच मैम, आप मेरे साथ जुड़ी और इतनी सारी बातें हमारे लिसनर्स तक पहुंचाई. थैंक यू अगेन
2: आपको
0: जी. और लिसनर्स, आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM. कुछ हटके, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके और मैं हूँ आपकी अपनी
1: रेट्रो वाली सपना
0: और ले आई हूँ आपका फेवरेट शो रात बाकी बात बाकी, क्योंकि बातें तो होती ही रहती हैं जब मिल बैठते हैं तीन यार, आप मैं और आज का हमारा बॉलीवुड स्टार। वैसे आज ना मैं अपने टाइम में वापस चली गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे हाथ आज एक टाइम मशीन लग गई है और मैं वापस पहुंच गई हूँ 90s के एरा में। और जो भी 90s की जनरेशन है ना वो आज मुझसे एग्री करेगी, क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे वर्सटाइल सिंगर की जिन्होंने उस वक्त के सभी सुपरस्टार्स को अपनी आवाज दी है। और अगर किसी स्टार के गाने में उनकी आवाज नहीं होती थी तो ऐसा लगता था जैसे फिल्म ही इनकम्प्लीट हो गई है। कितनी बार तो ऐसा भी हुआ कि म्यूजिकल चार्ट बस्टर में टॉप 10 गानों में सिर्फ उन्हीं के गाने सुनाई देते थे। ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, अक्षय कुमार, अजय देवगन, गोविंदा, शाहिद कपूर, आयुष्मान खुराना, रणबीर सिंह और न जाने ऐसे कितने ही एक्टर्स को अपनी आवाज देकर इन्होंने पॉपुलर कर दिया है। बैक टू बैक 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स लेकर इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। खैर, आज मैं किसकी जादुई आवाज की बात करने जा रही हूँ ये अभी आपको नहीं बता रही हूँ, वैसे आपको पता चल चुका है। और अगर आपको पता चल ही गया है तो फोन उठाइए और मुझे बताइए कि आज मैं किसकी बात कर रही हूँ। नंबर है मेरा 9654896896। मुझे DM कीजिए या फिर कॉल करके भी आप इस जादुई आवाज का नाम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल वक्त बनता है एक छोटे से गाने का, तो एंजॉय कर लेते हैं इस गीत को और वापस आकर इस खूबसूरत आवाज के पीछे की स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगी।

मेरी ओर भटक रहा था वो, दिल मेरा था और धड़क रहा था वो। प्यार का ताल्लुक भी कितना अजीब होता है, आंसू मेरे थे और सिसक रहा था।

और इसी के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी पर। सपना बनी हुई हूँ मैं आपके साथ और आज बातें करने वाली हूँ एक ऐसे सितारे की जिसका नाम आपने मुझे बताया है और इतने सारे डीएम्स करके मुझे ये नाम पता चला है कि मुझे तो पूरी तरह से इनकी हिस्ट्री रट गई है। तो चलिए उसमें से कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ। खैर सितारे का नाम बाद में बताऊंगी लेकिन उन लोगों का नाम पहले बता देती हूँ जिन्होंने बिल्कुल दिए हैं सही सही जवाब। तो इसमें पूर्वंश, प्रकृति, श्रेष्ठ पार्थ, संजोली, काव्या, सृष्टि, आलोक और दीपांकर का नाम शामिल है। इन्होंने दिए हैं सही सही जवाब तो इनके लिए जोरदार तालियां, ये वेरी गुड और थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ बता देती हूँ मैं आज के पूछे गए सवाल का सही सही जवाब। ये हैं हमारे सुरों के बादशाह 90s के वो सितारे जिनकी आवाज के बिना हमारे सुपरस्टार्स बेकार नजर आते थे। ये कोई और नहीं बल्कि कुमार सानू साहब है जिनका जन्म 20th अक्टूबर 1957 कोलकाता में हुआ था। कहते हैं कि कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, सुर उनके गले में समाए होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि हम जैसी कैटेगरी के हैं उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कुमार सानू जी भी उनमें से ही एक हैं। ये अलग बात है कि इनके पास एक ब्लेसिंग थी और वो ब्लेसिंग थी एक म्यूजिकल फैमिली में पैदा होने की, क्योंकि इनके पिताजी पशुपति भट्टाचार्य जी जो कि एक हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट और कंपोजर थे और इनकी माता जी कृष्णा भट्टाचार्य वो भी संगीत को बहुत पसंद करने वाली एक महिला थी। बचपन से ही इनके सिर्फ सुर ही नहीं पक्के किए गए बल्कि इनकी ताल पर भी इनके पिताजी ने बहुत काम किया क्योंकि इन्हें सिंगिंग के साथ साथ तबले की भी काफी प्रैक्टिस दी गई थी। वही कोलकाता यूनिवर्सिटी से अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 1959 में इन्होंने लोकल स्टेज पर परफॉर्मेंसेस देना स्टार्ट कर दिया था। कहीं लाइव परफॉर्मेंसेस दिया करते थे तो कहीं रेस्टोरेंट में भी गाना बजाना शुरू कर चुके थे। And his ideal was none other than किशोर कुमार साहब। वैसे मैं आपको बता दूं कि जितने भी सिंगर्स हमें मिले हैं उनमें से 90% लोगों के आइडियल रफी साहब और किशोरदा होते हैं और ये भी किशोर कुमार के डाई हार्ट फैन थे और उन्हीं के गाने अक्सर क्लब्स में और रेस्टोरेंट्स में गुनगुनाया करते थे। तो चलिए हम भी गुनगुना लेते हैं हमारे सानू साहब का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

0: बात पूछूं? तुझे नहीं लगता ये हमारा घूमना फिरना टाइम पास करना ये ज्यादा नहीं हो गया? पहले ने सोच लिया है अब मैं अपने सारा ध्यान ना पढ़ाई पे लगाऊंगी और तुझे एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगी मैं।
1: जैसे बीरबल की खिचड़ी कभी पक नहीं सकती वैसे ही तू भी कभी बड़ा आदमी बन नहीं सकती।
0: क्यों नहीं बन सकती?
1: क्योंकि तू तो पैदा ही लड़की हुई है।
0: मेरी छोड़, तू बता वो लाइफ में क्या बनना चाहता है?
1: दूल्हा।
0: दूल्हा? वो तो तू बनेगा ही, मेरा दूल्हा।
1: क्या बोला तूने?
0: मेरा कहने का मतलब है तेरा फ्यूचर प्लान क्या है?
1: सीधी बात, सरल बात, बच्चे दो ही अच्छे।
0: ओहो, तू तो खोता ही है। जिंदगी जीने के लिए क्या करेगा ये पूछ रही हूँ मैं।
1: शादी?
0: पागल कहीं का।

0: छोटा परिवार सुखी परिवार।
1: मेरा कहने का मतलब है अपने सुखी परिवार के खर्चे कैसे उठाएगा तू?
0: देख तू तो वैसे ही बड़ा आदमी बन रही है, तो तुझसे शादी कर लूंगा।
1: सच्ची? तू मेरे से शादी करना चाहता है?
0: हाँ हाँ, इससे ना पता एक बड़ा फायदा होगा।
1: क्या?
0: मुझे मेरे पापों की सजा ना इसी जन्म में मिल जाएगी।
1: जा दफा हो यहाँ से, तेरे से नहीं बात करनी मैंने, कुछ भी अनाप शनाप बोलता रहता है।
2: इस हंसी मजाक में क्या बंटी कभी समझ पाएगा बबली के दिल की बात? जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी कुछ।

भाई हर बार जाने से पहले मैं आपसे एक वादा करके जाती हूँ और वो वादा निभाने अगले हफ्ते जरूर आ जाती हूँ। ये वादा है एक सुपरस्टार की जर्नी आप सबके साथ शेयर करने का, और हर हफ्ते ये वादा निभाने मैं पहुँच जाती हूँ आपके बीच, आपको एक नए स्टार से मिलवाने।

श्योर 90% लोगों को नहीं पता, क्योंकि जिनको हम बहुत ही प्यार से कुमार सानू कहते हैं उनका ओरिजिनल नेम है केदारनाथ भट्टाचार्य। और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनके नाम के पीछे। खैर, कहानी सुनाने में तो मैं वैसे भी बहुत एक्सपर्ट हूँ, आपको भी इनके नाम से जुड़ी कहानी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बतौर प्लेबैक सिंगर इन्होंने 1984 में आई फिल्म ये देश में एक गाने में एक छोटा सा हिस्सा गाया था, और इस गाने के कंपोजर थे आरडी बर्मन साहब। और इसी हिस्से को गाने के बाद 1985-86 में इन्हें एक बंगाली फिल्म तीन कन्या में एक गाना गाने का मौका मिला, और इसी के बाद इनको फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग जानने लगे थे। खैर, अब सवाल आता है कि इनका नाम कैसे बदला। तो बता दूं मैं आपको कि इनका नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कल्याण जी आनंद जी ने चेंज किया था। दरअसल ये किशोर साहब के बहुत बड़े फैन थे, और जब हमारे गजल सम्राट जगजीत सिंह जी ने इन्हें कल्याण जी आनंद जी से मिलवाया तो उन्हें इस लड़के में किशोर कुमार की आवाज की खनक सुनाई दी, और वो बहुत ही एंजॉय कर रहे थे जब कुमार सानू उनके सामने गा रहे थे। इसलिए उन्होंने किशोर दास से एक छोटा सा कुमार चुरा लिया और वो सोनू के नाम के आगे जोड़ दिया, और इस तरह से बना कुमार सानू। पर भाई, यहाँ सवाल पैदा होता है कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में तो ये आ गए थे एज अ लीड सिंगर, पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा गाना कब मिला तो बता देती हूँ आपको कि 1988-89 में रिलीज हुई फिल्म हीरो हीरा लाल में इन्हें पहली बार अपनी आवाज सुनाने का मौका मिला था। खैर, पहले जब आरडी बर्मन साहब के अंडर इन्होंने छोटा सा हिस्सा गाया था तो उस वक्त ज्यादा लोगों ने इन्हें पहचाना नहीं था, लेकिन हीरो हीरा लाल के बाद इन्हें लोग अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जानने लगे थे। और इस गाने के रिलीज होने के तुरंत बाद ही कल्याण जी आनंद जी ने भी अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म जादूगर, जो कि 1989 में रिलीज हुई थी, उस फिल्म में भी इन्हें गाना गाने का मौका मिला, और यहीं से इनकी मेट्रो ने जो स्पीड पकड़ी वो आज भी थमने को तैयार नहीं है, वो आज भी फुल स्पीड में भाग रही है। खैर, 90s का दौर एक ऐसा दौर था जिसे हम कुमार सानू के नाम कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हर एक्टर के लिए गाने ये गा रहे थे। यहाँ तक कि एक मौका ऐसा आया जब इन्होंने 24 घंटे में 28 गाने रिकॉर्ड कर लिए थे, और इसी के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी शुमार हो गया था। खैर, ये नौबत क्यों आई कि इन्हें 24 घंटे में 28 गाने रिकॉर्ड करने पड़े? क्या इसके पीछे किसी का प्रेशर था? अगर था तो वो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। अभी आप एंजॉय कीजिए इस म्यूजिकल ब्रेक को।

दस फिर और मैं की कर रही हूँ, कुमार सानू साहब दिया मिठिया मिठिया गल्ला ही तो थोड़े नाल शेयर कर रही हूँ। और इसी के साथ स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रात बाकी बात बाकी में। सपना बनी हुई हूँ मैं आपके साथ। और जैसा कि मैंने बताया कि हम कुमार साहब की बात कर रहे हैं, तो बता दूं मैं आपको कि 1990 में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी जिसने कुमार सानू को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जिसकी वजह से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। फिल्म का नाम था आशिकी और इस फिल्म के म्यूजिक के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। एंड एज आई मेंशन आई लव नरेटिंग स्टोरीज, तो आप इस स्टोरी को भी एंजॉय करेंगे ऐसा मेरा मानना है। दरअसल गुलशन कुमार साहब टी सीरीज के बैनर तले नदीम श्रवण के साथ मिलकर एक प्राइवेट म्यूजिक एल्बम रिलीज करना चाहते थे जिसके लिए कुछ गाने तैयार किए गए। पर जब ये गाने डायरेक्टर महेश भट्ट साहब ने सुने तो उन्हें लगा कि इन गानों को सिर्फ प्राइवेट एल्बम के लिए क्यों खर्च किया जा रहा है, बल्कि उन्हें एक फिल्म का हिस्सा बनाना चाहिए। और ये फिल्म थी आशिकी। पर महेश भट्ट की शर्त सिर्फ एक थी कि हम इन गानों के लिए फ्रेश वॉइसेस यूज करेंगे। तो फीमेल सिंगर का नाम तो हमें पता ही था, अनुराधा पौंडवाल जी। लेकिन मेल सिंगर्स के लिए अभी हंट चल रहा था और क्योंकि नदीम श्रवण साहब ने कुमार सानू की आवाज पहले सुनी हुई थी, इसलिए उन्होंने ज्यादातर गाने इन्हीं की आवाज में रिकॉर्ड किए। खैर ये भी बता दूं मैं आपको कि सिर्फ इनकी आवाज में पूरे गाने रिकॉर्ड नहीं थे, बल्कि उदित नारायण और अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में भी गाने रिकॉर्ड किए गए थे इस पर्टिकुलर फिल्म की। कुमार सानू ने कभी भी नहीं सोचा था कि आशिकी इतनी बड़ी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि 1990 में इसकी 2 करोड़ यानी कि 20 मिलियन से भी ज्यादा ऑडियो कैसेट्स बिकी थी और ये उस वक्त की सबसे ज्यादा बिकने वाली म्यूजिकल एल्बम बन गई थी। फिल्म के ऑलमोस्ट सारे गाने सुपर हिट थे और इसके बाद फिल्म के एक्टर सिंगर्स और पूरी टीम रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ था तो वो थे कुमार सानू, क्योंकि इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर मिला था। यहीं से इनकी शुरुआत हुई थी बैक टू बैक 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीतने की एक हिस्टोरिकल जर्नी की। 1990 में इन्हें आशिकी, 91 में साजन, 92 में दीवाना और 93 में बाजीगर, 1994 में 1942 अ लव स्टोरी के लिए ये टोटल 5 बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड से नवाजा गया था। पर 1993 इनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल रहा क्योंकि इसी वक्त उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कि आज तक नहीं टूट पाया है। कौन सा रिकॉर्ड था ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। फिलहाल एंजॉय दिस म्यूजिकल ब्रेक।

0: बताती हूँ सिगरेट या तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स लेने के दो फायदे।
1: क्या बात, ये बात है।
0: पहला फायदा, आपके घर पर कभी चोरी नहीं होगी क्योंकि रात भर खास खास कर आपको नींद ही नहीं आएगी।
2: ये गड़बड़े बाबा।
0: दूसरा फायदा, आप स्पेशल ह्यूमन बन जाएंगे क्योंकि आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बाकी लोगों से दो गुना ज्यादा हो जाएंगे।
3: अपना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी कुछ हटके।
4: वही बंटी,
5: बंटी और बबली,
4: मेरी बात सुन।
6: बोल बबली।
4: आज तो मेरे साथ जिम चलेगा?
6: क्या, मैं तुझे अनफिट दिखता हूँ जो जिम चलेगा?
4: ठीक है, मत जा। वैसे भी ना सुबह जल्दी उठना तेरे बस की बात नहीं है।
6: क्या तू मुझे आलसी कह रही है?
4: अरे गुस्सा क्यों हो रहा है, मैंने कब कहा ऐसा?
6: हाँ हाँ, अब मुझे गुस्सेल भी कह ले।
4: हाँ, झूठा कहेगा, मैंने कब बोला?
6: तो तेरा मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ?
4: तो साथ चलता ना तो मुझे अच्छा लगता, मुझे मोटिवेशन मिल जाती। पर अब छोड़, मैं अपनी फ्रेंड के साथ ही चली जाऊंगी।
6: ठीक है, रो मत, चल लूंगा। इतनी स्वीट लड़की के साथ जिम जाने का मौका कौन पागल छोड़ेगा?
4: सच? तुझे मैं स्वीट लगती हूँ?
6: इतनी गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है, मैं तो तेरी फ्रेंड की बात कर रहा था। और रही बात तेरी स्वीटनेस की, तो तेरी स्माइल की फोटो खींच के दीवारों पे पोस्टर लगाने का मन करता है।
4: हाय सच्ची, तेरे को मेरी स्माइल इतनी अच्छी लगती है।
6: स्माइल अच्छी होगी तभी तो लगेगी ना। मैं तो इसलिए कह रहा था, अगर कोई डेंटिस्ट आते जाते देख लेगा तो ये टेढ़े मेढ़े दांत तेरे ठीक कर देगा।
1: इस हंसी मजाक में क्या बंटी कभी समझ पाएगा बबली के दिल की बात? जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी कुछ

भाई कहते हैं कि जिंदगी जब आपको देने पर आती है तो इतना कुछ दे देती है कि आपकी झोली कम पड़ जाती है। कुमार साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 1990 में आशिकी फिल्म के हिट होने के बाद इनके पास इतने गाने आने लगे थे कि अब इन्हें फुर्सत ही नहीं मिल पा रही थी। बल्कि 1993 में तो इन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया था जिसे आज तक कोई भी सिंगर तोड़ नहीं पाया है। सेम ईयर में ही इन्होंने एक साल के अंदर अंदर 1161 गाने रिकॉर्ड किए थे और इसके अलावा उन्होंने एक महीने में 161 सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए थे। और अगर मैं इस टाइम पीरियड को और थोड़ा सा श्रिंक कर दूं और 24 घंटे यानी एक दिन की बात करूं तो इन्होंने एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड किए थे। खैर, इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है और वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल इन्हें एक म्यूजिकल टूर के लिए यूएस जाना था और इनका कुछ काम जो कि पेंडिंग था ये उसे कंप्लीट करके जाना चाहते थे, तो इन्होंने जल्दी जल्दी 28 गाने रिकॉर्ड किए, वो भी सिर्फ 24 घंटे के अंदर। और इसी हिस्टोरिक अचीवमेंट के लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। और यही वजह रही कि कुमार सानू साहब का नाम प्लेबैक सिंगर्स की लिस्ट में बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन जब भी कोई इंसान अपने करियर में आगे बढ़ रहा होता है तो उसकी टांग खींच कर उसे नीचे गिराने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था सानू साहब के साथ। जहां एक जगह वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर इनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा हिलडुल रही थी, क्योंकि इनका नाम बहुत सारी एक्ट्रेसेस के नाम के साथ जोड़ा जाने लगा था, जिसकी वजह से इनकी फैमिली लाइफ काफी डिस्टर्ब हो गई और इन्हीं अफवाहों के चलते इनकी पर्सनल लाइफ इस तरह से हिल गई कि फाइनली इन्हें अपनी वाइफ से डिवोर्स भी लेना पड़ा। पर वो कहते हैं कि जिंदगी का दस्तूर ही कुछ ऐसा है कि कोई आता है तो कोई जाता है। अपनी फर्स्ट वाइफ रीटा भट्टाचार्य से दूर होने के बाद इन्होंने 24 जुलाई 2001 में सोनाली से शादी की, जो कि इनकी बहुत बड़ी फैन थी।

0: आज मैं आपको बताती हूँ प्लास्टिक इस्तेमाल करने के दो फायदे।
1: लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल।
0: पहला फायदा, आपका हर दिन संडे जैसा हो जाएगा, क्योंकि दमा और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियाँ आपको बेड से

89.6 के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमेशा हेलमेट एवं सीट बेल्ट पहने, गाड़ी निर्धारित गति सीमा व निर्धारित लेन में ही चलाए, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें, ट्रैफिक लाइट्स को देखकर ही आगे बढ़ें व रुकें, और यदि आप बीमार हैं या थके हुए हैं तो वाहन ना चलाएं, और पैदल चलने वाले यात्री सिर्फ जेब्रा क्रॉसिंग या फुट ओवर ब्रिज से ही सड़क को पार करें। धन्यवाद।

अच्छा, अक्सर हम ये सोचते हैं कि फिल्म में एक सिचुएशन के अकॉर्डिंगली गाना बनाया जाता है, लेकिन कुछ गाने इतने अच्छे बन जाते हैं कि उनके अकॉर्डिंगली फिल्म में सिचुएशन क्रिएट की जाती है। ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है फिल्म बाजीगर का, जिस फिल्म के लिए कुमार सानू को उनका 4th फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले इस फिल्म का गाना नदीम श्रवण साहब दे रहे थे, लेकिन उन्हें ये टाइटल पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को ड्रॉप कर दिया। फाइनली इस फिल्म का म्यूजिक सौंपा गया अनु मलिक साहब को, जो कि कुमार सानू के ऑफ कोर्स बहुत बड़े फैन थे और उन्होंने सारे गाने बनाकर तैयार कर लिए। लेकिन जब ये सारे गाने सुन लिए गए, फिल्म में सिलेक्ट हो गए, तब अनु मलिक के दिमाग में एक धुन आई और उस धुन को इग्नोर ना करते हुए अनु मलिक ने तुरंत कुमार सानू की आवाज में एक गाना रिकॉर्ड कराया। वो गाना इतना इम्प्रेसिव था कि पूरी टीम खुश हो गई और अनु मलिक चाहते थे कि ये गाना फिल्म बाजीगर में जरूर डाला जाए। अब ऐसी कोई सिचुएशन डायरेक्टर साहब को दिख ही नहीं रही थी जिसमें इस गाने को इम्प्लांट किया जा सकता था। इस गाने के अकॉर्डिंगली बाजीगर फिल्म में एक सिचुएशन क्रिएट की गई और वहां इस गाने को भी इम्प्लांट किया गया। और क्या आप जानते हैं कि वो गाना कौन सा था? काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु ये कोरे कोरे काल। क्या बात है, कितना खूबसूरत गाना था। मैं मान ही नहीं सकती कि आप 90s के हो और आपने इस गाने को सुना ना हो या फिर आप इस गाने पर थिरके ना हो। और ये गाना इतना खूबसूरत था कि कुमार साहब इसके लिए ले गए थे अपने सिंगिंग करियर का 4th फिल्म फेयर अवार्ड।

0: नमस्कार, मैं जितेश मल्होत्रा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक फरीदाबाद। रेडियो महारानी 89.6 के माध्यम से आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी अभिभावक अपने नाबालिग बच्चे को मोटरसाइकिल या कार चलाने के लिए नहीं दे। इसके लिए सेक्शन 180 के अंतर्गत उन्हें 3 महीने की सजा व 1,000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो कृपया अपने नाबालिग बच्चों की जान जोखिम में ना डालें, उन्हें गाड़ी चलाने के लिए ना दें।
1: आज मैं आपको बताता हूँ पानी बर्बाद करने के 2 फायदे।
2: कौन है ये पागल आदमी?
1: पहला फायदा, आपको बारिश से बचने के लिए छाता नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि नदियाँ सूख जाने से बारिश ही नहीं होगी।
3: बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी।
1: दूसरा फायदा, आप एनिमल लवर बन जाएंगे और आपको ऊंट पालना पड़ेगा, क्योंकि पानी सूख जाने से आपका सारा इलाका रेगिस्तान बन जाएगा।
4: ना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी कुछ

0: स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी पर। और आज हम 90s में वापस चले गए हैं। मैंने पहले भी बताया था कि मेरे हाथ टाइम मशीन लग चुकी है। ये आगे जाने की नहीं, पीछे जाने वाली मशीन है। तो हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं अपने 90s में, और इसी के साथ हम एंजॉय कर रहे हैं कुमार सानू साहब की खूबसूरत आवाज और उनके गीतों को भी। 1995 का समय था, और इसी समय में यशराज फिल्म प्रोडक्शन के अंडर रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म जिसने तहलका सा मचा दिया। हर कोई उसका दीवाना हो गया था, और फिल्म थी पहचान गए ना कि मैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म की बात कर रही हूँ। जी हाँ, ये वो फिल्म थी जिसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए, लेकिन वहीं पर एक ऐसा रिकॉर्ड भी बना था जो बनते ही टूट भी गया था। ये रिकॉर्ड था एक एसोसिएशन का। ये एसोसिएशन थी यश चोपड़ा जी यानी कि यशराज फिल्म्स प्रोडक्शन और कुमार सानू की। इससे पहले इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कभी काम नहीं किया था। 1995 में DDLJ फिल्म के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया कुमार साहब ने, और ये गाना था तुझे देखा तो ये जाना सनम, और यही गीत बन गया था कुमार सानू के लिए एक प्रॉब्लम भी, क्योंकि इस टाइम तक आते आते कुमार सानू अपने करियर के पीक पर थे और वो अच्छा खासा चार्ज करते थे। वेयर एज यश चोपड़ा जी का ये कहना था भाई आप अपने पीक पर पहुंच गए होंगे, लेकिन हमारा प्रोडक्शन हाउस भी काफी टॉप क्लास का है, तो आपको इतना चार्ज नहीं करना चाहिए। इस छोटी सी बात को लेकर दोनों के बीच में क्लैशेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। गाना बन के तैयार हो गया था, लेकिन कुमार सानू ने कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर लिया कि इसके बाद वो यशराज प्रोडक्शंस के साथ कभी भी काम नहीं करेंगे, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने आगे आने वाले 19 सालों तक यशराज प्रोडक्शंस के साथ कोई काम नहीं किया। और इस बीच एक और भी अनाउंसमेंट कुमार सानू साहब की तरफ से हुई। दरअसल वो 5 बैक टू बैक फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए जीत चुके थे, इसलिए उन्होंने अनाउंस किया कि इसके बाद वो कोई भी अवार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ताकि दूसरे सिंगर्स को भी अपॉर्चुनिटी मिले। और 1995 में इस गाने के रिलीज होने के बाद जब DDLJ के गाने को नॉमिनेशन मिलना था अवार्ड के लिए, तो वो इस गाने को नहीं दिया गया। वो गाना था मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना, जिसे अपनी आवाज दी थी उदित नारायण साहब ने। आप कहीं ना कहीं कुमार साहब को लगा कि इसमें भी कोई चाल है। खैर ये तो सिर्फ र्यूमर्स थे, लेकिन 1995 के बाद पूरे 19 सालों बाद यानी कि 2015 में यश चोपड़ा जी के इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद दम लगा के हईशा फिल्म में एक बार फिर से इस एसोसिएशन को देखा गया था, और एक बार फिर से इसी फिल्म में कुमार सानू की आवाज यशराज फिल्म के गाने से गूंजी थी।
1: बैजा बैजा बैजा बैजा हो गई रे, ला ला ला ला ला ला हो गई रे।

चेहरे को छूती सर्द हवाओं का सवेरा, धुंध में खोती शाम तुझसे है। 24 घंटे में कुछ मिनटों की फुर्सत, जुकाम में आराम तुझसे है। तुझी से है कैंटीन का बिल, टपरी पर मिलते दो दिल। तुझी पे खत्म पुराने दोस्तों में लड़ाई, और नए रिश्ते की बात तुझसे है। मौसम चाहे जो भी रहे, तेरा ही नाम जुबां पर आए। चाय चाय बस चाय, बातों की मस्ती और चाय की चुस्की के साथ होगी रेडियो महारानी पर मोहब्बत के नगमों की बरसात।

90s के दौर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सपना हूँ मैं आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं 90s के एक ऐसे वर्सेटाइल सिंगर का जिन्हें क्रेडिट दिया जाता है बहुत सारे हीरोज की डेब्यू फिल्म में उनकी आवाज बनने का, और साथ ही वो एक रिकॉर्ड मेकर भी हैं। भाई इतने सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने बना दिए हैं कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। साथ ही उनके गानों को रिवाइव करके, रीमेक करके दोबारा से सुना जा रहा है, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, तुम पर हम है अटके यारा, ये वाला गाना था फिल्म प्यार किया तो डरना क्या का, जो कि 1990 में रिलीज हुई थी। लेकिन 2019 में इसी गाने को एक बार फिर से रिक्रिएट किया गया फिल्म पागलपंती के लिए, जिसमें कुमार सानू ने अपनी बेटी शैनन के साथ अपनी आवाज शेयर की। ऐसी ही एक और फिल्म बनी थी तेरे मेरे सपने, जो कि 1996 में रिलीज हुई थी। इसका एक गाना बहुत हिट हुआ था और उसी गाने को 2018 में सिम्बा फिल्म के लिए रिक्रिएट किया गया था, जो कि रणबीर सिंह पर फिल्माया गया था। इतना ही नहीं बाबू मशाई, अब अगर हम इनके रिकॉर्ड्स की बात करें तो इन्होंने इतने लंबे लंबे लंबे लंबे गाने गाए हैं जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाते हैं। आपको करिश्मा कपूर की राजा हिंदुस्तानी फिल्म याद है और उसका एक गाना परदेसी चना नहीं, ये गाना तो याद ही होगा ना। ये गाना बहुत ही लंबा था और इस गाने को अपनी आवाज दी थी कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक और सपना अवस्थी जी ने। ये भी एक बहुत लंबे गाने के रूप में हम सबके सामने आया था और लोगों ने भी इस गाने को बहुत ज्यादा पसंद किया था, तो ये गाना भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाता है। साथ ही 1942 अ लव स्टोरी में एक गाना था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, अनिल कपूर और मनीषा कोइराला पर पिक्चराइज्ड ये एक खूबसूरत रोमांटिक गीत था जो कि बहुत ही लंबा था, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाता है। लेकिन छोटे स्क्रीन पर भी कुमार सानू की आवाज बहुत ज्यादा सुनी जाती थी। एक टीवी सीरियल जिसका नाम था किस्मत, इसका टाइटल सॉन्ग इतना लंबा था जिसमें पूरे 110 स्टेंजास थे, अंतरे थे, और ये टाइटल सॉन्ग अपने आप में भी एक रिकॉर्ड था जो कि कुमार सानू साहब की वजह से ही बन पाया था। ओ माय गॉड, कुमार साहब आप क्या करके मानेंगे। खैर आज भी हम इनकी आवाज को, इन्हीं के गानों को दोबारा रिवाइव करके सुन रहे हैं, एंड व्हाट एन अमेजिंग वॉइस। जितनी बार सुनते हैं उतनी बार ही ये आवाज हमें नई सुनाई देती है। कुमार साहब ने अपने करियर में 22 से ज्यादा लैंग्वेजेस में 18,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। इसमें कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स हैं तो कुछ सैड सॉन्ग्स भी हैं, लेकिन इन्होंने जितने गाने गाए हैं शायद उतने रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, तो हैट्स ऑफ टू हिम। और आज मुझे इनके बारे में बात करके इतना मजा आया क्योंकि मैं वापस अपने 90s में पहुंच गई थी और क्या गाने थे उस टाइम, उफ, मतलब मैं बता नहीं सकती आज मुझे कितना मजा आया। आई होप आपने भी इस एपिसोड को उतना ही एंजॉय किया जितना मैंने किया है। फिलहाल वक्त हो गया है मेरा आपसे विदा लेने का। आज का एपिसोड कैसा लगा ये फीडबैक मुझे चाहिए। नंबर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार रिपीट कर देती हूँ, मेरा नंबर है 9654896896। आप मुझे बताइएगा जरूर, पर फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना ध्यान रखिए, आस पास सफाई रखिए और हाँ प्यार बांटते रहिए, क्योंकि जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही प्यार आपको नसीब होगा। पर जाने से पहले छोड़े जा रही हूँ आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी और कुछ बेहतरीन गानों के साथ। Enjoy the tracks.

0: एक कोजी कॉफी शॉप जहां खिड़की के पास मीरा बैठी है। उसके सामने ब्लैक कॉफी का कप है। बारिश हो रही है और आरव काउंटर से उसे देखता है और हिम्मत करके उसके पास आता है। माफ कीजिए, क्या ये सीट खाली है?
1: आप बैठ सकते हैं।
0: आपको भी ब्लैक कॉफी पसंद है?
1: पसंद शायद नहीं, बस ऐसा लगता है कि ये सच्ची है।
0: सच्ची? मतलब?
1: दूध और चीनी से ना कॉफी का असली स्वाद छिप जाता है। ब्लैक कॉफी कड़वी है पर झूठी नहीं, बिल्कुल जिंदगी की तरह।
0: आपकी बात सही है, कड़वाहट में ही सच्चाई छिपी होती है। वैसे आप हर रोज यहाँ आती है?
1: ये जगह सुकून देती है। और आप?
0: आज पहली बार हिम्मत करके आपसे बात कर रहा हूँ, वरना मैं भी हर रोज यहाँ आता हूँ।
1: अच्छा, कभी नोटिस नहीं किया मैंने।
0: शायद इसलिए क्योंकि आप हमेशा बाहर बारिश को देखती रहती हैं, किसी का इंतजार कर रही हैं।
1: शायद, या फिर बस अपनी पुरानी यादों में उलझी हुई हूँ।
0: कभी कभी पुरानी यादों को किसी के साथ बांटना आसान बना देता है।
1: हाँ शायद, लेकिन हर कोई कड़वाहट को नहीं समझ पाता ना।
0: जो ब्लैक कॉफी पीता है वो कड़वाहट को समझना जानता है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके ना।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यह होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
6: झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यह होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरे लिख ले कहीं, चल निकले कहीं आ।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: और झुमका।
1: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
2: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599. Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा। ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी। फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अरुण सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यह होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम है। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।
2: सोचना है जाना कहां, जाए वहीं ले जाए जहां।
1: तो थोड़ा फोन डाउन कीजिए और जिंदगी खुलकर जीना शुरू कीजिए। रेडियो महारानी कहता है, जिंदगी ऑनलाइन नहीं दिल से जी जाती है। जाए

0: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।
2: जीने का तरीका सिखाते हैं, हंस के देखो ना, लतीफा तुम्हें सुनाते हैं।

0: ਕਹਿੰਦੀ
1: ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ
2: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
3: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
4: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: मजा। बाबू मेरा गाना चला दो, जीवाले बाबू मेरा गाना चला दो, जीवाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।
1: अरे आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, गाना बजा दूं।
2: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं।
4: तो मेरी राय, उल्टी पुल्टी बातें,
3: इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

मेरा दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रियान टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।
3: Love you, जिंदगी।

जैसे हिलती है वैसे मत हिलाकर, लगे मुझे रहेगी रब से मिलाकर, बारी तेरी हार देना चंचला फर, माने तुझे पढ़ा कि ये क्या खिला

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
5: चल अर्जुन, शुरू हो जा।
2: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
5: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ।
5: इरशाद,
2: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
5: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा,
2: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
5: ये बात तो सही है।
2: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
5: कैसे कैसे?
2: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
5: अरे यार, वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
2: सुनो सुनो, हेलो।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: शादी ना वो बना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं
0: बाय बाय।
1: सुनो तो, सुनो तो,

किस लिए आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।
2: ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है, अच्छा है।

है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: 89.6 FM कुछ छक्के।
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: जो समझाए उसी की मची धूम जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यह होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: भेजा सरकार
1: ने। थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: ये कोई बात है?
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
3: अच्छा है, अच्छा है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: जब का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
0: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना।
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो, अरूर सेफ्टी कैंपेन।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता।

0: सस्ता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
0: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका

जीवन कभी भी बदल सकता है, और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।

0: कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज के विचार।
1: एक दिन मानसरोवर से आवाज आ रही थी, राधा राधा राधा, ऐसी आर्त आवाज आ रही थी कि ये मानसरोवर हमारे वृंदावन में ही है। पहले यमुना जी मानसरोवर के उधर से प्रवाहित होती थी वृंदावन की, अब वृंदावन के किनारे से और मानसरोवर उधर हो गया, तो कहते वृंदावन बाहर नहीं हो, वृंदावन ही है, मानसरोवर वृंदावन के अंतर्गत ही है, बंशीवट मानसरोवर ये सब अंतर में ही है। प्रेम में छकी हुई मतवाली परम सावधान चतुर शिरोमणि ललिता जी के कान में आवाज पड़ी, उस सीधे वहां गई, देखा कौन ऐसे आर्त भाव से पुकार रहा है, तो देखा कि बाल खुले हुए हैं और श्रीअंग से ऐसी सौरभ आ रही है जो अनुराग को बढ़ा रही है। बड़ा सुंदर छापेदार लहंगा पहने हुए, तन में सुंदर साड़ी धारण किए हुए हैं जो स्वर्णिम सितारों से जड़ी हुई है, सुंदर कंचुकी पहने हुए हैं, श्याम रंग है और फूलों से जटित उसके ऊपर ओढ़नी ओढ़े हुई है और अश्रु प्रवाह हो रहा है और मुख से बोल रहे राधा राधा राधा। ये कौन है जो हमारी स्वामिनी जी का ऐसे आर्त भाव, ध्यान रखना, नारायण बेटे के भाव से पुकारा तो उसी समय हरि पार्षद प्रकट हो गए, तुम राधा राधा बोलोगे श्री जी की सखी सुनकर के उदासीन हो जाएगी, नहीं, जो भगवान को भी आदेश करते हो सखियां तत्काल आपकी तरफ देखेंगी और उनका देख लेना अपने को निहाल कर देना है। एक बार किसी सखी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी तो लाडली लाल हमारी संपत्ति हो जाएंगे, ध्यान रखना, बड़ी उदार सखियां हमारी स्वामिनी जी की है। रीझ गई, देख कर, अरे मेरी स्वामिनी जी का नाम लेके रो रही, ये राधा नाम है ही ऐसा, जिस दिन रंग चढ़ेगा ना राधा तो